FMVO 103.9 MHz पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास के 17वीं तिथि, तदनुसार 7 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 9 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा

FM 103.1 MHz पर हम आकाशवाणी बैतूल से बोल रहे हैं। वहाँ प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति धारा। आइए कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस भक्ति रचना के साथ। स्वर है अनूप चलोटा का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना यह भक्ति गीत स्वर था अश्विनी भिड़े का, और आइए कार्यक्रम में पेश है भीमसेन जोशी की आवाज में यह रचना।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना यह भक्ति गीत स्वर था हरिओम शरण का। इसके साथ ही आज का भक्ति धारा कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी बैतूल से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: संसार के किसी भी महान पुरुष की अदम्य प्रतिभा का रहस्य खोजने पर हम पाते हैं कि उसका जीवन कठिनाइयों से भरा पड़ा है। एक साधारण पुरुष से महापुरुष बनने तक के सफर में उसे कर्म पथ पर बढ़ने के लिए अपने सुखों की तिलांजलि तक देनी पड़ी। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे महापुरुषों ने सुख सुविधाओं में जन्म लेने के बावजूद जटिलताओं को स्वेच्छा से स्वीकार करते हुए वैभव का त्याग किया, क्योंकि इसके बिना प्रतिभा का विकास असंभव था। कहने का तात्पर्य यही है कि कर्म पथ से गुजरे बिना कोई भी व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। कर्म व्यक्ति को तराश कर चमका देता है। हमारे जीवन में कर्म का बड़ा महत्व है, या यूं कहें कि मानव जीवन में कर्म पक्ष अधिक प्रबल है। बगैर कर्म के परिणाम अथवा फल प्राप्ति की इच्छा करना अंधकार में तीर मारने के समान है। हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में भी कर्म को प्रधानता दी गई। पुण्य कर्म से न तो हमें अति प्रसन्न होने की आवश्यकता है और न ही अपनी पीठ थपथपाने की, पर हां, अज्ञानतावश किए गए पाप कर्म से दुखी होने की आवश्यकता है, क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों का लेखा जोखा उस विधाता की किताब में दर्ज होता जाता है जिसका कर्मानुसार फल हमें मिलना ही है। मानव जीवन बड़ा अनमोल है, तो क्यों ना सद्कर्म करके हम अपने जीवन को सार्थक बना लें। जीवन पथ पर सुख दुख संघर्ष आदि की छाया से कोई भी प्राणी बच नहीं सका। मार्ग में लाख तूफान उठें, आंधियां आए, घोर झंझावातों से जिसने लोहा लिया, डटकर उसका सामना किया, वही सफल हुआ, और इसके विपरीत जिसने डर कर उससे मुंह मोड़ा वो पीछे रह गया। जहां कायरता कर्म पर हावी हो जाए वहां असफलता मिलना लगभग तय है। कहने का तात्पर्य यही है कि जहां कर्म अवरोधों पर हावी हो वहां जीत कर्म की ही होती है। इसलिए संघर्षों से घबरा कर कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना कहीं अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म के बिना उत्कृष्टता हासिल नहीं हो सकती। सोने की शुद्धता भीषण आग में तपने पर ही निखरती है। इसे अगर आग में तपाया ना जाए तो मटमैला दिखाई देगा। ठीक उसी तरह मनुष्य भी कठिनाइयों में तप कर उत्कृष्ट और प्रभावशाली बनता है, क्योंकि उसने कर्म को प्रधानता दी। यानी जीवन में कर्म का स्थान अति महत्वपूर्ण है। जीवन एक जंग है।

0: तो कर्म एक दुधारी तलवार के समान है। इस कर्म रूपी तलवार की धार पर चलने से जो व्यक्ति घबराकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं तो उसकी सफलता के द्वार स्वतः बंद हो जाते हैं, जबकि कर्म पथ पर चलने वाला निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करता है, साथ ही दूसरों के लिए प्रेरणा और आदर्श भी स्थापित करता है। यह शाश्वत उदाहरण प्रस्तुत करती है चींटी और कितनों की प्रेरणा स्रोत बनती है सिर्फ इसलिए कि उसने कर्म को प्रधानता दी। उस नन्ही सी चींटी को देखिए, उससे कर्म की प्रेरणा लीजिए जो अपने से 100 गुना अधिक भार लादकर कर्म करती है। मार्ग में अनेक बाधाओं के बावजूद हार नहीं मानती है और अथक प्रयासों से अपनी मंजिल तक पहुंचती है। व्यक्ति के जीवन में कर्म का महत्व ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार उद्योग में श्रम का और भोजन में रसों का होता है।
1: तो श्रोताओं, ये था आज का चिंतन। FM पे 103.1 MHz पर हम आकाशवाणी बैतूल से बोल रहे हैं और प्रस्तुत है श्री राम चरितमानस गान। मुख्य गायक स्वर है शोभना राव और श्रीकांत पारगांवकर के।

लंका के लिए कूच करने को तत्पर श्री राम की सेना वानर राज सुग्रीव का आदेश पाते ही गर्जन तर्जन करती प्रस्थान करती है। विशाल रूप धारण कर वानर और रीछ वृक्षों तथा पर्वतों का शस्त्र लेकर थल और आकाश मार्ग से चल पड़ते हैं। दिशाएं भयंकर नाद से गूंजने लगती हैं। पर्वत चंचल हो जाते हैं और समुद्र मानो खौलने लगते हैं। श्री राम की सेना सागर पार कर लंका में उतर गई है, ये समाचार सुनकर मंदोदरी आतंकित हो जाती है। वो रावण से विनती करती है कि वो श्री हरि का विरोध छोड़ दें, क्योंकि सीता को लौटाए बिना शिव और ब्रह्मा भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते।

0: संसार के किसी भी महान पुरुष की अदम्य
1: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। मुख्य गायक स्वर था शोभना राव और श्रीकांत पारगांवकर का। हम आकाशवाणी बैतूल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंजनी। लोक रंजनी कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं निजाम सिंह गिवने और साथीगण। आइए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस लोकगीत के साथ।
2: गम

लोक रंजनी कार्यक्रम में आइए, प्रस्तुत है ये लोकगीत। कलाकार हैं निजाम सिंह इवने और साथीकरण।

निजाम सिंगियो ने और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे ये लोकगीत। इसके साथ ही आज का लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी बैतूल से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री की कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्ष के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 के पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की खबरों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये छात्रों उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित है।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बनाए। न्यू चंडीगढ़ में खेल समाप्त होने तक कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 103.1 MHz पर हम आकाशवाणी बैतूल से बोल रहे हैं।
3: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:00 बजे

श्रोताओं, आइए अब आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में बतला दें। अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे भोपाल केंद्र से। क्लासिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से आप सुनेंगे सुबह 7:20 पर। 7:50 पर होगा कार्यक्रम सुबह सवेरे। 8:00 सुनिएगा समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर। बच्चों के लिए कार्यक्रम फुलवारी होगा सुबह 8:30 पर। इसमें आज की चर्चा का विषय होगा हार नहीं मानूंगा, साथ ही खेल और उनसे जुड़े नियम की जानकारी। इसके अलावा होंगे कुछ फिल्मी गीत इसी कार्यक्रम में। सुबह 9:00 आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। 9:10 पर आप सुनेंगे पॉडकास्ट प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ का प्रसारण होगा एफएम गोल्ड से सुबह 9:10 पर हमारे दिल्ली केंद्र से। 9:25 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम सुबह 10:00 तक। 10:00 सुनिएगा जिले की चिट्ठी। 10:05 पर होगा कार्यक्रम हेलो एफएम बैतूल। 11:00 सुनिएगा विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। 2:10 पर प्रादेशिक समाचार होंगे हिंदी में समाचार 2:15 पर। इसके बाद दिन में 2:30 से शाम 5:30 तक आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। 5:30 पर होगा युवाओं का कार्यक्रम युववाणी। इसमें आज की बात का विषय होगा समाज सेवा में भी आगे रहे एक फनकार बॉलीवुड के प्रसिद्ध खलनायक अमरीश पुरी। स्तंभ सक्सेस टिप्स में जीवन में लक्ष्य तय करना भी जरूरी है, साथ ही कल के आकर्षण और होंगे कुछ फिल्मी गीत इसी कार्यक्रम में। शाम 6:00 कार्यक्रम विवरण, माटी के स्वर कार्यक्रम 6:05 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा 6:30 पर। 6:50 पर सुनिएगा सबरस। 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार। कार्यक्रम ग्राम सभा 7:20 पर। इसमें आज की बात का विषय होगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, साथ ही स्वामी कृषि चर्चा, मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही उर्वरकों का उपयोग करें, साथ ही श्रृंखला बातें खेती किसानी की। इसके अलावा बाजार भाव और मौसम का हाल। रात 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम शीर्षक संगीत। 8:30 पर होगा कार्यक्रम साज और आवाज। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात 9:00 से 10:00 तक विविध भारती सेवा के कार्यक्रम होंगे। 10:00 सुनिएगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। 10:25 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष युवा शक्ति आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित विशेष श्रृंखला कार्यक्रम। 11:00 हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार होंगे 11:05 पर। तो श्रोताओं, ये थे आज के कार्यक्रम एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम हमारे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक सपनों को दे हम आकार। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों से प्रदेश में निवेश की अपील की। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के स्थानांतरण की गाइडलाइन जारी की। समान नागरिक संहिता के अध्ययन के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति की जन परामर्श बैठक आज झाबुआ में। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश तेजी से भारत के नए वैश्विक निवेश एवं निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कल इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 में प्रतिनिधियों को मध्य प्रदेश में निवेश, उत्पादन और नवाचार के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि हम आपके साथ एक ठोस और दीर्घकालिक साझेदारी के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश के मध्य में होने के कारण व्यापार और व्यवसाय के लिए सबसे अनुकूल स्थान है। यहां औद्योगिक कुशल श्रमिकों की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर में ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन भी होने वाला है और इस तरह के सम्मेलन प्रदेश के विकास में अहम योगदान देंगे।
1: एक सदस्यीय वर्चुअल सम्मेलन भी इंदौर में 51 से 11 और 20 सदस्यीय सम्मेलन 12-13 जून को होने वाला है, जिसके आधार पर ऐसे में ये भविष्य दृष्टि से होने वाला आयोजन भी मध्य प्रदेश के विकास के साथ माननीय प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ेगा, जिसके अगर वो ब्रिक्स के इस प्रकार का आयोजन प्रधानमंत्री के माध्यम से देश भर में हो रहे हैं।
0: स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक स्थानांतरण की गाइडलाइन जारी कर दी है। स्थानांतरण प्रक्रिया कल 8 जून से शुरू होकर 15 जुलाई तक चलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग की तबादला नीति के बाद विभाग ने अपने अलग स्थानांतरण पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत ऑनलाइन आवेदन होंगे। विभागीय आदेश के अनुसार प्रशासनिक स्थानांतरण प्रस्तावों का पंजीयन 8 जून से शुरू होगा। अंतर जिला स्थानांतरण के लिए 8 से 15 जून तक आवेदन किए जा सकेंगे। जिला कैडर संभाग और राज्य कैडर स्थानांतरण के लिए 8 से 17 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि छात्र अब रविवार आधी रात तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। CBSE ने कहा कि ये फैसला छात्रों के हित में लिया गया है, ताकि उन्हें आवेदन प्रक्रिया पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। आवेदन जमा करने की पहले की अंतिम तिथि इस महीने की 6 तारीख थी। भोपाल में जनजाति संग्रहालय की स्थापना के 13वें वर्षगांठ समारोह के अवसर पर कल 5 दिवसीय महुआ महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। 10 जून तक आयोजित इस महोत्सव की शुरुआत में संस्कृति मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने कहा कि विभाग द्वारा प्रदेश की संस्कृति और उनकी कलाओं को लोकव्यापी बनाने के प्रयत्न निरंतर किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्नपत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एजेंसी ने कहा कि एक छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने जोर देकर कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी तरह से बनी हुई है। उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। एजेंसी ने कहा कि सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म और साइबर अपराध अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के लिए सूचना उपलब्ध करा रही है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है, जिससे बाजार में

अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है, जिसके तहत ताड़ का तेल, पामोलिन, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों का तेल, मूंगफली तेल और चावल की भूसी के तेल तथा कपास के बीज के तेल और मक्का के तेल सहित प्रमुख खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम रखे गए हैं। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के अध्ययन के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति की जन परामर्श बैठक आज झाबुआ में आयोजित की जाएगी। समिति की सदस्य एवं शिक्षाविद डॉक्टर शोभा पैठणकर विभिन्न वर्गों से सुझाव लेंगी। यह खुला मंच होगा जिसमें जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि, अधिवक्ता, पत्रकार और आम नागरिक भाग ले सकते हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से बैठक में आकर अपने सुझाव देने की अपील की है। वहीं मंदसौर में भी समान नागरिक संहिता के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन कल किया गया। भोपाल में आज तंदुरुस्ती के लिए साइकिल चलाने का संदेश देते हुए संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत लोगों ने साइकिल चलाई। टीटी नगर स्टेडियम से शुरू हुए इस आयोजन में खेल मंत्री कैलाश विश्वास सारंग भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर पूरे देश को हिट करने के लिए लोगों का फिट रहना काफी जरूरी है, जिसके तहत इस अभियान का आयोजन प्रत्येक संडे को किया जाता है। जापान के काकामेगाहारा में भारत के अंडर 18 लड़कों की टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 गोल किए और कप्तान केतन कुशवाहा ने भी 1 गोल किया। इस ऐतिहासिक सफलता में मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी के 6 खिलाड़ियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। वहीं शतरंज में ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानंद ने अपने अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया। यह खिताब जीतने वाले वह पहले भारतीय बन गए हैं। तीसरे स्थान से दिन की शुरुआत करने के लिए के बाद प्रज्ञानंद ने महत्वपूर्ण क्लासिकल जीत से 3 अंक प्राप्त किए और 18 अंकों के साथ खिताब अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारतीय अंडर 18 पुरुष और महिला हॉकी टीमों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि पुरुष टीम ने चैंपियनशिप का खिताब जीता है, जबकि महिला टीम ने कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि यह परिणाम देश के युवा खिलाड़ियों के समर्पण, अनुशासन और दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। वहीं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने पर आर प्रज्ञानंद को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह शानदार उपलब्धि उनकी निरंतर उत्कृष्टता को दर्शाती है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी सभी भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित और एक ही जगह पर उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में अपार आईडी निर्माण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को मेगा अपार दिवस का 30 जून तक आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में कल स्कूलों में पहले अपार दिवस का आयोजन किया गया। अपार आईडी का निर्माण के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 1,39,38,000 स्कूली विद्यार्थियों की आईडी बनाई जानी है, जिसके तहत अब तक 93,97,000 विद्यार्थियों की अपार आईडी का निर्माण हो चुका है। अब करते हैं मौसम का। पूरे प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले ही प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ चुकी है। पिछले 24 घंटे में 20 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने गुना, अशोकनगर सहित 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां पर तेज आंधी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार में 2 दिवसीय ग्रहोद्योग व्यापार एक्सपो एवं मेले का शुभारंभ क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग सावित्री ठाकुर के द्वारा किया गया। भोपाल के गोविंदपुरा इंद्रपुरी की लेबर कॉलोनी में सड़क किनारे के अतिक्रमण को हटाकर दुकानों और झुग्गियों को हटाया गया और शासकीय भूमि को मुक्त कराया गया। आईटीआई इंदौर में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगर मालवा में स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। डिंडौरी कलेक्टर ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग की बैठक में पशु चिकित्सकों एवं अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय होकर कार्य करने के निर्देश दिए। और राजगढ़ में विश्व पर्यावरण दिवस पर कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ माह के नव अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

FM पे 103.1 MHz पर हम आकाशवाणी बैतूल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों के झरोखे से। श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं 20 साल बाद फिल्म का एक गीत। स्वर है लता मंगेशकर का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत, जिसे लिखा था शकील बदायूनी ने, संगीत हेमंत कुमार का, और फिल्म थी 20 साल बाद। और आइए कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं धरती कहे पुकार के फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में।

और श्रोताओं, इस गीत के बाद आइए बारी है चित्तूर फिल्म के इस गीत की, जिसमें आवाजें हैं यशोदास और हेमलता की।

श्रोताओं, अभी आपने सुना चितचोर फिल्म का एक गीत यशुदास और हेमलता की आवाजों में। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। और आइए कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं यशुदास का ही गाया हुआ दादा फिल्म का एक गीत। गीत को लिखा है कुलवंत जानी ने, संगीत उषा खन्ना का।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना है गीत फिल्म बाजार से। स्वर था भूपेंद्र सिंह का, रचना बशर नवाज की और संगीत था खयाम का।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैक चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम है यादों के झरोखे से। चलिए अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत, फिल्म है दिल अपना और प्रीत पराई।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे
1: फर्जी ऑफर से सावधान।
0: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले को, फिल्म थी डोली। और इस गीत के साथ ही आज का यादों के झरोखे से कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बैतूल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुबह सवेरे। सुबह सवेरे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आधार पंजीयन और अपडेट के लिए 8 और 9 जून को जिले में चलेगा विशेष अभियान। 6 डाक संभाग के अंतर्गत संचालित डाकघरों के आधार केंद्रों में 8 और 9 जून को विशेष आधार सेवा अभियान आयोजित किया जाएगा। अभियान के दौरान नवीन आधार पंजीयन, आधार कार्ड में सुधार, बायोमेट्रिक अपडेट, मोबाइल नंबर और ईमेल लिंकिंग सहित अन्य आधार संबंधी सेवाएं प्रदान की जाएगी। अधीक्षक डाकघर छिंदवाड़ा संभाग ने बताया कि विशेष अभियान के तहत सभी आधार केंद्र प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक कार्य करेंगे, जबकि प्रधान डाकघरों में सेवाएं रात्रि 8 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। बैतूल जिले में बैतूल प्रधान डाकघर के अलावा कोठी बाजार, बैतूलगंज, आठनेर, सारणी, पताखेड़ा, दुनावा, मुलताई, भैंसतही, चिचोली और शाहपुर उप डाकघरों में भी आधार पंजीयन और अपडेशन का विशेष अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान में नागरिकों को आधार संबंधी सेवाएं सहज और त्वरित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपने निकटतम डाकघर आधार केंद्र पर पहुंचकर इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की। एक अन्य जानकारी, जिला स्तरीय विशेष रोजगार मेले में 218 युवक युवतियों ने कराया पंजीयन। कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवणी के निर्देशन में 6 जून को जिला पंचायत सभा कक्ष बैतूल में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और प्रदान संस्था बैतूल के संयुक्त तत्वावधान में ट्राइटेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बुधनी द्वारा जिला स्तरीय विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले का उद्देश्य जिले के शिक्षित और रोजगार की तलाश कर रहे युवक युवतियों को निजी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान कराना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सार्थक पहल करना था। रोजगार मेले में जिले के विभिन्न विकास खंडों से बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। मेले के दौरान कुल 182 अभ्यर्थियों द्वारा पंजीयन कराया गया, जिसमें महिला और पुरुष दोनों वर्गों के अभ्यर्थी शामिल रहे। कंपनी प्रतिनिधियों द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण कर उनकी पात्रता के अनुसार चयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई। प्रथम चरण में 86 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार सफलतापूर्वक संपन्न किया गया, जबकि शेष पंजीकृत अभ्यर्थियों की साक्षात्कार प्रक्रिया आगामी सोमवार को पूर्ण की जाएगी। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों का कंपनी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। मेडिकल परीक्षण में उपयुक्त पाए जाने पर अभ्यर्थी

0: भारतीयों को ट्राइडेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बुधनी में नियुक्ति प्रदान कर कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से जिले के युवाओं को प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थान में रोजगार प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध होगा। रोजगार मेले के दौरान उपस्थित युवाओं को कंपनी की कार्यप्रणाली, कार्यस्थल की सुविधाओं, वेतनमान, कार्य अवधि, पद की जिम्मेदारियों और भविष्य में उपलब्ध होने वाले विकास के अवसरों के संबंध में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा अभ्यर्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें रोजगार संबंधी आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। रोजगार मेले के दौरान ट्राइडेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बुधनी द्वारा शिटिंग विभाग के लिए फ्रेशर अभ्यर्थियों की भर्ती की प्रक्रिया संचालित की गई। कंपनी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को लगभग 18,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई थी और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण रखी गई। चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिदिन 8 घंटे की कार्य अवधि में कंपनी में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा समय समय पर इस प्रकार के रोजगार मेलों का आयोजन कर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे आयोजन न केवल बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होते हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने और परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के भी अवसर प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के दौरान जिला परियोजना प्रबंधक मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बैतूल श्री सतीश पवार द्वारा अभ्यर्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने और रोजगार के माध्यम से अपने भविष्य को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और आजीविका मिशन युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है और भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बैतूल की जिला एवं विकास खंड स्तरीय टीम, प्रधान संस्था बैतूल के अधिकारी और कर्मचारी, ट्राइडेंट कंपनी के प्रतिनिधिगण और जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आई बड़ी संख्या में युवक युवतियां उपस्थित रहे। रोजगार मेले के सफल आयोजन में आजीविका मिशन और प्रधान संस्था के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा सक्रिय सहयोग प्रदान किया गया। सूचना समाप्त हुई।
1: सुबह सवेरे
2: अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की? मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जोड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सिर्फ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 के पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी और विशिष्ट रूप से खुले सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
4: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
3: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
5: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
6: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
3: इसराइल के हमले में दो महिलाओं सहित कम से कम 7 फिलिस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
7: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झांकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दाकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
3: और अब अन्य खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
8: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ मैच चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
3: केरलम के 7 जिले त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
9: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुनरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
3: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल

0: सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्ता की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जन्मदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं के भी साथ। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Home Minister Amit Shah calls for sharper vigil on financial transactions, construction of buildings and sale and purchase of properties along international borders. National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal. International Air Transport Association says India will be a significant player to air traffic boom in Asia-Pacific region by 2044. And in football, India beat defending champions Bangladesh 3-1 to win SAF Women's Championship for record 6th time. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, constructions of buildings and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSS Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern state. More from our correspondent.
3: Home Minister directed that an examination of land records of the last 5 years be conducted.

जय हिंद। सुप्रभात नन्हे दोस्तों, रविवार की सुबह के 8:30 हो चुके हैं और मैं आपकी संगीता दीदी हाजिर हूँ आपके अपने खास कार्यक्रम फुलवारी के साथ। बच्चों, मीठे मीठे प्यारे प्यारे से गीतों के बीच आज की फुलवारी में हम करेंगे जरूरी विषय पर चर्चा। साथ ही आज खेल संबंधी जानकारी में हम देंगे आपको किसी एक खेल के नियमों की जानकारी। वो खेल कौन सा है जानने के लिए आपको बने रहना होगा हमारी फुलवारी में। तो चलिए जानते हैं कि आज की फुलवारी में हमने कौन सा विषय लिया है। बच्चों, आज का विषय मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं कविता की कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहती हूं कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। बच्चों, ये कविताएं हमें प्रेरणा देती, हम

हमारे जीवन के लिए, उस जीवन के लिए जिसमें हमें हर उम्र में हर तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम बात करें आपकी एक छोटे बच्चे की, तो एक छोटा बच्चा अगर हम उसे देखें, कैसे दूसरों पर पहले तो वो आश्रित रहता है, उसके बाद अपने ही बिस्तर पर पलटना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर गिर गिर कर उठता है, चलना सीख जाता है, और ऐसे ही वो अपनी सारी चीजें, दौड़ना, बोलना, अपने काम खुद से करना, ये सारी चीजें सीखने लगता। तो क्या उसे इन सब के बीच कोई परेशानी नहीं हुई होगी? जरूर हुई होगी, आपने भी अनुभव किया होगा, भले आपको याद नहीं, क्यों? क्योंकि आप अपने माता पिता के सपोर्ट से ये सारी चीजें सीखते चले गए, आपको याद नहीं। आपको तकलीफें भी होती थी, आपके शरीर में रैशेज आ जाते थे, कई बार घुटने छिल जाते थे, हाथ छिल जाते थे, लेकिन ममता की छांव में, माँ के आंचल में आप सब कुछ भूल जाते थे और अपनी नई नई चीजें आप सीखते चले जाते थे, लेकिन तकलीफ तो होती थी। ऐसे ही उम्र के साथ पढ़ाई की चिंता, अपने करियर की चिंता, अपने सफल असफल होने का टेंशन बच्चों को रहता ही है, पर वो हार नहीं मानते। अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए वो मेहनत करते हैं और खुद से यही कहते हैं, हार नहीं मानूंगा।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बच्चों हार नहीं मानूंगा, आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। बच्चों एक रिसर्च की गई थी बच्चों पर, जिसमें कि यह बात सामने आई कि जिन बच्चों को माता पिता रोज छोटी छोटी बातें सिखाने का प्रयास करते हैं, वे बच्चे जल्दी जिम्मेदार हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ वे बच्चे जिनके बारे में माता पिता की ये सोच होती है कि अभी तो छोटे हैं, अभी खेलने की उम्र है, खेलने दो, फिर तो जिम्मेदारियां उठानी ही होती हैं, ऐसे बच्चे अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से नहीं उठा पाते, यहाँ तक कि अपने काम भी सही ढंग से नहीं कर पाते। अब आप सोचेंगे कि जिम्मेदारी से हारने जीतने का क्या लेना देना। तो बात ऐसी है बच्चों कि अगर बचपन से ही माता पिता जो चीजें आपको सिखाते हैं, तो आप उन कामों को सीखते हैं, और जब आप उस काम को नहीं कर पाते, उसमें असफल होते हैं, तो आपको हार और जीत के मायने समझ में आने लगते हैं। आपको ये पता होता है कि अगर हम इस काम को नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये काम हमें करना जरूरी है हमारे जीवन के लिए, तो आप उसमें मेहनत करने लगते हैं और आपको सफल असफल होने के मायने भी समझ आने लगते हैं। क्योंकि बच्चे स्वभाव से जिद्दी होते हैं, यही इस उम्र की एक खासियत होती है कि वो जिद्दी होते हैं, किसी भी काम के पीछे अगर पड़ जाएं तो उसे पूरा करके ही मानते हैं। कोई भी काम अगर वो कर रहे हैं, उनसे नहीं बना, तो वो तब तक उसको करते हैं जब तक कि वो उसे पूरा ना कर ले। तो ये स्वभाव बच्चों का विकसित होता रहता है उनकी उम्र के साथ। फिर कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई की हम बात कर लें, खेल की बात कर लें, चाहे अपने जिम्मेदारियों की बात कर लें, जो भी छोटे हैं लेकिन थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां तो होती हैं, तो इन सब को जो है बच्चे अपना इन सभी पर 100% देने लगते हैं। उन्हें ये पता होता है कि हमें ये काम पूरा करना सिखाया गया और तो हमें इसे पूरा करना। लेकिन दूसरी तरफ वे बच्चे जो बचपन से कामों से बचते हैं या उन्हें बचाया जाता है कि ठीक है यार अभी सीख लेगा, अभी रहने दो, तो वो कभी भी जब वो बड़े होते चले जाते हैं तो उनमें एक आदत खास डेवलप हो जाती है। या तो वो अपने कामों के लिए दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, और या अगर रो धोकर कोई काम करना एकदम से माता पिता बोलते हैं बड़े होकर चलो अपना ये काम खुद करो, तो फिर आप चाहो तो वो आदत उनमें डेवलप होती नहीं है, फिर वो रोना धोना होता है, और या तो वो काम आधा छूट जाता है, फिर आधे में माता पिता को उनका वो काम पूरा करना पड़ता है। तो ये उनका स्वभाव जो है वो डेवलप हो जाता है कि वो जो है काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। अगर कोई काम नहीं बना तो छोड़ दिया, चलो दूसरा देखेंगे।

या कल देखेंगे, बाद में कर लेंगे। ऐसे ही जो जिद्दी बच्चे होते हैं, जिन्हें बचपन से जिम्मेदारियों के प्रति थोड़ा सा सजग रखा जाता है, वो हार मानना नहीं जानते। उन्हें अपनी क्षमताओं का भी पूरा पता होता है। क्यों? क्योंकि बचपन से सारे काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि हम कौन से काम को कर सकते हैं और किस काम को किस हद तक जाकर मेहनत करके हम सफल कर सकते हैं। और वो ऐसे ही कामों को करना फिर पसंद भी करते हैं और सफलतापूर्वक उन्हें पूरा भी करते हैं। मतलब जो भी काम वो करते हैं उनकी क्षमताओं के अनुसार वो कर लेते हैं। पर अगर बचपन से कामों को नहीं समझा तो पता ही नहीं होता है कि हमें क्या करना है, या हम क्या कर सकते हैं, या हम कर क्या पाएंगे। अब ऐसे में वो जो बच्चे काम करने के आदी नहीं होते हैं, तो उनकी दो चीजें हो जाती है, या तो वो आधे में छोड़ते हैं, या दूसरों से, अपने दूसरे दोस्तों से थोड़ी सी प्रेरणा ले लेते हैं और बोलते हैं, चलो ये भी ये काम कर रहा है तो मैं भी यही कर लेता हूँ। अरे भाई, आप ये सोचिए कि आपका जो दोस्त है, हो सकता है उसने अपनी क्षमता के अनुसार जो है अपने किसी काम को चुना और वो उसको करने में सक्षम है और वो उसे पूरा सफलतापूर्वक कर भी लेगा। लेकिन ये क्या गारंटी है कि आपने उसकी नकल मारी कि भाई ये कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ तो मैं सफल हो जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सफल हो सकता है तो आप भी सफल होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता ही नहीं होता कि आपने जो काम हाथ में लिया है आप उसे कर पाओगे या नहीं। अब यहाँ पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपने कभी ये देखा है कि पौधा घर में गेंदे का लगाया गया और उसमें गुलाब लग जाए? ऐसा तो नहीं होता। तो जीवन भी ऐसा ही है, जो चाहिए या जो बनना है उसके लिए तैयारी बचपन से ही होगी। बचपन से ही आदत डालनी होगी कि काम छोटा हो या बड़ा उसे पूरा करना है। अगर हमें कोई काम दिया गया है तो हमें अपना 100% एफर्ट उसमें लगानी है और उसे पूरा करना है। आदत काम को सही ढंग से करने की, ये भी आपको बनानी होगी। ऐसा नहीं कि तत्र बतर कुछ भी कर दिया, कम ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं, अच्छे से करना है। आप जो भी काम करना चाहते हैं उसे पूरा भी करिए और अच्छे से करिए। और एक बात और बच्चों, एक चीज अपने स्वभाव में और विकसित करना चाहिए, वो है हार को स्वीकार करना। जरूरी तो नहीं आप जो काम कर रहे हो उसमें पहली बार में आप सफल हो जाए, ये तो हम हमेशा से आपको समझाते आए हैं। कोई भी, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, जब कोई भी हम नया काम हाथ में लेते हैं तो उसमें गलतियां होती है, लेकिन बार बार करने से वो काम हमारे अच्छे से होने लगते हैं, सुधरने लगते हैं और हम उनमें माहिर भी हो जाते हैं कई बार उन कामों को करते करते। तो आप हार को स्वीकार करना सीखें और दोबारा से उस काम को करने की एफर्ट भी आप लगाएं, और इस तरीके से जब आप अपनी हार को जीत में बदलने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखेंगे तो आप कभी हार ही नहीं सकते। इसके अलावा अपनी भावनाओं को भी कंट्रोल करना करना सीख जाए। ऐसा कि कोई काम आपने करा वो नहीं बना तो होता है ना कि उठा उठा के चीजें पटक दी, तोड़ फोड़ दी, गुस्सा बता रहे हैं, ये फेंक वो फेंक, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि ये जो है आपका जो महत्वपूर्ण काम जो आप लेकर बैठे हो या जिसे आपको दोबारा करना है उसे आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है अपनी भावनाओं पर भी आप कंट्रोल जरूर करें। बच्चों, अगर आप किसी खेल में हारते हैं या किसी विषय में नंबर कम लाते हैं तो अपने आप पर शर्मिंदा भी ना हो। क्यों? क्योंकि आपका प्रयास ही सर्वश्रेष्ठ है। ये बात बड़ी है कि आपने प्रयास किया और यही सोच आपको सफलता के रास्ते पर ले जाता है। बच्चों, माता पिता हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं। हमारी हर हार हर जीत उनके लिए मायने रखती है। हमारे साथ उनका साथ, उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहता है और उनका सहयोग भी हमारे साथ हमेशा रहता है। इसलिए जब भी कोई मुश्किल हो उनसे सलाह लें, उनका सहयोग लें, अपने शिक्षकों का सहयोग लें, आप कभी भी नहीं हारेंगे। तो इस हार जीत के बीच अब वक्त है एक प्यारे से गीत का। तो चलिए हम अपने नन्हे दोस्तों का मनोरंजन करते हैं इस प्यारे से गीत से।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किड बैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
1: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग।
2: RBI कहता है
3: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: बच्चों, फुलवारी में आगे खेल संबंधी जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं फुटबॉल के बारे में। तो चलिए जानते हैं पहले इसके मैदान के बारे में। बच्चों, ये फुटबॉल मैच जो होता है, इसका जो मैदान होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसके जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं उसके हिसाब से ये 105 मीटर लंबा होता है और 68 मीटर चौड़ा होता है। इसके अलावा मैदान के अंदर जो खिलाड़ी हैं उनके जो नियम कायदे निर्धारित किए जाते हैं, कुछ निश्चित माप उसके लिए तय किए गए जो कि इसके क्षेत्र होते हैं, पहले मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। इसमें गोल पोस्ट होता है, गोल एरिया होता है, पेनाल्टी एरिया होता है, पेनाल्टी स्पॉट होता है। इसके अलावा सेंटर सर्कल, कॉर्नर आर्क और लाइन की मोटाई को भी जो है बहुत ज्यादा तवज्जो इसमें

दी जाती है। बच्चों अगर हम फुटबॉल की बात करें तो यहाँ ये एक टीम का खेल है, मतलब टीम होती है, दो टीमें होती हैं आपस में खेलने के लिए, जिसका उद्देश्य होता है कि शरीर के उपयोग को करके गेंद को गोल लाइन के पार या गोल पोस्ट के बीच में पहुंचाना होता है। बच्चों ये दुनिया का बहुत ही रोमांचक खेल जो है और लोकप्रिय खेल है। ये मैदानी खेल है, मैदान पर खेला जाता है और इसमें दो टीमें खेलती, जैसा कि मैंने आपको बताया है। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। 90 मिनट का ये खेल होता है और इस गेम को 45-45 मिनट के दो हिस्सों में बांटा जाता है। 45-45 मिनट के दो हिस्सों का मतलब होता है कि बीच में खिलाड़ी चूंकि थक जाते हैं तो थोड़ा सा पानी वानी पीने के हिसाब से उनको 15 मिनट का जो है वो बीच में ब्रेक दिया जाता है ताकि वो थोड़े से फ्रेश हो जाए। गेंद पर नियंत्रण इस खेल का महत्वपूर्ण पक्ष है। आपने देखा होगा अगर आप फुटबॉल देखते हैं तो खिलाड़ी जब भागते हैं गेंद को पैरों के बीच इस तरीके से नचाते हैं कि देखते ही बनता है। कई बार हमने देखा है कि खिलाड़ी जब गेंद को लेकर चल रहा होता है पैरों के बीच नचाते हुए तो दूसरे खिलाड़ी 10-10 खिलाड़ी जो है लग जाते हैं उसके पीछे भागने के लिए। हालांकि सबके एरिया निर्धारित होते हैं कि कौन कहाँ पर खड़ा रहेगा और कहाँ से कंट्रोल करेगा, लेकिन सारे लगे होते हैं उससे बॉल की वो गोल पोस्ट तक उस बॉल को लेकर ना चला जाए। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष जो होता है गोल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान रखनी होती है बच्चों कि इसमें गोल करने के लिए पैर, सिर और धड़ का उपयोग तो किया जा सकता है, मतलब आप पैर से भी बॉल को जो फुटबॉल है उसको मार सकते हो, सिर से मार सकते हो, धड़ पर मतलब सीने पर लेकर, जैसा कि हम देखते हैं सीने पर लेकर भी उसे रोका जा सकता है, पर हाथों का उपयोग आप इसमें नहीं कर सकते। हाँ, पर अगर गोलकीपर जो है वो पेनाल्टी के क्षेत्र में हाथ से बॉल को छूता है, जैसा कि हमने देखा भी है कि वो सामने आकर रोक लेता है और ऐसे सीने से अपने फुटबॉल जो है उसको लगाकर वो फिर लात मार के दूसरी तरफ देता है, तो गोलकीपर को थोड़ा बहुत अलाउ होता है इसमें, वो भी अपने पेनल्टी एरिया में। लेकिन अगर दूसरा कोई खिलाड़ी ये गलती करता है तो रेफरी उसे चेतावनी देते हैं और उसके चलते वो उन्हें पीला कार्ड दिखाते हैं। लेकिन फिर भी अगर खिलाड़ी नहीं मानता है, दोबारा फिर गलती करता है, तो उसे रेड कार्ड दे दिया जाता है लाल कलर का, जिससे कि फिर उसे खेलने के कोई चांस नहीं, उसे मैदान से बाहर कर दिया जाता है। बच्चों 90 मिनट के बाद हार या जीत का फैसला हो जाता है और अगर नहीं हुआ, स्कोर बराबर रहा, तो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है पेनाल्टी शूट आउट के लिए। दोनों टीमें पेनाल्टी शूट आउट करती हैं, जो भी संख्या निर्धारित की जाती है और उसमें जिसने ज्यादा शूट आउट कर दिए होते वो विनर घोषित हो जाते हैं। बच्चों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल का संचालन फीफा के द्वारा किया जाता है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। फीफा द्वारा ही हम हर 4 साल में देखते हैं कि एक बार वर्ल्ड कप होता है, उसका आयोजन किया जाता है। भारत में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ इसका संचालन करता है। बच्चों आधुनिक फुटबॉल के बारे में अगर हम जाने, वैसे तो ये 2000 साल पुराना खेल ऐसा माना जाता है, अलग अलग नामों से अलग अलग तरीके से इसे खेला गया था, पर अगर हम आधुनिक फुटबॉल की बात करें तो इंग्लैंड में एबेनेजर कार्ब मॉर्ले ने इसको जो है उनको जनक माना गया है फुटबॉल का। भारत में 19वीं शताब्दी के मध्य में फुटबॉल खेला गया था जबकि यहाँ पर ब्रिटिश राज था। हमारे यहाँ बंगाल में इसका काफी चलन है और हम अगर घरेलू फुटबॉल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ ISL लीग और आई लीग पेशेवर फुटबॉल लीग है, जिनके चलते हमारे यहाँ के कई सारे खिलाड़ी जो हैं वो फुटबॉल खेला करते हैं और काफी अच्छे से। अभी बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ, क्योंकि दूसरे खेलों का ज़्यादा चलन है इसलिए फुटबॉल शायद दूसरे देशों की अपेक्षा उतना ज़्यादा अभी पॉपुलर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जरूर एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल टीम को जीतते हुए देखेंगे। फिलहाल एक और गीत जिसमें कि ऐसा इतिहास बताया गया है कि किस तरीके से हम हॉकी खेलते हुए गोल्ड लेकर आए थे, तो चलिए सुनते हैं, समझते हैं इस गीत को।

बच्चों, आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करी जिसका शीर्षक था हार नहीं मानूंगा। हार नहीं मानूंगा इसका मतलब ये नहीं है कि जो काम आप नहीं कर सकते उसके पीछे पड़े रहें और वक्त बर्बाद करें, ये मैं आखिरी बात आपको कहना चाहती थी। हाँ, लेकिन जो आपको अपनी क्षमताएं पता है, आपको ये पता है कि आप ये काम कर सकते हैं, तो उसमें जरूर आप अपना 100% दें और उस काम को पूरा करें। काम को पूरा करने की आदत ही आपको जीवन में सफल बनाएगी। बच्चों, हार और जीत महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि आपने किसी काम को पूरा करने के लिए जो प्रयास किया है वो महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने अपना 100% दिया है तो आप सफल जरूर होंगे। और मान लीजिए उसमें भी 19-20 आपके साथ अगर कुछ ऐसा होता है कि असफलता हाथ लगती है, तब भी हार नहीं मानिए, आप प्रयास करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और फुलवारी से दीजिए विदा अपनी दीदी संगीता श्रीवास्तव को। जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फुलवारी। हम आकाशवाणी बैतूल से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। थोड़ी ही देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

विविध भारती का ये कार्यक्रम है चित्रलोक। अपने सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में एक बार फिर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जावेद अली की आवाज़ हूँ।

गीत और संगीता राशिद खान का जावेद अली को आपने सुना फिल्म थी राज थ्री। श्रोतो आज सुप्रसिद्ध अभिनेत्री अमृता राव का जन्मदिन है, उन्हें विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने कई टीवी विज्ञापनों और संगीत वीडियोज में भी काम किया। उन्होंने 2002 में फिल्म अप

की मदद से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें बेस्ट फिल्म फीमेल रिव्यू का फिल्म फेयर नामांकन भी मिला। 2003 में आई फिल्म इश्क विश्क में उनकी कॉलेज गर्ल की जो भूमिका थी उसने घर घर उन्हें लोकप्रिय बना दिया। मैं हूं ना जो 2004 में रिलीज हुई, इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में संजना के उनके किरदार ने दर्शकों का दिल जीता और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित भी किया गया। 2007 में उन्होंने तेलुगु फिल्म अतिथि में महेश बाबू के साथ काम किया और अपनी पहचान बनाई। उन्होंने मस्ती जो 2004 में रिलीज हुई, वेलकम टू सज्जनपुर जैसी फिल्मों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 2016 में प्रसिद्ध रेडियो जॉकी अमोल सूद से अमृता राव परिणय सूत्र में बने।

0: सुनते हैं बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, छोटा सा कार्यक्रम, जानकारी भरा कार्यक्रम,
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरढ़ी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
3: श्रोताओं नमस्कार। ग्रामीण विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आपको बता दें पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में जशपुर जिले की सरढ़ी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। आज हमारे साथ हैं श्री रामजी भगत जो कि सरपंच हैं सरढ़ी ग्राम पंचायत के। भगत जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
4: थैंक यू सर, धन्यवाद आपको।
3: भगत जी राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक पुरस्कार मिला है जिसकी उपलब्धि आपकी पंचायत को देश भर में एक अलग पहचान दिलाती है, तो जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी तब आपके मन में किस तरह की भावनाएं थी, कैसा महसूस हुआ आपको?
4: मैं तो सरपंच हूँ लेकिन मेरे ग्राम और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी खुशी के झूम उठे और मेरे जनपद के अधिकारी, जिले के अधिकारी ने भी इस राज्य लेवल का तृतीय स्थान जो कि हम छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान ग्राम पंचायत सरडी विकासखंड बगीचा जिला जशपुर को मिला उसके लिए पूरा अधिकारी भी झूम उठे और ग्रामवासी भी और क्षेत्र के समस्त अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि सभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ और इस मुकाम पे पहुँचे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।

0: और आने वाला समय में जो हम लोग का बचा खुचा है, आने वाला फर्स्ट प्राइज का अवार्ड हमको मिले, उस आधार से हम जो बचा खुचा काम है या हम लोग नहीं पहुंच पाए उसके लिए भी हम लोग काम करना चाहते हैं।
1: सरपंच जी, जब आपने इस काम को करना शुरू किया तो वहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ थी और फिर आपने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए किस तरह की गतिविधियों को संचालित किया? और ये भी जानना चाहूंगा कि वित्तीय संसाधन या फिर जागरूकता या फिर तकनीकी स्तर पर किस तरह की बातें आपके सामने आ रही थी, कोई कठिनाई थी या सब कुछ सामान्य था?
0: बहुत सारा कठिनाई था, कठिनाई को झेलते हुए हम लोग के आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी कुरवा लोग रहते हैं हमारे पास, हमारे गांव में, और जंगल है, पहाड़ है, फिर भी हम लोग जैसे साथ में समूह को मिलाकर हम लोग का जन प्रतिनिधि और महिला समूह सब साथ मिलके मेरा सपोर्ट किए और उनका मैं सपोर्ट लिया और हर मोहल्ला में लोकल सभा किए, बैठे चर्चा किए कि हमको कचरा का भी प्रबंध करना है, मतलब कचरा के इकट्ठा करना है, कहीं नहीं फेंकना है, और कचरा का कलेक्शन के लिए हम लोग महिला स्व समूह को दिए और समूह द्वारा प्रत्येक शनिवार को महीने में 4 बार और हम लोग पूरे गांव जनभागी के द्वारा सहयोग पूरे गांव के हम लोग साफ सफाई करते हैं। और ये चुनौती बहुत ज्यादा थी लेकिन मेरे सपोर्ट में जन प्रतिनिधि और पूरे जनता भाई मेरे को साथ दिए, इसलिए इस मुकाम तक हम लोग पहुँचे हैं।
1: यानी कचरा प्रबंधन पर आपने काफी बड़े स्तर पर काम किया, लोगों का सहयोग लिया और लोगों ने बढ़ चढ़कर
0: मेरा सहयोग दिए।
1: अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो खुले में शौच से मुक्ति वाली बात है तो 100% सफलता आपने हासिल की है, इसके लिए आपने किस तरह से काम किया, कौन सी चुनौतियां आपके सामने थी?
0: मेरे पास बहुत चुनौती थी, आदिवासी क्षेत्र है, कोई नहीं मान रहे थे कि ये शौचालय क्या चीज को बोलते हैं, शौचालय के बारे में उनको पता नहीं था, काहे कि हम लोग आदिवासी ट्रेवल क्षेत्र के हैं, पहाड़ी कुरवा लोग निवास करते हैं और धीरे धीरे हम लोग लोकल सभा जिसे हम लोग बोलते हैं छोटा छोटा बैठक हर मोहल्ला में समूह के माध्यम से, अब हम लोग पंच के माध्यम से, अब मैं पिछले बार भी जनपद सदस्य था तो मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी था कि हमको आगे कैसे बढ़ाना है और शौचालय शौच मुक्त कराना है, उस आधार से हम लोग बहुत मेहनत किए, लगन किए, तभी हम लोग आगे बढ़ पा रहे।
1: जल संरक्षण के लिए आपने कौन कौन से काम किए हैं?
0: जल संरक्षण के लिए केड़ा विभाग मेरा सहयोग किए, पिछले बार 5 साल जनपद सदस्य था उस समय मैंने केड़ा विभाग से 109 पंप लगवाया, इस हिसाब से पानी उपलब्ध हो पाया, इसलिए रबी के फसल और खरीफ का फसल दोनों फसल ले सकते हैं।
1: अच्छा, जल संरक्षण के क्षेत्र में आपने तालाबों के पुनर्जीवन पर काम किया, भूजल पुनर्भरण पर काम किया, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की हम बात करते हैं उस पर भी आपने काम किया, तो इस तरह के जो कदम आपने उठाए हैं इनमें भी कुछ चुनौतियां आपके सामने आई थी, आपने उनको हल किया?
0: सर, बहुत सारा चुनौती है, जैसे पानी की कमी के कारण ही तो मैं जैसे हम लोग पहले हैंडपंप लगवाए, उसके बाद पानी की जहाँ कमी रहती है हम लोग पानी की बचत करने के चक्कर में उसमें हम लोग ड्रिप सिस्टम टपका विधि से हम लोग खेती करना शुरू किए और पिछले 5-10 साल जो टपका विधि से खेती हो रहा है ड्रिप माध्यम से, तो उसमें पानी की बचत हो रही है और पानी का बचत के लिए और अभी हम लोग ये दूसरा प्लान किए हैं, एक सोखता गड्ढा जो होते हैं, अभी घर घर हर घर हर परिवार में एक गड्ढा खोद रहे हैं 2.5 मीटर का, 2 मीटर का, 1 मीटर का, उसमें हम लोग जितना बरसात का पानी चाहे अभी वाला जो हम लोग बर्तन उर्तन धोते हैं, नहाते धोते हैं, उस पानी को इकट्ठा सीधा गड्ढा में जा रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग का जल स्तर जो है जो घटने के बजाय बढ़ रहा है।
1: तो मतलब ये जो पानी का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोच आपके अंदर कैसे आई कि इस तरह से पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है?
0: सर, मैं पहले माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, जल ग्रहण समय में माइक्रो वाटर शेड में काम किया, माइक्रो वाटर शेड कर ही मतलब है कि तो वाटर पानी को इकट्ठा करना, और पानी को इकट्ठा जब मतलब कि गांव का पानी को गांव में ही मतलब कि उसको इकट्ठा करके नीचे करेंगे, उसमें क्या है कि पानी का पॉपुलेशन नीचे जाएगा, तो वही पानी हम लोग को मतलब कि उसमें कुआं है, तालाब है, डबरी है, चाहे नलकूप है, चाहे हैंडपंप है, उसमें पानी वो भी पानी आता है, बरसात का पानी।
1: अच्छा सरपंच जी, एक बात ये कही जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाना बनाने का काम है वो लकड़ियों पर किया जाता है, चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, आपने इस दिशा में भी काम किया है गैस कनेक्शन के लिए?
0: सर, पहले हम लोग के यहाँ भी लकड़ी से खाना बना रहे थे, कहा कि पुरवा लोग कहाँ से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, वो जंगल में रहते हैं, हम लोग जन आंदोलन चलाया कि लकड़ी हमको बचाना है आने वाला पीढ़ी के लिए, हम जब लकड़ी नहीं बचाएंगे तो सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, हम उस हिसाब से हमने उनको भी हम लोग बैठक करके बताए और हम लोग उस स्थिति में भी अभी हम लोग लगभग 453 परिवार के पास गैस कनेक्शन है।
1: और भगत जी, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का एक बड़ा योगदान रहता है, मैंने ये भी सुना है कि आपको वृक्षारोपण से बड़ा लगाव है, है, तो आपने किस तरह से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है अपनी पंचायत में?
0: सर देखिए, मैं जनपद सदस्य ही था उस समय, हम लोग पहले जैसे माइक्रो वाटर शेड में काम किया था उस समय भी प्लांटेशन हमने लगाया था, उसके बाद में जनपद सदस्य से पिछले पहले वर्ष था उस समय भी हम लोग प्लांटेशन लगाए, उनमें से हमको जिला प्रशासन की सहयोग से पैसा दिए और जनपद से भी कुछ पैसा और अपने तरफ जो मनरेगा उसके माध्यम से हम लोग वृक्षारोपण लगाए।
1: कुछ इलाकों में बंजर जमीन जैसी समस्याएं आती है, उनके लिए आपकी क्या योजना है, उन पर आप कैसे काम करेंगे?
0: सर आपने बहुत सवाल मेरे से अच्छा किए, अगर बंजर भूमि मेरे को अगर मिल जाता आने वाला समय में, वो बंजर भूमि में उसको हम लोग वृक्षारोपण आने वाला समय में लगाएंगे,
1: मतलब उसके लिए भी अपने
0: कार्य तैयार कर रहे हैं।
1: और सरपंच जी, एकल उपयोग प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो एक बड़ी समस्या माना जाता है, इस पर आपने काम किया है, तो किस तरह से गतिविधियों को संचालित किया, कैसे लोगों को मोटिवेट किया कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए?
0: प्लास्टिक तो हम एकदम मुक्त नहीं कर सकते हैं, क्या कि उसको हम लोग बनाते नहीं है, उसको हम खुद नहीं बनाते हैं, तो हमको उस मुक्त नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम प्रयास किए और प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्लास्टिक इकट्ठा करें, कुछ मिनी बैंक के माध्यम से हम लोग इकट्ठा हर चौराहे पर, हर कहीं दुकान है, किराना दुकान है, वहाँ पर लगा दिए, वहाँ हम लोग का मतलब गाँव में कोई प्लास्टिक मुक्त है, वास्तव में है, बाकी पंचायत में है नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है, हमारे पंचायत में है।
1: इस तरह की जो गतिविधियां खासतौर पे ये कचरा प्रबंधन की जहाँ पर बात है, साफ सफाई की बात है, तो इसमें ग्रामीण लोग जो है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी भूमिका किस तरह है, वो लोग किस तरह से आपका सहयोग करते हैं?
0: उसमें भी हम लोग समूह को लिए जिम्मेदारी दिए हैं, स्व सहायता समूह को, उसमें 11-12 जन उसमें कचरा कनेक्शन सप्ताह में करते हैं और कचरा कनेक्शन करके उनको महीने का 30 रुपया देते हैं हर परिवार, और उनका निजी जिंदगी थोड़ा बेहतर हो रहा है,
1: अच्छे रिजल्ट वहाँ से सामने आ रहे हैं।
0: और सप्ते में हम जैसे हम लोग पूरे गाँव वासी मिल के और बाकी गली का सफाई करते हैं, रोड का सफाई करते हैं।
1: सरपंच जी, आपने हरित अधोसंरचना यानी कि ग्रीनरी को तो बढ़ावा दिया ही, साथ में सौर ऊर्जा पर भी आपका काफी फोकस रहा है, इसके बारे में हमें बताएं।
0: सर केडा के माध्यम से जो भारत सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो केडा का पूरे राज्य में उसका किसानों के फायदे के लिए सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन दे रहा है
1: जी,
0: और दिया है, मैं तहे दिल से श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किसानों के लिए उतना बड़ा सोच रखते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों को लाभ मिल रहे हैं।
1: सिंचाई पंप की क्या योजना रही आपके लिए
0: विगत आने वाला समय में, और अगर किसान जो छूटे हुए हैं उनके लिए और अगर सिंचाई पंप मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता,
1: यानी प्रयास आपके जारी है। अच्छा, ग्रामीणों ने आपकी काफी मदद की होगी तब जाकर के आपको ये सफलता प्राप्त हुई है, तो उनकी किस तरह की उपलब्धियां रही, कैसे लोगों ने आपको बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया कि आपको लगा कि हाँ इनके साथ मिलकर अब हम ये काम और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं?
0: सर उनको तो मैं जितना मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रामवासियों के लिए और जनप्रतिनिधियों को, और मेरे जनपद के शासन प्रशासन और जिले के सभी टीमों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सहयोग जनपद से और जिले से सहयोग जो मिला उसके लिए भी सभी समस्त अधिकारी कर्मचारी और पंचगण या आम जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
1: आपकी पंचायत के जो भी लोग हैं, जाहिर सी बात है कुछ न कुछ समस्याएं हर किसी के सामने आ ही जाती हैं, तो वो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं या किसी भी तरीके से आप तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं, तो उसमें किस तरह से आप एक्शन लेते हैं, कैसे लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं?
0: सर हमारे पास बहुत सारा समस्या है, काहे कि हमारे आदिवासी क्षेत्र है, मेरे पास सुबह टाका लग जाता है, एकदम सुबह जब मैं सो के नहीं उठता हूँ 5 बजे आदमी आ जाते हैं
1: जी,
0: और सारा समस्या का हल मैं इसमें उठता हूँ बैठने के लिए उनको बोल देता हूँ बैठिए मैं आ रहा हूँ, उसके बाद उनका समस्या को देता हूँ क्या कौन सा समस्या क्या है, तो मैं इसमें उनका समस्या को हल करने का कोशिश करता हूँ, मेरे से नहीं बनता है, जो ऊपर स्तर से चाहे ब्लॉक स्तर से चाहे जिला स्तर उनका काम को करने के लिए प्रयास करता हूँ।
1: तो कोई खास दिन निर्धारित कर रखा है उनसे मिलने के लिए या प्रत्येक दिन सभी लोग आते हैं जहाँ पर अपनी समस्याएं वो आपके सामने रखते हैं?
0: हमारे यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को भी जो लगता है सचिवालय उस दिन अलग है, वो तो सरकारी क्रम शासन
1: अच्छा।
0: है मेरा सोमवार मंगल बुध भी मेरा 3 दिन लगातार बैठक अपने घरे में बैठता हूँ, और 3 दिन घर में बैठता हूँ और 3 दिन पंचायत भवन में बैठता हूँ, और 3 दिन मेरा काम हो जाता है, मतलब हमेशा व्यस्त रहता हूँ, किसी पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है,
1: यही कारण है कि आपके पंचायत को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है
0: जी सर।
1: अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आपको क्या लगता है कि जो भी बुनियादी ढांचा आप लगातार बना रहे हैं उससे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जब गांव में सड़कों की बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं, या मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी की बात होती है, आते जाते हैं कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, उसके लिए किस तरह के प्रबंध है?
0: सर उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ बहुत काम बचा है, उस काम को भी हम लोग प्लान बना के उसको शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे। जो बचा कुचा है उस काम को वहाँ आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय जहाँ हम लोग का कार्य जो बचा है उसको पूर्ण कर सके।
1: तो सरपंच जी, आपने ये जो सफलता हासिल की है, इस उपलब्धि तक आप पहुँचे हैं, तो इसमें आपकी सबसे बड़ी कार्य योजना क्या रही, आपका माइंड सेट क्या था, कैसा आपने सोचा कि इस योजना पे मुझे चलना चाहिए, इससे मुझे काफी कुछ प्राप्त हो सकता है?
0: सर, हम लोग के यहाँ जैसे सबसे पिछड़ा पहाड़ी कोरवा लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, उनको समझाना

0: तो बड़ी बड़ी मुश्किल था, फिर भी हम लोग सोचे कि पूरे गांव पे बैठक करके सोचे और शासन से सहयोग लिए। जिला प्रशासन ने हमको सहयोग दिया, जनपद ने भी मुझे सहयोग दिया। उसी कारण से उड़िया मतलब पंचायत बना, जैसे शौचालय मुक्त है ना, उसमें 453 हम लोग शौचालय बनाए।
1: सरकार के सहयोग की जब बात आती है तो आजकल सरकार डिजिटल होने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, लगातार फोकस कर रही है कि हर एक चीज पर डिजिटल तरीके से काम होना चाहिए। आपको इससे कितना फायदा और आपने अब तक कितना इसे अपनाया है?
0: सर डिजिटल एक आज का आधुनिक जमाना में बहुत ही अच्छा है। हम बैठे बैठे अपने कार्य को, जिला का हुआ चाहे राज्य का हुआ, हम अपने बैठे बैठे अपने आम जनता को फैसिलिटी दे सकते हैं।
1: जी
0: चाहे जिसे काम महिला केवाईसी वगैरह कराते हैं, चाहे और बैंक जाना पड़ता है, बैंक वाला जितना काम धाम होता है उसको हम लोग अपने पंचायत में बैठ के उसका काम को निपटा सकते हैं। और हमारे यहाँ भी आने वाले समय में उसको प्रस्ताव मैंने भेज चुका है कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र का स्थापना होने वाला है, मतलब का उसके लिए मकान बनने वाला है।
1: तो सरपंच जी, सरकारी योजनाओं का लाभ आपके गांव के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए कोई खास व्यवस्था की आपने?
0: जिन्होंने मतलब के जागरूक नहीं तो उसको मैंने उनको जगाया, ग्राम सभा में बुला के सब भाइयों को आप लोगों का क्या कमी है, सरकार के एक एक जो भी योजना है उसको सारा योजना का लाभ मैंने उनको बताया कि इस योजना में ये चीज करना है, उस योजना में जो भी लाभ है उस योजना को लाभ आप लोग लीजिए, शासन आपको दे रहा है, उस योजना को कभी भी इधर उधर मत कीजिए, उसका फायदा उठाए, उसका लाभ उठाए।
1: भगत जी, अब आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं या लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई या दोनों चीजें बढ़ गई हैं?
0: सर राष्ट्रीय स्तर से मेरे को पुरस्कार मिला है तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है और जनता का भी जिम्मेदारी बनता है और शासन का भी जिम्मेदारी बनता है। जो मेरा जब मैं कुछ मेरा जिस लेवल तक नहीं पहुंचा उस लेवल तक मेरे को पहुंचना है और जनता को भी पहुंचना है, पर शासन प्रशासन को भी ध्यान देना है कि मेरा कहीं कमी भी है उसमें फोकस ज्यादा दे तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊँ।
1: आपने एक ऐसा काम किया है जो मतलब देश की अन्य पंचायतों के लिए एक तरह से आदर्श बन सकता है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे देश की जो अन्य पंचायतें हैं उनके लिए भी अपना संदेश दें कि आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं।
0: मैं तो पूरा भारत के सभी पंचायत चाहे देशवासियों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपने भी पंचायत के बारे में जन प्रतिनिधि है या जनता आपको वहां तक पहुंचाया है तो गांव का समस्या के बारे में उन लोग भी सोचे जैसे मैंने सोचा उनको, और मेरे से बेहतर सोचना चाहिए और उनको भी ऐसा करना चाहिए।
1: तो भगत जी, आपने तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, काफी बातें हुई आपसे, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार सर।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरडी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: अब आपके और हमारे
5: हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने की जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों

श्रोताओं चित्रों कार्यक्रम की यही है आखिरी पेशकश। आप सभी का दिन शुभ हो। मंगल में हम इसी कामना के साथ लेते हैं इजाजत कार्यक्रम चित्रों से। आज का ये प्रोग्राम आपने सुना संगीता श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार।

ऊंची ध्रुव कार्यक्रम की यही है आखिरी पेशकश। आप सभी का दिन शुभ हो। मंगलमय हूँ इसी कामना के साथ लेते हैं इजाजत कार्यक्रम ऊंची ध्रुव से। आज का ये प्रोग्राम आपने सुना संगीता श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार।

0: सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमार साहब कह रहे थे कयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार कयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाए गए। सजेशन आई के साथ एक आवाज है कद्दन मिर्जा साहब, बुलाया उनको सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को। वो मिसाल गा गए आई जंजीर की झनकार खुदा खैर कर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

साथियों, आज मुझे कुछ नहीं बहुत कुछ कहना है। निर्देशक, लेखक, पटकथाकार, पत्रकार और उपन्यासकार ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में।

7 जून 1914 को पानीपत हरियाणा में जंग हुआ ख्वाजा अहमद अब्बास का। ख्वाजा अहमद अब्बास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। फिल्म, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका एक

बात शुरू करते हैं अब्बास साहब के जन्म के समय की, जबकि वो अंग्रेजों के शासन का समय था। तब 1914 में अब्बास साहब का जन्म पानीपत के एक मशहूर उर्दू शायर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली साहब के यहाँ हुआ, जो कि मिर्जा गालिब के शिष्य थे।

ख्वाजा अहमद अब्बास यानी के ए अब्बास के दादा ख्वाजा गुलाम अब्बास ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा हाली मुस्लिम हाई स्कूल में ली और फिर 1933 में अंग्रेजी में बीए और 1935 में एलएलबी की डिग्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ली।

0: मेरा तूफानी सर पे लाल टोपी रूपे फिर भी दिल हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी।
1: के ए अब्बास साहब ने अपने करियर की शुरुआत पत्रकार के रूप में की और फिर 1936 में वो पार्ट टाइम पब्लिसिस्ट के रूप में जुड़ गए बॉम्बे टॉकीज से और इसी प्रोडक्शन हाउस के लिए उन्होंने 1941 में पहली बार स्क्रीन प्ले लिखा। फिल्म थी नया संसार।

0: अखबारों से जुड़ने के साथ साथ अब्बास साहब उस दौर के लगभग सभी बड़े अखबारों में कॉलम लिखा करते थे और साथ ही उन्होंने फिल्मों में भी काम अपना शुरू कर दिया था। चेतन आनंद की पहली होम प्रोडक्शन फिल्म नीचा नगर और वी शांताराम की फिल्म डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी उन्हीं ने लिखी थी।
1: मरीजों में कहीं बीमारी फैल रही है फोड़े की तरह, अगर वो ज्यादा फैल गई तो इसका नतीजा निहायत खौफनाक होगा। उन्हें जिसमें दाखिल करूंगा जिससे पता चल जाएगा कि मेरी तबीयत पर इसके जहर का कैसा असर होता है।
2: जी, जी, मेरा जख्म अच्छा हो रहा है, मेरी दवा कारगर साबित हुई, मिल गया, मिल गया, मिल गया।

0: कि 1964 की फिल्म थी शहर और सपना। 1969 में ख्वाजा अहमद अब्बास ने बनाई फिल्म सात हिंदुस्तानी, जिसने जीता नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। और यहां हम अपने सभी श्रोताओं को याद दिला दें कि यही वो फिल्म थी जिसके जरिए आज के महानायक अमिताभ बच्चन का फिल्मी सफर शुरू हुआ था।
1: ख्वाजा अहमद अब्बास साहब से मेरी पहली मुलाकात मुंबई में हुई, ये उस सिलसिले में हुई जिसमें वो कुछ नए कलाकारों को ढूंढ रहे थे, नए चेहरों को ढूंढ रहे थे अपनी आने वाली फिल्म सात हिंदुस्तानी के लिए। मैं उन दिनों कलकत्ते की नौकरी छोड़ करके दिल्ली आया हुआ था, और जब मुझे ये सूचना मिली तो मैं अब्बास साहब से मिलने यहाँ बम्बई आया, जुहू तारा रोड पर उनके अपार्टमेंट में जहाँ पर वो अपना लेखन वगैरह किया करते थे, वहाँ उनसे मिलने गया। एक आधा घंटा मिलने के बाद मैं जब नीचे आया तो उनके असिस्टेंट थे तीनू आनंद, जो कि बाद में जाकर के सत्यजीत रे के असिस्टेंट बने। उन्होंने आकर के मुझे नीचे बताया कि अब्बास साहब ने आपकी जो तस्वीर देखी और आपसे जो मुलाकात हुई वो उनको पसंद आई, और मेरी शुरुआत जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ है। उनकी सोच जो थी वो एक बहुत ही आम आदमी की सोच होती थी। उनके मन में यह था कि ये जिस तरह से उनके किरदार या जो चरित्र उन्होंने लिखे थे इस फिल्म के बारे में, जिस तरह से वो गुजरे होंगे या जिस तरीके से उन्होंने अपना ये जीवन व्यतीत किया होगा, उसी तरह से उनके कलाकारों को भी फिल्म में जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से एक थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट में गाड़ी में बैठ करके हम लोग गोवा गए, और रास्ते में जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता गया, अगर किसी सर्किट हाउस में जंगल के बीच कहीं एक मकान मिल जाता था तो वहां पर हम लोग रहते थे। एक ही हॉल में पूरा कास्ट और पूरे वर्कर्स सब एक साथ वहां जमीन पे हम लोग सोते थे, और सभी एक किस्म का खाना खाते थे, एक ही कमरे में सब लोग रहते थे, एक ही साथ, कोई भेदभाव नहीं था। एक उनका एक बहुत ही सोशलिस्टिक और मॉरल इशू था ये उनके जीवन में।
0: राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम पुरस्कारों से ख्वाजा अहमद अब्बास साहब को नवाजा गया। 1969 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। ख्वाजा अहमद अब्बास ने फिल्मी दुनिया में जहां अनेकों फिल्मों के लिए लेखन किया, उन्हें पायनियर ऑफ इंडियन पैरेलल सिनेमा या न्यू रियलिस्टिक सिनेमा कहा जाता है, वहीं ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि अब्बास साहब की ट्यूनिंग फिल्मकार राज कपूर के साथ बहुत अच्छी थी।
2: मुंबई में सब बहरे बसते हैं क्या?
3: बहरे भी और अंधे भी, इनके कान कुछ नहीं सुन सकते सिवाय रुपयों की झनकार के। मेरे भाई बंबई, यहाँ बिल्डिंगें बनती हैं सीमेंट की और इंसानों के दिल पत्थर के। यहाँ एक ही देवता पूजा जाता है और वो है पैसा। मगधरा सामने से हटके खड़े हो, मेरे भाई धंधे का टाइम है। माई
2: धंधा यानी कि काम ना है? काम तो भाई तुम्हारे शहर में पेट भरने के लिए क्या करना चाहिए?
3: जो मैं करता हूँ भीख मांगनी चाहिए।
2: नहीं काम बताओ, मुझे काम बताओ।
3: सोचना पड़ेगा। पढ़ा लिखा है?
2: ये पास ही सच कर। ये देखो मेरी डिग्री साथ साथ ये पेपर में, ये ले, ये ले।
3: ईमानदार हो?
2: सच्चाई और ईमानदारी का सबसे पहला इनाम मुझे मिला है, सोने का मेडल। ये देखो
3: जवान हो, मेहनत कर सकते हो?
2: डबल जवान, 24 घंटे दिन में काम कर सकते हो, कुछ करा के देख ले।
3: तो तुम्हें काम नहीं मिल सकता?
2: काम नहीं मिल सकता? पढ़े लिखे ईमानदार मेहनती जवान को काम नहीं मिल सकता? क्यों नहीं?
3: ये कि जो बम्बई है मेरे भाई बम्बई, बड़ा शहर, यहाँ सच बोलकर पेट भरने का रास्ता ढूंढने से नहीं मिलता, और झूठ बोलकर पैसे बनाने के रास्ते 420।
2: थैंक यू बॉस, थैंक यू।

राजा अहमद अब्बास ने 1945 में पहली फिल्म निर्देशित की धरती के लाल। 1951 में ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपना बैनर स्थापित किया नया संसार, जिसके अंतर्गत लगातार फिल्मों का निर्माण किया जाता रहा। 1953 में अनहोनी, मुन्ना और राही ये फिल्में बनी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली उन

अब्बास ने राज कपूर की चर्चित फिल्मों में से जागते रहो, आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, बॉबी और हिना फिल्में

ख्वाजा अहमद अब्बास की कलम कभी रुकी नहीं। अपने जीवन के अंतिम समय तक वो मुंबई के लोकप्रिय अखबारों ब्रिट्स और क्रॉनिकल के लिए कॉलम लिखते रहे। 1 जून 1987 को 72 वर्ष की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया।

0: लेखक, निर्देशक, पटकथाकार, उपन्यासकार ख्वाजा अहमद अब्बास पर केंद्रित इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख और स्वर था अमरकांत का, प्रोड्यूसर रमेश गोखले। अब इजाजत दीजिए, नमस्ते।
1: आज के फनकार।

बुधवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदा बहार।

भोपाल से प्रस्तुत है मंदसौर जिले की चिट्ठी। आलेख है दीपक शर्मा का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। मंदसौर जिले में ये महीना विकास, जनकल्याण, स्वास्थ्य जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन के अनेक महत्वपूर्ण प्रयासों का साक्षी रहा। जिले में प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से कई योजनाएं धरातल पर उतरती दिखाई दी। जिले में नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए 27 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया। बीते दिनों हुई इस लोक अदालत में न्यायालयों के 656 तथा प्री लिटिगेशन के 1048 सहित कुल 1704 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत अधिनियम एवं चेक बाउंस से संबंधित मामलों का भी सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। मंदसौर जिले के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसके तहत वैदिक मंत्रोच्चार, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने भारत के गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और विकसित भारत के संकल्प पर प्रकाश डाला। किसानों को नवीन तकनीकों से जोड़ने के लिए कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत किसान रथ अभियान का शुभारंभ बीते दिनों जिले में किया गया, जिसके तहत जिले के विभिन्न विकास खंडों में 10 दिवसीय भ्रमण के दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण, बीज उपचार, मृदा परीक्षण, कृषि यंत्रीकरण और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर गुदरी टोला क्षेत्र में जागरूकता रैली निकालकर नागरिकों को डेंगू से बचाव के उपाय बताए गए। देखें साफ करें ढके थीम पर आधारित इस अभियान में आमजनों को घरों में जमा पानी की नियमित जांच और सफाई का संदेश दिया गया। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में अब तक 417 खेत तालाब तैयार हो चुके हैं, जबकि 820 तालाबों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन तालाबों से वर्षा जल का संरक्षण होगा, भूजल स्तर सुधरेगा तथा किसानों को सिंचाई के लिए स्थायी जल स्रोत उपलब्ध होंगे। इससे कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सांसद निधि से निर्मित निक्षय वाहन को बीते दिनों जिले में रवाना किया गया। यह विशेष वाहन 205 गांव एवं नगरीय क्षेत्रों में भ्रमण कर टीबी रोग के प्रति जागरूकता फैलाने, जांच सुविधा उपलब्ध कराने तथा मरीजों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का कार्य करेगा। इसके साथ ही जरूरतमंद मरीजों को पोषण सहायता भी प्रदान की जा रही है। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में आंगनबाड़ी केंद्र लालाखेड़ा में बीते दिनों आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत शिविर में ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच, एक्सरे, टीबी जांच, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर एवं रक्तचाप के परीक्षण किए गए तथा लोगों को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी दी गई। जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन समिति की बैठक में बीते दिनों औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास, भूमि आवंटन की प्रक्रिया में तेजी तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। वर्ष 2025-26 के दौरान जिले में 283 नए उद्योग पंजीकृत हुए हैं, जिनसे 1428 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। बीते दिनों विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत नगर वन में अधिकारियों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उद्यानिकी महाविद्यालय में क्लीन एंड ग्रीन गतिविधि आयोजित कर विद्यार्थियों को स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन एवं पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया गया। वहीं गंगा दशहरा के अवसर पर पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना घाट पर सामूहिक श्रमदान और स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत इस वर्ष 6650 हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई है, जिसके साथ ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लगभग 5000 युवाओं को प्रशिक्षण और लाभ भी प्रदान किया गया है। जिले में 39000 से अधिक किसानों से 2.28 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। किसानों को समर्थन मूल्य एवं बोनस सहित 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान भी किया गया है, जिसका कुल भुगतान 600 करोड़ से अधिक रहा है। महिलाओं और के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए महावारी स्वच्छता दिवस पर बीते दिनों जिला चिकित्सालय में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत कार्यशाला एवं रैली के माध्यम से स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां प्रदान की गई। वहीं पुलिस विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रदर्शनी एवं विशेषज्ञों के व्याख्यानों के माध्यम से युवाओं और नागरिकों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। मंदसौर जिले के सीतामऊ में रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले में 220 युवाओं ने पंजीयन कराया, जिसमें 149 युवाओं का प्राथमिक चयन विभिन्न निजी कंपनियों के लिए किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के हितग्राहियों को 15 लाख रुपए के चेक भी इस अवसर पर वितरित किए गए। जिला चिकित्सालय एवं सहयोगी संस्थाओं के प्रयासों से अब तक क्लब फुट से ग्रसित 34 बच्चों का सफल उपचार जिले में किया जा चुका है। वहीं मलेरिया निरोधक माह के तहत बीते दिनों मलेरिया

0: जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन जिले में किया गया, जिसके तहत नागरिकों को मलेरिया के लार्वा की पहचान, रोकथाम और उपचार की जानकारी दी गई तथा बुखार से पीड़ित प्रत्येक मरीज की जांच कराने के निर्देश भी दिए गए। मंदसौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे मंदसौर जिले की चिट्ठी। आज एक दीपक शर्मा का था और वाचन स्वर अभिषेक कटिहार का।
2: एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बैतूल से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो एफएम बैतूल।
3: नमस्कार, लीजिए अब प्रस्तुत है इस हफ्ते के फोन इन प्रोग्राम हेलो एफएम बैतूल का दूसरा और शेष भाग। हेलो एफएम बैतूल।
4: हेलो एफएम बैतूल, आदरणीय सुमन साहब, सादर सा प्रेम प्यार से नमस्कार।
3: नमस्कार,
4: मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आदरणीय सुमन साहब से वार्तालाप कर रहा हूँ। सर आप कैसे हैं?
3: आप कैसे हैं शारदा प्रसाद जी?
4: मैं तो बहुत अच्छा हूँ। मास्टर आपसे वार्तालाप हो जाती है तो एकदम हृदय प्रफुल्लित गदगद हो जाता है, आनंद की अनुभूति है। बस क्या कह सकता हूँ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाता लेकिन बहुत ही खुशी होती है।
3: रेडियो आप बहुत दिनों से सुन रहे हैं ना?
4: जी जी बिल्कुल, आपका सही अंदाज है। मैं काफी दिनों से रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ और कार्यक्रम सुनना मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है।
3: कैसे कार्यक्रम पसंद करते हैं शारदा प्रसाद जी रेडियो में?
4: मैं ज्यादातर फिल्म संगीत पसंद करता हूँ, सुगम संगीत पसंद करता हूँ और जो सूचना शिक्षा मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम आप लोग प्रसारित करते हैं उन्हें भी पसंद करता हूँ।
3: चलिए तो बहुत अच्छी बात है, फिल्म संगीत का प्रोग्राम आप पसंद करते हैं। आज कौन सा गाना सुनवाए शारदा प्रसाद जी को?
4: पांडवर आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर। गायक है महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। प्यार जिंदगी है यह
3: एलेक्स पिंटू भी है साथ में। और बताइए मथुरा के क्या हाल है?
4: में तो इस वक्त चमचमाती हुई धूप है, गर्म गर्म हवाएं चल रही है, तापमान मैक्सिमम 41 के आसपास रहता है और न्यूनतम जो है वो जाती 28-29-30 के आसपास बनता है। लेकिन क्या है कि बेहद गर्मी है इस वक्त, यह है कि लोग का प्रकोप थोड़ा कम हो गया है। कुछ दिन पहले हुई थी आग तूफान भी आया था जिससे कि थोड़ा तापमान गिरावट जरूर आया है। ऐसे मौसम में थोड़ा सा पर्यटन और भक्त कम आ रहे हैं मथुरा वृंदावन में, गर्मी का प्रकोप चल रहा है इस वजह से। बाकी तो सब कुशल मंगल है राजू के।
3: चलिए जुड़ रहिए और लीजिए प्रोग्राम में सुनवाते हैं शारदा प्रसाद जी आपको।

0: जी हेलो एफएम बैठू।
1: हेलो एफएम बैठू
0: जी। नमस्ते।
1: नमस्कार
0: जी, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ सर, ग्राम बसोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
1: प्रेम सिंह जी उज्जैन से बात कर रहे हैं।
0: जी सर, कैसे हैं आप?
1: आप कैसे हैं?
0: जी मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात कर मुझे अच्छा लग रहा है।
1: क्या करते हैं प्रेम सिंह जी आप?
0: जी सर, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ। और एक बात बताऊँ सर मैं जी, आपके बात करने का अंदाज मुझे सबसे अच्छा लगता है।
1: उज्जैन के हैं ना आप? उज्जैन तो महाकालेश्वर की नगरी है। गर्मी पड़ रही है उज्जैन में?
0: हाँ जी, गर्मी तो काफी है। और आपको बताऊँ, प्री मानसून भी शुरू हो चुका है यहाँ पे जी। बादल भी आ रहे हैं, बरसात भी हो रही है थोड़ी बहुत, और बहुत तेज हवाएं भी चल रही है।
1: तो आने वाले दिनों में आप खेत में क्या बोएंगे?
0: जी खेत में सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी हमारे यहाँ पे जी। बिल्कुल मैदानी इलाका है, और मतलब खेत के मेड़ों पर लोगों ने कुछ पेड़ भी लगा रखे, जैसे आम के हुए, जामुन के हुए, खजूर के हुए। तो अभी फिलहाल हमारे पे आम, जामुन और खजूर भरपूर मात्रा में लोगों को मिल रहे हैं खाने के लिए।
1: और बताइए कौन सा गाना सुनाए प्रेम सिंह जी को आज?
0: जी सर, फिल्म का नाम रहेगा खानदान, और गाने के बोले नील के उड़ते बादल वाला है ना, धूप में जलता खेत हमारी, कर दे तो छाया, वो वाला गीत सुनना चाहेंगे।
1: बिल्कुल आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गाना है।
0: जी हाँ।
1: चलिए प्रेम सिंह जी आपको सुनवाते हैं आज।

0: रेखा मजुमदार जी बात कर रही हैं?
1: जी।
0: रेखा मजुमदार जी कहाँ से बात कर रही हैं?
1: बैतूल साली से।
0: कैसी हैं आप रेखा जी?
1: बढ़िया हूँ, एक्सरसाइज कर रही थी अभी।
0: एक्सरसाइज कर रही थी?
1: फोन लगाती हूँ, आज लग गया।
0: बड़ी अच्छी बात है।
1: साथ में सासू जी भी कर रही थी।
0: अच्छा, एक्सरसाइज?
1: एक्सरसाइज प्राणायाम।
0: प्राणायाम, बड़ी अच्छी बात है। तो रेडियो आप जरूर सुनती हैं?
1: जरूर, हमेशा काम करते हुए हमेशा सुनते रहते हैं। सवेरे 6 बजे से 8-9 बजे तक
0: कार्यक्रम महिला जगत भी प्रसारित होता है। आप सुनते हैं?
1: महिला जगत भी सुने, थोड़ा बिजी रहते, कभी कभी छूट जाते हैं। टाइमिंग तो पता है, पर कभी कभी थोड़ा बिजी हो जाते हैं तो नहीं हो पाता है।
0: तो कैसे गाने पसंद है आपको?
1: पुराने मुझे बहुत पसंद है, मेरे पतिदेव को भी, मेरी सासू माँ को भी।
0: क्या करते हैं आपके पतिदेव?
1: स्कूल टीचर है।
0: टीचिंग जॉब में?
1: हाँ, टीचिंग जॉब में। घर में रात को 2 लाख लेते हैं।
0: घर पे?
1: जी।
0: तो दोनों ही टीचिंग जॉब में है कायदे से?
1: जी जी सर।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है। बताइए, आपको तो पुराने गाने पसंद है।
1: जी जी।
0: तो कौन सा गीत सुनवाना चाहती हैं आज?
1: अपने सासू माँ के लिए गाना पसंद करना चाहती हूँ। 100 साल जी हमारी सासू माँ। मेरी सासू माँ भी बैठी है।
0: तो सास बहू का ये प्यार बना रहे। तो लीजिए, अब हम आपको सुनवाते हैं आप ही की पसंद का।

0: हेलो एफएम बैतूल।
1: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कालजू जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान सिंह जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: सर ठीक है सर, आप भी अच्छे, मैं भी अच्छा हूँ सर। और यहाँ तो मौसम में परिवर्तन हुआ है सर, ऐसा लग रहा है कि जिससे बरसात आने में टाइम नहीं है, क्योंकि बादल बदल किया है, पानी गिरा है सर, और धूप करता है, उमस गर्मी होता है सर, और ये मतलब बादल कर रहा है सर चारों तरफ, धूप भी है, तो ऐसा लग रहा है कि पानी अब गिरने के कगार में है।
0: तो इंद्रभान सिंह जी, आज कौन सा गाना सुनवाए कार्यक्रम में?
1: आज मैं सुनूंगा सर, फिल्म का नाम है सर, और गीत की बोले सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन, गायक कुमार सानू।
0: अच्छा,
1: सबसे पहले गीत आपको केंद्र निदेशक साहब को, पूरी भारत की श्रोता को, आकाशवाणी बैतूल में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, बैतूल में जुड़े सभी उपभोषक भाई बहनों को, सभी लोगों को डीडे करूँ। हेलो एक्टर श्रोताओं को डीडे कराऊँ। उसका पता शनिवार को 8:30 बजे और रविवार को सुबह 10 बजे।

0: एफएम बैतूल।
1: हेलो फोन प्रोग्राम।
0: बिल्कुल आपने हेलो एफएम बैतूल में फोन लगाया है।
1: आपकी आवाज तो बढ़िया है सर एकदम। मैं रामचंद्र माखेजा काठर भाई बोल रहा हूँ सर।
0: रामचंद्र
1: भी बोल रहे हैं क्या
0: जी? सुमन बात कर रहा हूँ।
1: हाँ हाँ,
0: कैसे हैं?
1: बस बढ़िया है सर। जिंदगी जीने का नाम है, चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। जब तक श्वास है चलेगा, और जब पुरानी गाड़ी होगी तो फिर खटारा टाइप का, जब भगवान ले जाए।
0: आपका स्वास्थ्य कैसा है?
1: हाँ बढ़िया बढ़िया, फिलहाल तो बढ़िया है।
0: रामचंद्र माखेजा जी कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मैं बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से बोल रहा हूँ सर।
0: अच्छा, छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं आप, धमतरी छत्तीसगढ़।
1: जी जी जी।
0: इतनी दूर आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं?
1: जी जी जी।
0: बड़ी अच्छी बात है। कौन सा गाना सुनवाए आज के प्रोग्राम में?
1: आप सुनाइएगा, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई जाना नहीं कोई समझा नहीं, किशोर कुमार साहब जी की आवाज में सर।
0: बिल्कुल, फिल्म आपकी कसम का ये गाना है।
1: जी जी।
0: चलिए आपको रामचंद्र जी ये गाना सुनवाएंगे। वैसे आप क्या करते हैं?
1: हाँ मेरा रेडीमेड का काम है सर, सिले सिलाए वस्त्र जैसे रहते हैं ना, जींस शर्ट नाइटी, वो सिले सिलाई कपड़े। क्योंकि आजकल क्या परिवर्तन है, पहले थान कपड़ा रखते थे, सिलवा के पहनते थे जैसे टेलरों से। अब हो गया है, जब जीरो साइज बच्चा पैदा होता है छठी से लेकर बड़ों तक आजकल रेडीमेड चलता है। कुछ ही लोग हैं जो अपना सिलवा के पहनते हैं, तो परिवर्तन है समय का सर।
0: बिल्कुल,
1: तो उसके साथ अपने को भी चलना है, दो पैसा मिल जाए।
0: जी जी जी बिल्कुल। तो आपका बिजनेस ठीक चलता है?
1: जी जी, चार रोटी निकल जाता है।
0: रेडियो आप सुनते हैं ना?
1: जी जी, रेडियो बचपन से सुन रहे हैं सर आपका।

0: होता है छठी से लेकर बड़ों तक आजकल रेडीमेड चलता है, कुछ ही लोग हैं जो अपना सिलवा के पहनते हैं, तो परिवर्तन है समय का सर।
1: बिल्कुल,
0: तो उसके साथ अपने को भी चलना है जो पैसा मिल जाए।
1: जी जी जी बिल्कुल। तो आपका बिजनेस ठीक चलता है?
0: जी जी, चार रोटी निकल जाता है।
1: रेडियो आप सुनते हैं ना?
0: जी जी, रेडियो बचपन से सुन रहे सर आपका, और अभी तो मोबाइल के कारण आपका बहुत बढ़िया हो गया, और आप यूट्यूब वगैरह भी डालते हैं, उसमें भी मजा आ जाता है सुन के स्पष्ट आवाज।
1: जुड़े हैं तो जुड़े रहिएगा, लीजिए प्रोग्राम में सुनवाते हैं आप।
0: ओके सर, वंदे मातरम।

0: नमस्कार।
1: हाँ जी, मेरा नाम शांति शर्मा है, गंज से बोल रही हूँ।
0: शांति जी बात कर रही है गंज से।
1: हाँ जी।
0: शांति जी कैसी हैं?
1: बढ़िया।
0: आपकी तबीयत इस वक्त कैसी है? ठीक है,
1: बस सब ठीक है।
0: आप तो
1: गृहिणी हैं?
0: आप तो गृहिणी हैं। अच्छा, आपके बच्चे?
1: बच्चे दो लड़कियाँ, एक लड़का है अनुभव, आरजू अजीत।
0: अच्छा, गंज पे आप कितने सालों से रह रही हैं बैतूल में?
1: यहाँ पे शादी होता है जब से हूँ मैं।
0: अच्छा, आपका मायका?
1: महाराष्ट्र का मायका है, अमरावती का।
0: अमरावती का।
1: हाँ जी, गाना सुना था?
0: बताइए कौन सा गीत?
1: जाओ कहाँ बताए दिल दुनिया है बड़ी तंग।
0: क्या बात है, क्या गीत सुना है आपने शांति जी।
1: हाँ जी,
0: ये गाना मुकेश जी की आवाज में है। आपको पुराने गाने बहुत पसंद है क्यों?
1: बहुत पसंद है, छोटी बहन का है।
0: बिल्कुल सही कह रही है, आप फिल्म छोटी बहन से ये गाना है। बहुत सुंदर गीत चुना शांति जी। लीजिए, अब हम आपको सुनवाते हैं आप ही की पसंद का ये गाना मुकेश जी।

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: नमस्कार सर।
2: नमस्कार,
1: मैं सुरेश कुमार सारथी बोल रहा हूँ सर, छत्तीसगढ़ जनेतरा जिला से।
2: सुरेश जी बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है, और गर्मी के इस मौसम में घर से निकलने की हिम्मत नहीं होता सर।
2: अच्छा,
1: भीषण गर्मी है और ऐसे स्थिति में थोड़ी सी खान पान, सेहत के लिए खान पान को ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी हो गया है सर।
2: बिल्कुल,
1: तेलपुर मिर्च मसाला वाला भोजन करना अभी के मौसम में सेहत खराब करने के बराबर है।
2: बिल्कुल,
1: तो ऐसे स्थिति में फल फ्रूट ज्यादा सेवन करना चाहिए जिससे पानी की मात्रा शरीर में बनी रहे।
2: बिल्कुल,
1: और अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए।
2: सही कह रहे हैं आप सुरेश जी। आज कौन सा गाना सुनना है?
1: जी सर, आप सुनवा दीजिए सर, प्यार झुकता नहीं तो है, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में है सर। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है।
2: ये सुपर हिट गाना आपको जरूर सुनवाएंगे सुरेश जी। वैसे घर परिवार में सब ठीक है आपके?
1: घर परिवार में सब मस्त है सर। मेरा बड़ा लड़का कमल खान सारथी है जो PWD में कार्यरत है सर, और दो लड़के और है, वीरेंद्र खान सारथी, संस्कृत खान सारथी।
2: तो सुरेश जी को आज के प्रोग्राम में सुनवाते होंगे की पसंद।

0: हैं बैतूल?
1: बैतूल बाजार से बोल रहा हूँ।
0: बैतूल बाजार से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं?
1: गणपति सूर्य बैतूल बाजार।
0: बैतूल बाजार से बात कर रहे हैं?
1: बाजार चौक से।
0: बाजार चौक से?
1: हाँ।
0: क्या करते हैं आप?
1: खेलन दुकान चला रहा हूँ।
0: अच्छा, और वही रेडियो सुनते हैं?
1: हाँ, रेडियो तो सर कम से कम 35 साल हो गए सुन रहा हूँ।
0: अच्छा,
1: और मेरे साथी का नाम बोलना चाहता हूँ, नरेश सोनी, मुन्ना बेगी और नागराज पानकर
0: जी। तो बाजार चौक बैतूल बाजार में आप सुनवाते हैं आपको गणेश जी, आप ही पसंद करेगा।

0: हसन बैतूल,
1: आपसे कहाँ से बोल रहा था सर?
0: खाते गांव से बात कर रहे हैं।
1: गोविंद जलोदिया।
0: गोविंद जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है सर, अब तो ठंडाई पड़ गई है।
0: मतलब बरसात हो गई?
1: बरसात हो।
0: तो कौन सा गाना सुनवाई गोविंद जी को?
1: अब आपकी पसंद का सर, अब इतने दिन हो गया है, कम से कम आपकी पसंद से कुछ आपकी भी क्या चॉइस है ये भी देख लेते हैं।
0: आपको 50s और 60s के गाने बहुत पसंद है?
1: हाँ सर, पूरा सबसे प्रिय मेरे को गीतकारों में नौशाद से अच्छा कोई गीतकार नहीं समझ में आया सर। हाँ, अच्छे अच्छे गाने लिखे उसने, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ दे ले।
0: उनका जो म्यूजिक होता था वो क्लासिकल बेस्ड म्यूजिक होता था। और इंस्ट्रूमेंट्स भी उनके जो है ना क्लासिकल ही होते
1: हैं। और फिलो संगीत से रहते थे सर, ऐसा नहीं है आजकल के जो चल रहा है। शंकर जय किशन और शैलेंद्र हसरा जयपुर का एक जमाना था
0: जी। बिल्कुल, 1948 से वो जमाना शुरू हुआ फिल्म बरसात से।
1: हाँ, बरसात से ही हिट हुए थे वो।

0: हेलो
1: नमस्कार,
0: आपका श्रोता बात कर रहा हूँ गुजरात से। आप कैसे हो सर?
1: आप कैसे हैं?
0: हम अच्छे हैं और मेरा नाम धीरज व्यापारी है सर।
1: धीरज जी बात कर रहे हैं? गुजरात में कहाँ रहते हैं?
0: मेरा गांव का नाम है डेर, तहसील जिला पाटन, और रहता हूँ मैं अहमदाबाद।
1: अहमदाबाद में रहते हैं आप?
0: जी सर, और यहाँ गुजराती में अहमदाबाद बोलते हैं और हिंदी में अहमदाबाद बोलते हैं।
1: तो अहमदाबाद में आप क्या करते हैं?
0: अहमदाबाद में मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और समय मिलने पर आकाशवाणी को सुनता रहता
1: हूँ। समय मिलने पर आकाशवाणी सुनते हैं? कब से सुन रहे हैं आप आकाशवाणी?
0: रेडियो का जो फोन इन कार्यक्रम है सर मेरे को बहुत पसंद है।
1: अच्छा,
0: आज गाना सुने आप तो ऐसे न थे और गाने के बोल तू इस तरह ले।

आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो एफएम बैतूल। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है।

0: दीवा के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। श्रोतों, इस अंक में आज हम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में विविध भारती की मासिक गतिविधि सृजन भारती के अंतर्गत आयोजित लोक संगीत संध्या लोक रंग के संपादित अंश आपके लिए लेकर आए हैं। आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष 21 मई को संपन्न हुई इस विविध लोकरंगी संध्या में प्रतिभागी कलाकार थे डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, विभा रानी, प्रोफेसर प्रशांत मोरे, ममता वर्मा और नरोत्तम बेन। सहभागी कलाकार थे तबला पर शशांक निलेश प्रभु, हारमोनियम पर सिद्धार्थ मेस्ता, ढोलक पर सुधीर जंगम और सहवाद्य पर थे जयंत पत्रिकर। इस विविध रंगी लोक संगीत संध्या में नगर सेवक शिवा शेट्टी, निदेशक अभियांत्रिकी राजेश बेलदार, सहायक कार्यक्रम निदेशक डॉ संतोष जाधव, विविध भारती के अधिकारी व कर्मचारी और जाने माने साहित्यकार कलाकार उपस्थित थे। कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया ममता सिंह और यूनुस खान ने। तो आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष 21 मई को संपन्न हुए लोकरंग कार्यक्रम के संपादित अंश।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी अपनी स्वर यात्रा के 90 वर्ष पूरे करने की ओर अग्रसर है और इस मौके पर विविध भारती के सृजन भारती के अंतर्गत हमने लोक रंग का आयोजन किया है। लोक रंग के जरिए आप ये देखेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों का जो संगीत है उसके भीतर एक अंतरधारा है जो हम सबको आपस में जोड़ती है और जो ये दिखाती है कि भारत विविधता में एकता का देश है। तो आज के इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक कलाकार है और देश के अलग अलग राज्यों के लोक संगीत की बेमिसाल प्रस्तुति के लिए आप सभी तैयार रहिएगा। ये सृजन भारती का लोक रंग क्या कार्यक्रम है, इसका परिचय देने के लिए मैं विविध भारती के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर संतोष यादव को आमंत्रित कर रहा हूँ।
2: नमस्कार, आज के इस महफिल में सारे कलाकार और उपस्थित सभी संगीत प्रेमी, रेडियो प्रेमी, विविध भारती प्रेमी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आकाशवाणी भारत की गौरवशाली प्रसारण परंपरा की एक प्रतीक है। आकाशवाणी ने अपनी 90 बरस की प्रेरणादायी अविस्मरणीय यात्रा पूर्ण की है। इस 90 बरस में आकाशवाणी ने भारतीय संस्कृति, साहित्य और संगीत जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य किया है। इस गौरवशाली स्मरणोत्सव के अंतर्गत विविध भारती द्वारा इस लोक रंग महफिल का आयोजन किया गया है। इस महफिल में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। भारत विविधता से समृद्ध देश है। यहाँ की लोक संस्कृति, लोक गीत और लोक धुनों में हमारी मिट्टी की खुशबू है। सांस्कृतिक विरासत का आनंद लेने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मैं सभी कलाकारों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस मंच पर उपस्थित कलाकार अपनी मधुर प्रस्तुतियों से लोक संगीत पेश करेंगे। तो आइए लोक रंग की इस सुनहरी शाम में हम शामिल होते हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष की एक गौरवशाली यात्रा को नमन करते हुए मैं बस इतना ही कहूंगा, भारत के जितने लोगों तक पहुंचता है पानी, भारत के जितने लोगों तक पहुंचता है पानी, उनसे भी ज्यादा लोगों तक पहुंचती है आकाशवाणी। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संतोष यादव। और अब अतिथियों के स्वागत की बारी है। आज के इस कार्यक्रम में आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोग पुष्प गुच्छ के जरिए स्वागत नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक पौधा भेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि फूल तो मुरझा जाते हैं पर पौधा कायम रहता है। आज के इस कार्यक्रम में जो कलाकार मौजूद हैं, एक एक करके मैं उनका जल्दी से परिचय देता हूं और उसके बाद इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव माननीय राष्ट्रपति के हाथों संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित है। बीते बरस वे पोर्ट ऑफ स्पेन, नेल्सन आइलैंड और सेंट लूसिया में परफॉर्म कर चुकी है। हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा माटी सम्मान से सम्मानित किया गया है। विभा रानी हिंदी और मैथिली की जानी मानी साहित्यकार हैं। 20 से ज्यादा किताबें उनकी आ चुकी हैं, जिनमें कहानी संग्रह, नाटक, उपन्यास और लोक कथा संग्रह शामिल हैं। वे एक सक्रिय थिएटर और फिल्म कलाकार हैं। लाडली मीडिया सम्मान और नेमी चंद जैन नाट्य लेखन सम्मान से सम्मानित की जा चुकी है। मोहन राकेश सम्मान

0: रॉयल वीमेन अचीवर सम्मान उन्हें मिल चुका है। लाल कप्तान, शमशेरा, महारानी, माँ जैसी फिल्में और वेब सीरीज उन्होंने की है। उनकी मशहूर किताबें हैं मधुबन की मुनिया, प्रेग्नेंट फादर, दूसरा आदमी, पीर पराई, आवतनिक प्रेम करे, अगले जन्म मुहे, बिटिया न कीजो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपना करियर रेडियो से शुरू किया था। प्राध्यापक प्रशांत मोरे एक बहुत मशहूर लोक कवि है। कथा, तिच्चा, लग्नाची और स्पर्श जैसी फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे हैं, गाए हैं और स्वरबद्ध किए हैं। हिंदी, उर्दू, मराठी मुशायरे में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व प्रशांत जी ने किया है। आयशा कविता नाम की उनकी प्रस्तुति के भारत भर में 5600 शो हो चुके हैं, कमाल का रिकॉर्ड। नामदेव भसाल पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कार हैं। उनकी कृतियां हैं वेदना सातारकर, कबीरांची बीन, माए अर्थात आईची कविता, खंड एक और खंड दो, अभिवादन बा भीम, नरोत्तम बोल। विगत 33 वर्षों से सतत रंगकर्म कर रहे हैं। जबलपुर से रंगकर्म की शुरुआत की थी और इस वक्त मुंबई में भी रंगकर्म जारी है। एक नाटक की रिहर्सल से सीधे इस मंच पर पदार्पण किया है उन्होंने। अभिनय कार्यशालाओं का संचालन करते हैं। कई नाटकों का निर्देशन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा महेश्वर में सन 1994 में आयोजित अभिनय कार्यशाला में अभिनेता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कई विज्ञापनों, धारावाहिकों, फिल्मों और वेब सीरीज में अभिनय किया है और बुंदेली लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध है। नरोत्तम बेन यहाँ बुंदेली लोकगीत प्रस्तुत करेंगे। ममता वर्मा बागेश्वर उत्तराखंड में पैदा हुई, 2021 से मुंबई आई हैं और कई सांस्कृतिक गतिविधियों में उन्होंने प्रस्तुति की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज पहली बार विविध भारती के लिए वो मंच पर गीत प्रस्तुतियां करने वाली है। तो ममता का बहुत हौसला बढ़ाने की जरूरत है। ये हमारे कलाकार हैं और इसके अलावा बहुत ही काबिल कलाकार हारमोनियम, तबला और ढोलक पर मौजूद हैं। और इसके अलावा डफ और घुंघरू जैसे सहायक वाद्यों पर मेरे अपने साथी विविध भारती के मशहूर उद्घोषक जयंत पात्रीकर साथ देंगे। तो ये हमारा जमावड़ा है और इस कार्यक्रम का संचालन ममता सिंह करेंगी। तो आइए ममता सिंह कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए।
1: सभी अतिथियों को नमस्कार और सभी का स्वागत। आज की जो संध्या समर्पित है हमारे मिट्टी की उस मीठी खुशबू को जो लोकगीतों की स्वर लहरियों में बसती है। लोकगीत यानी हमारी परंपराओं की धड़कन, हमारे गांव की मुस्कान, माँ की लोरी, खेतों की गूंज, त्योहारों की रौनक और रिश्तों की मिठास। जब लोकगीत गूंजते हैं तो सिर्फ सुर नहीं बजते। तो चलिए फिर इस रंगारंग संध्या में हम सब मिलकर स्वागत करते हैं उन सुरों का जो पीढ़ियों से दिलों को जोड़ते आए हैं। लोकगीत में पूरी परंपरा है, पूरी संस्कृति है, रिश्ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विभूषी शैलेश श्रीवास्तव जी का हम स्वागत करते हैं और चलते हैं उत्तर प्रदेश के लोक संगीत में। जरा जोरदार तालियों से स्वागत। वैसे तो देश के सभी राज्य में लोकगीत की अलग परंपरा है, अलग छटा है, अलग रंग है, लेकिन उत्तर प्रदेश का लोकगीत एक खास रंग लिए होता है, क्योंकि हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत देवी गीत से करते हैं, जो उत्तर प्रदेश की परंपरा है। विवाह गीत जब गाते हैं उससे पहले देवी गीत गाते हैं। तो माँ सरस्वती की आराधना से शुरू करते हैं।
2: आप सभी के हमारे प्रणाम स्वीकार करेंगे। अपनी माटी की सेवा खातिर ना भरा
1: सरस्वती मैया की जय। हाँ।

0: क्या बात है
1: जी। मैं माननीय सभी जो उपस्थित गण हैं सबका मैं मंच से स्वागत करती हूँ। बहुत आभारी हूँ भक्ति की।
0: शुक्रिया चले जी। अभी यहाँ पर लोकगीतों की जो परंपरा है वो बड़ी समृद्ध है।
1: देखिए भारती आपका 90 वर्ष
0: तो उस पर कुछ गा रही
1: हूँ। हाँ सुनाई जाती हूँ।

0: सुंदर अंदाज में आपने पेश किया, तो ये भी बता दीजिए कि इन मौकों पर इस ये लोकगीत गाया जाता है।
1: ये तो सोहर है, 150-200 वर्ष पुरानी हमारी परंपरा है। जब प्रसव क्रिया में नारी होती है तो सोहर इसका नाम ही है। तो इसके स्वर ऐसे हैं कि जिनसे वो अपने सारे कष्ट को भूल जाती है, मतलब वो भर लेता है, क्योंकि म्यूजिक और स्वर जो ईश्वर तक जाने का इतना एक सहज माध्यम इसीलिए माना गया है कि इसके जो भाव हैं, इसके जो लगाव हैं सुरों के, वो ऐसे होते हैं कि वो आपको एक दूसरी दुनिया में लेके जाते हैं।
0: तो अब लोकगीत का कौन सा वाला रंग छेड़ रही है, जिस रंग में हम अभिभूत होने जा रहे हैं?
1: अब देखिए, मैं तो बलिया की हूँ, बागी बलिया, और वहाँ की मैं पहली गायिका महिला कलाकार हूँ, बलिया की पहली महिला गायिका कलाकार हूँ। तो कितनी सारी वहाँ पे मुझे हमारे शब्दों के भी ताने वगैरह भी सुनने को मिलते थे, लड़की के गवाओ तरंग दिया कर घर के लड़के। आज तो सब लोग, हर दूसरा घर का बच्चा या बच्ची कहता है, देखिए देखिए हमारी बच्ची गा रही है, उधर देखिए कितना अच्छा गा रही है। उसको इतने सारे एक्सपोजर, अगर हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ तो बहुत मुश्किल था। हमारी माई कहती थी हम ही शादी करके आए हैं, इनको लड़का बना के घुमा रहे हैं, कैसे होगा इनका शादी दिया कास्ट के घर में। घर में ही इतनी दुविधा थी। अगर मैं बलिया से सीधे भैया बम्बई इन्हीं बतावा, यहाँ देखा तो सब बदल गई बात, मेट्रो गाड़ी चल रहा है, यहाँ देख के बड़ा घबराएगा भैया कहीं सही आए, जगह आए कि नहीं आए।
0: अच्छा,
1: तो देखे कि भाई अब उनके पति तो मेट्रो में नौकरी कर रहे हैं, उनको साड़ी भेजे एक नहीं दू ठो मेट्रो में नौकरी कर रहे हैं, घुमने आ रही है, पहन के घूमो यार लोग देखे।

0: यात्रा तो बड़ी मजेदार रहा ना। शैलेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अब लोक संगीत की जो छटा है, उत्तर प्रदेश से हम महाराष्ट्र की संस्कृति की ओर ले चलेंगे। हम महाराष्ट्र के लोक रंग की ओर चलते हैं, जहां महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र खानदेश अपनी सरलता, लोक भाषा और लोक संगीत के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, पहचाना जाता है। वहां के लोकगीतों में खेत है, खलिहान है, पूरी संस्कृति है, परंपरा है। बाकी मैं नहीं बोलती हूँ, प्रशांत बोरे जी जो प्राध्यापक भी है और संगीत के बहुत जानकार है, संगीतकार भी है, तो प्रशांत बोरे जी आपको माइक दे रहे हैं। जरा महाराष्ट्र के लोक रंग के बारे में बताइए और सुनाइए, कुछ प्रस्तुति
1: नमस्कार। जरी भाषा कहली नाही तरी भावना कळते, आणि भावना या सगळ्याच ठिकाणी भाषा बदलतात पण भावना बदलत नाही।
0: बिलकुल
1: आहे का नाही?
0: जी
1: भाषा बदलते, भावना बदलत नाही। भावना काय असते? भावना तीच असते। सैमा

0: बहुत बहुत आभार प्रशांत जी, बहुत सुंदर गाया और ऐसे लग रहा था कि भले ही इसमें समझ में आता है कि भाषा बोली कोई भी हो, लेकिन संगीत में इतनी ताकत है कि आपको मोहित कर लेती है और झूमने पर मजबूर कर देती है। अब हम नाट्यकर्मी और गायिका और अभिनेत्री विभा रानी जी को बुला रहे हैं मंच पर। बिहार के लोकगीतों की छटा हम देखेंगे और बिहार का लोक संगीत भी बहुत समृद्ध है, वहां के मैथिली लोकगीत आप सुनते ही होंगे, लेकिन कुछ अलग तरह की प्रस्तुति विभा रानी देंगी। खासतौर से एक गायन का प्रकार है झिझिया, झिझिया के बारे में बताइए विभा जी क्या होता है, और फिर वो गायन का प्रकार भी प्रस्तुत कीजिए। जोरदार तालियां एक बार हो जाए।
1: बिहार की नगरी मिथिला से मैथिली भाषा है, सृजन भारत कार्यक्रम में ऐसा हमारा आमंत्रित कर दिले हम विविध भारती के बहुत बहुत आभारी छी। हमारे करियर के शुरुआत आकाशवाणी से भेल, तो बुझाइए जे आकाशवाणी हमरा लेल नई घर माने मायक अछि। अभी लेकिन मैंने बहुत बड़ी मुसीबत है, संकट है। एक तरफ भोजपुरी की जोरदार आवाज, दूसरी तरफ महाराष्ट्र का रण झुंझार शिवशाही। अब उसके बीच में मैथिली बड़ी मीठी मीठी भाषा है, इतनी मीठी भाषा है कि लोग कहते हैं कि इसमें मैथिली में लड़ते भी हैं तो लोगों को लगता है कि प्रेम ही करते हैं।
0: क्या बात है।
1: एक बार एक कवि सम्मेलन में एक भोजपुरी के कवि और मैथिली के कवि में बैठे हुए थे। भोजपुरी के कवि पूरी वीर रस की कविताएं सुना गए, उसके बाद मैथिली के एक कवि आए, उन्होंने प्रेम रस की कविता सुनाई, तो भोजपुरी के कवियों को भी चढ़ा कि मैं भी प्रेम कविता सुनाऊंगा, तो वो उठे और कहा हम प्रेम करब, हम प्रेम करब। तो हरिमोहन झा जी जो मैथिली के बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, वो बोले वहीं से बैठे बैठे हम माहौर लोक मर रहब, अगर मैं जहर खा करके मर जाऊंगा अगर ऐसा प्रेम होगा तो। तो ऐसी मीठी और ऐसी छोटी छोटी इस तरह की भाषा है मैथिली, तो आपको दोनों के बीच में जरा संतुलन बना करके चलना होगा। ममता आपने कहा कि झिझिया, शैलेश ने भी सुनाया था देवी गीत सरस्वती वंदना। झिझिया दशहरे के समय में गाया जाने वाला, नृत्य किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, और उसमें देवी की आराधना की जाती है, दुर्गा की आराधना की जाती है और भगवती की आराधना की जाती है। भगवती के भाई हैं भैरव, ब्रह्म के मूर्ति, उनकी आराधना की जाती है,

0: लोक गीतों में कहानी किस्से होते हैं, मनोहार होता है, नोकझोंक होती है, तकरार होती है, तो एक जाट और जटिन जब बात करते हैं तो इस बातचीत को लोकगीत में कैसे पिरोया जाता है, जरा बताइए विभा जी।
1: जट जटिन मिथिला का एक खेल है, ये भी एक नृत्य है और जिसे बारिश के समय में खेला जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि एक बार अकाल पड़ा, सूखा पड़ा और उस सूखे के कारण कहीं बारिश नहीं हो रही थी, फसल सूख रही थी, फसल तो जट वो चला विदेश कि हम तो परदेश जा रहे हैं। जटिन उसकी पत्नी उसको कह के गया कि जैसे ही तुम्हें आकाश में लेख लिखे तो मुझे आवाज देना और मैं वहां से आऊंगा। 12 बरस हो गए, इस बीच बारिश नहीं हुई, जट परदेश में था, कमाता रहा, जटिन के संदेश का इंतजार करता रहा। जटिन भी अकेली थी, वो अपनी माई के चली गई। 12 साल के बाद उसने देखा कि आकाश में काले काले मेघ आए हैं, तो उसने वहीं से आवाज दी,

जगदा को आवाज सुनाई थी, उसने वहीं से कहा, एलियो गे जट्टी नलियो, एलियो गे जट्टी नलियो, आयब गेलियो गे जट्टी नायब गेलियो। और जट्टा आ गया जट्टी घुमाए के से आ गया। अब जब 12 साल के बाद पति पत्नी मिले हैं तो थोड़ा सा मान मनोबल तो होगा ना। तो जतिन कहती है, तुमसे मैंने जब जब टीका मंगवाया, गहने मंगवाए, तुम कभी भी जो है ले करके नहीं आए। मेरी बाली उम्र जो है, क्योंकि बचपन में तब शादी हो जाती थी, वो बर्बाद हो गई। तो जटा भी कहता है, मैंने जब तुमको दिया तो तुम तो मायके में जाके बैठी थी, नैहर में जाके बैठी थी, तो कैसे पहनूंगी। तो ये इस जट जतिन की कथा और उसके बीच ये गीत है।

0: वाह वाह वाह क्या बात है विभा जी, बहुत अच्छा आपने गाया है, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत आभार विभा जी, और बहुत कम समय में बहुत सारी प्रस्तुतियां दी, शुक्रिया आपका।
1: बहुत देर से हम सुन रहे थे आप लोगों की, अब हम लोगों के गाने गावे की बारी है। नानू भैया बहुत ही हो गई, चलो आ जाओ अपनी बुंदेली को झंडा फहरावे। बुंदेलखंड की खासियत ये है कि वहां अगर आप किसी का नाम पूछें, कहे भैया तुम्हारा नाम क्या है, तो जवाब आएगा तुम्हें क्या करने, मतलब नाम बताने से पहले व्यक्ति ये सवाल पूछेगा कि तुम्हें करना क्या है, नाम से क्या करना है। लेकिन बुंदेलखंड में बहुत प्रेम है, नरोत्तम बेन बुंदेलखंड के बहुत प्रसिद्ध गायक है। तो भैया नानू भैया इसी के साथ शुरू करो आज की महफिल, फिर तुम्हारी मर्जी जो तुम गावे चाहो।
2: प्रणाम करे सभी जनों को, नरमदे हर जय महाराष्ट्र जय भारत।
3: ये बम्बुलिया और एक लम्पेरा, ये बहुत ही अद्भुत चीज है बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड का सबसे फेमस फॉर्म है राई। बुंदेलखंड के फोक की आप बात करेंगे तो राई के बिना मामला अधूरा होता है। ऐसा ये है बम्बुलिया और लम्पेरा, लम्पेरा यानी लंबी टेर, लंबी टेर लंबी आवाज। तो बहुत अच्छी जानकारी लोगों को इससे गाने के बारे में ली कि पहले क्या होता था कि लोग गांवों में रहते थे, गांवों से जाते थे, खेत के रास्ते से गुजरते थे, मेला देखने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो एक साथ निकला करते थे वो लोग। और एक बंदा कहीं बहुत दूर है, बहुत दूर है बैलगाड़ी में, उसने वहां से कुछ एक लाइन बोल दी, कुछ एक लाइन उसने गा दिया, फिर पीछे का कोई भी बंदा है जिसने सुना बैलगाड़ी पर चला रहा है तो उसकी एक लाइन सुनकर जो है उसका जवाब दिया करता था। फिर किसी और छोर पर कोई दूसरा बंदा होता था, उसने सुना, उसको जवाब समझा, तो ऐसा फिर गाता था, तो उसको लम्पेरा कहते थे। इसी से मिला हुआ है बम्बुलिया, वो भी लंबी लम्पेरा का ही एक रूप है, उसमें देवी महिमा खासकर नर्मदा जी इन सबका जो जिक्र होता है उसके लिए मामला है। भाई चंद सेकंड का चलिएगा।

वाह क्या बात है। नरोत्तम जी बहुत बढ़िया आप गा रहे हैं, अगर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा गाया और जोरदार तालियां नानी जी के लिए, जोरदार तालियां, क्योंकि ये जो पूरी कहानी मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड की कहानी थी उनके गाने में, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं उत्तराखंड की ओर, आमंत्रित कर रहे हैं ममता वर्मा को, जो वैसे पहाड़ों पर हम जब सैर करने जाते हैं, घूमने जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बर्फ की बारिश में भीगना बड़ा सुखद लगता है, लेकिन वहां का जीवन कितना कठिन है ये हम में से शायद ही कोई सोचता है, लेकिन पहाड़ों का लोकगीत बहुत ही सुंदर है, बड़ी मिठास है, भले ही आपको समझने में कठिनाई हो लेकिन मीठी आवाज में ममता वर्मा बहुत बढ़िया गाती है। तो ममता से हम उनसे कुछ पहाड़ों के बारे में कुछ जानकारी भी चाहते हैं। ममता, हम आप गाए इससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हमने सुना है कि उत्तराखंड जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ का जीवन काफी कठिन है और कमाई का जरिया बहुत कम है, तो वहाँ का जो पुरुष समुदाय है वो कमाने के लिए शहरों की ओर चले जाते हैं और महिलाएं अकेली रह जाती हैं, महिलाएं अपना जीवन यापन खुद करती हैं, खेती किसानी से लेकर जो भी काम होता करती हैं और बड़ी निडर होती हैं। तो हम ममता से पूछते हैं।

0: शक्तिशाली होती है, कभी कभी भालू और बाघ से भी वो लड़ जाती है। नमस्कार, मेरा नाम कैलाश, मैं ममता वर्मा उत्तराखंड कुमाऊं से बिलोंग करती हूँ। मैं आपके सामने जो गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ, उस गाने में ही एक लड़की और एक औरत का दुख पीड़ा जो होता है वो उस गाने में व्याख्यान किया है। ये प्रहलाद मेहरा जी ने ये गाना गाया है। एक लड़की के दुख और उसकी पीड़ा, वो जो घर में काम करती है वो उस काम का व्याख्यान इस गाने में किया है।
1: तो वो गा के सुनिए।

बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब एक हमने सुना है दर्शकों की ओर से फरमाइश भी आई है कि एक गाने पर आप नृत्य भी करते हैं, और वो नृत्य भी थोड़ा सा अगर आप चार लाइन भी गाते हुए सुना सकते हैं तो सुनाइए। और आपकी जो पोशाक है, वेशभूषा है, हम अपने दर्शकों को और अपने रेडियो के श्रोताओं को बता दें कि ममता वर्मा ने जो पोशाक पहनी है बाकायदा उत्तराखंड

0: वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति और नृत्य के साथ गाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पूरे सुर में, सुर के साथ और भाव के साथ आपने प्रस्तुत किया ममता वर्मा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये थी लोक संगीत संध्या की विविध रंगी प्रस्तुति। कार्यक्रम के अंत में सभी कलाकारों ने और वहां उपस्थित दर्शकों ने मंच पर जैसे धमाल मचा दी और इसके बाद वरिष्ठ उद्घोषक जयंत पत्रिकर ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
2: आखिर में दो लाइन चलत मुसाफिर मोह लियो रे, इस गाने पर सारे दर्शक खड़े होकर नृत्य करेंगे और यहाँ पर मंच पर सारे कलाकार हम सब इसमें शामिल रहेंगे।
3: पनवा कैसा बरस ले लियो रे पिंजरे।

0: suma.
1: Por mí que esa barra sale, mi oré, y yo me va mi compañía. Por mí que esa barra sale, mi oré, y yo me va mi compañía. Thank you, Ruth Bharti.
2: धन्यवाद.
1: बहुत सारी कम दिनों ने बताया मुझे तौफीक भाई की याद आ गई है. जोरदार तालियां.
2: शैली जी, एक कमाल की बात यह है कि साज नहीं थे, लेकिन इस बीच में ये नानू और जयंत जी ने जिस तरह से बीट बॉक्सिंग की है वो बहुत कमाल का था. बहुत ही गजब.
3: ऋतु भारती की ओर से आयोजित सृजन भारती के इस लोकरंग कार्यक्रम में आज की इस शानदार प्रस्तुति के लिए ऋतु भारती परिवार आप सभी का आभार व्यक्त करता है. इस विविध रंगी शाम में शामिल होकर और उसमें नए रंग भरने के लिए, इन लम्हों को यादगार बनाने के लिए और इस कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगाने के लिए दिल से आप सभी का ऋतु भारती परिवार आभार व्यक्त करता है, शुक्रिया अदा करता है. हम सभी आभार व्यक्त करते हैं हमारे नगर सेवक शिवाय शेट्टी जी के प्रति. हरीश छेड़ा साहब, अध्यक्ष बोरीवली सांस्कृतिक केंद्र, ये ऑडिटोरियम हमें उपलब्ध करवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार. बहुत बहुत आभार राजेश बिल्दार जी साहब, हमारे निदेशक अभियांत्रिकी विविध भारती के, आपका तहे दिल से शुक्रिया. तायड़े साहब और सभी इंजीनियरिंग के साथियों का, विशेषकर मंगेश सांगे जी और विनायक रेणके जी, सक्रिय सहयोग देने के लिए हम उनके आभारी हैं. बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं साउंड सिस्टम के लिए डीजे जस्सी और उनकी टीम का आभार, और हमारे आज के कलाकारों का हम तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं. डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, विभा रानी, ममता वर्मा, प्रोफेसर प्रशांत मोरे, नेहा जी और नरोत्तम बीन जी, आप सभी का इस लोकरंगी कार्यक्रम में आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार. संगीत करने वाले सभी साथी सिद्धार्थ मेस्ता, सुधीर जंगम साहब और बाकी साथी थे, उन सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं. और आप सभी का एक बार फिर से हम अमूल्य वक्त देने के लिए और बहुमूल्य वक्त देने के लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद.
4: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विविध भारती की मासिक गतिविधि सृजन भारती के अंतर्गत आयोजित लोक संगीत संध्या लोक रंग के संपादित अंश. इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबली. और अब आगे दीजिए नमस्कार. ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों के विविध

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात होले होले धरती पर अपना आंचल फैलाती है। जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: लोक तेरा साथ हमको दो जहां से तेरा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे। छिड़ता है मोहब्बत का राग, बजता है छाया गीत विविध भारती से। तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजे का समय होने जा रहा है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए ये प्रारंभिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले साल द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य सुरक्षा और पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग समेत द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा के लिए उत्सुक हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण कर

0: بھیج دیا۔
1: سرکار نے آج کہا کہ انتراشٹری ایل پی جی قیمتوں میں بھاری وردھی کے باوجود بھارتی گھروں کو کھانا پکانے کی گیس ویشوک ستر پر سب سے کم قیمتوں میں مل رہی ہے۔ پیٹرولیم اور پراکرتک گیس منترالیہ نے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی سلینڈر کسی بھی پڑوسی دیش کی تلنا میں سستے ہیں۔ گھریلو رسوئی گیس کی قیمت میں 14 کلو 200 گرام کے سلینڈر پر 29 روپے کی وردھی کی گئی ہے۔ دلی میں آج سے گھریلو رسوئی گیس سلینڈر کی قیمت 942 روپے ہو جائے گی۔ تیلگو دیشم پارٹی ٹی ڈی پی نے 18 جون کو ہونے والے راجیہ سبھا چناؤوں کے لیے اپنے 3 امیدواروں کی گھوشنا کر دی ہے۔ ٹی ڈی پی کے راشٹریہ ادھیکش ایم چندر بابو نائیڈو نے امیدواروں کی سوچی جاری کی ہے۔ پارٹی نے ادیوگ پتی سنا ستیش، شکشاوید بھاشیہ راما کرشن اور ٹی ڈی پی سوشل میڈیا ونگ پرمکھ چنت کیالا وجے کو امیدوار بنایا ہے۔ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल IDFC फर्स्ट बैंक और AU फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली NCR क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रूपये के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तारीख है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन के लंच तक 6 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 126 रन और ऋषभ पंत 81 रन बनाकर आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर और मानव सुथार लंच तक क्रीज पर मौजूद थे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। ये प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है आंधी, गुलजार के बोल, संगीत RD बर्मन का।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए मामा,
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियों फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और अब आपको सुनवाते हैं ब्लैक मेल फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर ने इसे गाया है, राजेंद्र कृष्ण की बोल है, तर्ज बनाई है कल्याण।

इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुना रहे हैं सुहाना सफर इस फिल्म का गीत। आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर, और इस गीत को गा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके नारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सिंह मुंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, चुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब आपको सुनाते हैं शकील बदायूनी की रचना, हेमंत कुमार के संगीत से सजा ये गीत। गीता दत्त ने इस गीत को गाया है और फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम।

ये गीत सुना आपने अभी गीता दत्त की आवाज में। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं यादों की बारात। इस फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की युगल आवाज ही युगल स्वर है। मौजू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार है राहुल देव बर्मन।

एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना।

0: एक्सपीरियंस एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर. ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने.
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है. और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं.
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
2: कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं नीरज का लिखा गीत शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर. मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है कन्यादान. फिर से ये गीत है

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज।

कहानी इस फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी की रचना है, संगीतकार लक्ष्मीकांत पेरिला।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं बालिका वधू फिल्म से अमित कुमार का गाया गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, आज ही बर्मन ने संगीतबद्ध किया।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में शक्ति फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी ने ही इस गीत को लिखा है और तर्ज बनाई है आर.डी. बर्मन ने।

ये है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम बस कुछ ही पलों में हाजिर होंगे।

सभी श्रोताओं, सुरीला सफर कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। आज आपके साथ आपके सुरीले सफर की हमराही बनेगी आपकी ये साथी पूजा निरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

है श्रोताओं, आज की इबारत तो आपने पढ़ी ली है ना? जी हाँ, मैंने कहा था कि जरा प्यार से पढ़िएगा। प्यार से पढ़ा ना आपने, मुझे यकीन है कि बहुत उलझाया नहीं होगा आज की इबारत में आपको, क्योंकि बहुत ही सामान्य शब्दों से सरल भाषा में कविता के रूप में ये इबारत हमने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए तैयार की है। हाँ, तो हम सफर पर जा रहे हैं ना, तो उलझन में क्यों फंसाना? प्यार से लिखा है और प्यार से पढ़ा है, तो प्यार से ही सफर को तय भी तो करेंगे हम और आप मिलकर साथ में। तो तैयार है ना आप सभी मेरे साथ आज की इस सफर पर जाने को? हाँ, मैं पहली बार आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से मुखातिब होने जा रही हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का तहे दिल से आपके अपने कार्यक्रम सुरीला सफर में। सभी प्रिय श्रोताओं ने मुझे आज पहली बार सुरीला सफर शुरू करने की बहुत शुभकामनाएं बड़े प्यार से बड़े सम्मान के साथ दी है। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को इसके लिए धन्यवाद अर्पित करती हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुझे भी अपना साथी स्वीकारने के लिए।

कुछ साथियों ने तो मुझे पायलट घोषित किया है। जी हाँ, क्योंकि हम सुरिया सफर लेकर जो चलने वाले हैं ना, इस सफर की पायलट उन्होंने मुझे बना दिया है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे इस तरीके से इस नाम से नवाजा है। और देखिए कुछ श्रोता मुझे किस तरह से आज मेरा स्वागत करते हुए हमें संदेश भेज रहे हैं कि देश की सुरीली धड़कन पर पहली बार जब नई उद्घोषक की जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कि कहीं ये पूजा जी तो नहीं। देखिए उन्होंने मेरा नाम भी इसमें शामिल कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार सुरीली सफर लेकर आ रही है तो स्वागत। और विविध भारती का प्रसारण हवा के संग संग जब होता है तब खुशियां ही खुशियां दामन में समा जाती है, जिया बेकरार होने के साथ बाहर छा जाती है, भंवरे भी गुनगुनाने लगते हैं, बाग की हर कली खिलने लगती है, तब ये

जुड़ते हैं कुछ गीतों के बारे में। उन्होंने कहा जैसे कि इन हवाओं में, इन फिजाओं में आजा आजा, ऋतुज को विविध भारती का प्यार पुकारे। क्या बात है,

श्रोताओं, सबसे पहले आपके लिए हम इबारत भी तो पढ़कर सुना देते हैं, है ना? क्योंकि हाँ, आपने तो पढ़ी है, पर फिर भी हम आपको पढ़कर जरूर सुनाएंगे। कुछ श्रोता जो कुछ दीदी से जुड़ पाए हैं, उनके लिए भी कुछ आसानी हो जाएगी, है ना? तो पढ़ देते हैं आपके लिए हम आज की इबारत। प्यार की गली में जब से तेरी आहट उतरी है, हवा भी गीत गुनगुनाए, पानी भी कहानी सुनाए, आंख चिराए, फिरती हूँ मैं सबसे तेरे नाम पर। आंचल में भरी है मैंने खुशियां इस संसार की, कलियां खिला दी तूने मेरे गुरंग में, जियरा ने तेरी यादों में कैसी सावनी महफिल सजाई है। दो मन थी जो दूर दूर तक अपनी राहों में भटके, आज मोहब्बत ने दोनों की एक डोर बंधाई है। आग ओढ़कर पिघली जवानी, चांदनी भी शर्मा जाए, किसी के होठों पर मेरा नाम सो बार उभराए, आंखें चार हुई तो जैसे थम गई पुरवैया भी, तकदीर में चुपके से प्रेम दीपक वारा है। जा रही जा कहकर भी तुझको जाने कब जाने देती हूँ, हर इनकार के पीछे मैंने एक इकरार उतारा है। संगमरमर सा चेहरा तेरा, पानी सा निर्मल मन है, हवा में तेरी खुशबू को हंसू आकर बिखेरा है। हम जोली छेड़ रही हो क्यों दिल के कोमल तारों को, इंतजार की लंबी रातों में सपना सवारा है। सीने के सुख बाग में अब तेरी चाहत खिलती है, हर पंखुड़ी पर तेरे नाम का रंग गहरा है। प्यार की गली से होकर जो तेरे दिल तक पहुंची हूँ, अब मेरी हर धड़कन में बस तुझको ही पुकारा है।

महान श्रोताओं, ये थी आज की इबारत एक कविता के रूप में, प्यार से ओतप्रोत। हाँ, प्यार से भरी बातें, प्यार से भरी है इबारत। एक स्त्री का मन जब प्यार से भर जाता है तो हवा, पानी और मौसम कैसे उसे सताने लगते हैं, बस हर पल मिलन का इंतजार रहने लगता है। अनछुआ सा प्यार जो सिर्फ नजरों से ही ऐसी छुअन दी जाता है कि वो शर्म से पानी पानी हो जाती है, मन बस में नहीं रहता, बदन का तार तार पिघला देता है। वैसे प्यार तो है ही इस इबारत में, पर साथ ही क्या और है जो हमें प्यारा है, जिसके आने का हमें इंतजार है अब बेसब्री से, है ना, जिसके बिना हमारी अगम कम नहीं होने वाली है। आप बताते चलिए, सुरीले सफर का सुरीली शुरुआत हम करने जा रहे हैं इस गीत के साथ, जिसे सुनकर आपको पता लग ही जाएगा कि मैंने पूछा है कि वो क्या है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हमारी एक श्रोता कह रही है कि प्यार की गर्मी बहुत सक्रिय होती है, एक बार व्यक्ति पहुंच तो जाता है लेकिन वापस आना मुश्किल होता है, और कभी वह आ भी गया तो इश्क में डूबी ठंडी हवा उसे पुरानी आह लिए चुभने लगती है, उनकी प्रेम कहानी आंखों द्वारा खारा पानी बन बहने लगती है, अपने आप से आंखें चुराने लगती, महबूब के नाम का आंचल और फिरता है, फिर चमन में कलियां खिले या कांटे मिले उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। और उन्होंने एक गाना भी हमें यहाँ पर बताया है, देखते हैं कि क्या वो आगे इस सफर में शामिल होने वाला है।

फिलहाल इस इबारत से जो शब्द है उससे रिलेटेड जो है हम गाना आपको सुनाने वाले हैं उसी शब्द पर आधारित जी। तो लेकिन मैं उससे पहले आपको प्रश्न सौंप रही हूँ, वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत में ऐसी कौन सी क्रिया है जो ताल से ताल मिला रही है, बस उसी का नाम हमें लिख दीजिए। और इस फिल्म में ये को सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, बहुत ही सीधा सा सवाल है कि इस फिल्म में मनोज कुमार जो की अभिनेता और जया भादुरी अभिनेत्री है, इनका आपस में क्या रिश्ता है, क्या है जो इन्हें आपस में जोड़ता है?

जी हाँ साथियों, पानी रे पानी, इसी का तो इंतजार है हम सभी को, बिल्कुल बेसब्री से, है ना? पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा? वैसा ही तो रंग है जिसमें भी ये घुल जाता है, मिल जाता है, बस वैसा ही हो जाता है। शरबत में घुल जाए तो वैसा, भूख को दबा के और प्यास बुझाए ऐसा, प्यास में प्यार में पानी प्यार की तरह ही बन जाता है। तभी तो पानी के बिना प्यार की बातें ही अधूरी होती हैं। और हम सभी को प्यारा है ये पानी, और पानी शब्द हमारी इबारत में हमने शामिल किया था, है ना? और हमारे कुछ श्रोताओं ने हमें लिख भी भेजा था ये गीत, पानी रे पानी। बिल्कुल सही, जो कब आएगा, कितना इंतजार है पानी का हमें, बरसात का पानी जो तपती धरती को ठंडा कर जाएगा, हमें शीतलता दे जाएगा। बस हम कर रहे हैं पानी का इंतजार। श्रोताओं, आप बताते चलिए, हम आपके संदेशों को शामिल करते जाएंगे। बहरहाल आपका एक आपके संदेश हमें मिल रहे हैं और कुछ कमेंट्स हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। हमारे श्रोता कहते हैं कि सुनीला सफर का कार्यक्रम हम सफर बनने के लिए उन्होंने स्वागत कहा है, और जिंदगी की ट्रेन में अब हम काफी आगे की डब्बे में सवार हैं, जहां प्यार के मायने बदल जाते हैं। हमारा प्यार अब बच्चों तक सीमित रह गया है, पुराने प्यार के किस्से याद करने की चीज भी नहीं रह गई। वो रहगुजर, वो कश्मकश, वो जज्बात, वो अफसाने, वो अनसुलझे सवाल, वो अनकही इजहार अब हमारे लिए बेमानी है। ये सारी बातें हमारे युवा श्रोताओं के लिए है, ऐसा वो लिख रहे हैं। वैसे ये गाने सुकून देने वाले हैं जो आज प्यार से भरे हुए हैं। वैसे ऐसा तो नहीं है कि आप इन जज्बातों को भूल जाएं। आज हम इस कार्यक्रम में जो बात करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको आज वो याद आने वाले हैं, सारे प्यार भरे लम्हे जिन्होंने आपको कभी गुदगुदाया था।

जी श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत में ऐसी कौन सी क्रिया है जो ताल से ताल मिला रही है, और हमने को सवाल पूछा इस फिल्म में मनोज कुमार और जया भादुरी को ऐसा उनका क्या रिश्ता है और ऐसा क्या है जो उन्हें आपस में जोड़ता है। जी हाँ, प्यार ही तो है वो रिश्ता जो दो लोगों को आपस में जोड़ देता है। और वाद्य यंत्रों के साथ जो क्रिया है वो है ताली। ताली बजाकर इस क्रिया

तो हम आपके संदेशों को साथ ही साथ पढ़ते चले जाएंगे। देखिए हमारे एक श्रोता क्या लिख रहे हैं। जी उन्होंने स्वागत किया है और एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम की गली में आहट यानी किसी के आगमन का पहला एहसास रहस्यवाद और प्रेम के प्रारंभिक चरण होता है, जहां प्रेमी के मिलन की कल्पना में पूरी प्रकृति, हवा, पानी सभी आनंदित हो उठते हैं। साथ ही प्रकृति का सजीव और संवेदनशील रूप उजागर होता है, जैसे हवा का गुनगुनाना और पानी का कहानी सुनाना मानवीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ऐसे ही हमारी एक श्रोता कहती है कि जिस भी उम्र में जो चीज दिल को छूती है वही यादों में शामिल हो जाती है, जैसे तुम्हारी आहट मेरी यादों में ही शामिल नहीं है, वो तो हवा की सरसराहट में किसी गीत की धुन में ऐसे बस गई कि जैसे ही जरा सी हवा लहराती है लगता है कि तुम आए हो, कोई गहरी संवेदना मन को छू जाती है। जब तुम पुकारते हो तुम्हारे दिल की गली तक पहुंचना कितना मुश्किल था, मगर जिंदगी के हर पड़ाव को जीते हुए बस यही चाहती हूँ मेरी हर धड़कन पर बस तुम्हारा नाम हो। क्या बात है, बहुत खूब आपने लिखा है।

एक श्रोता लिखते हैं कि आज फिर एक बार कविता को पढ़ने का मौका मिला है और पूरे भाव को अगर देखा जाए तो दिल की धड़कनों में छिपी एक मीठी सी हलचल जो किसी खास व्यक्ति की मौजूदगी, उनकी मुस्कान या उनकी यादों से जुड़ी होती है, उसे उभारने का प्रयास हुआ है। प्यार ऐसा एक शब्द है जो मानव जीवन की सबसे गहरी और जटिल भावनाओं में से एक को व्यक्त करता है। फिर भी प्यार को आमतौर पर एक गहरी भावना, लगाव और निस्वार्थता के रूप में परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने।

एक श्रोता कह रही है कि आज की काव्यमय इबारत मन को मोह लेती है, प्यार की कोमल सुंदर भावनाओं को दोहरा देती है। बिल्कुल सही बात है, आज हमने प्यार के साथ हवा, पानी और प्रकृति को भी शामिल किया है। आपको लगभग सारे ही गीतों में आज अगर देखा जाए ना इन गीतों को, तो उसमें प्रकृति कहीं ना कहीं शामिल है, पानी और हवा कहीं ना कहीं शामिल है। चलिए अगला गीत हम आपको अब सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को सुनकर बताइएगा कि इस गीत में हेमा मालिनी जी किसे कह रही हैं, जा रे जा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने आपको जो गीत सुनाया कार्यक्रम की शुरुआत में, वो था फिल्म शोर से लता मंगेशकर और मुकेश साथियों की आवाजों में। इंद्रजीत सिंह तुलसी कालिखा की तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीत से सजाया था। और अब ये अगला गीत।

जी श्रोताओ, आपको हेमा मालिनी वाला गीत भी हम बस थोड़ी ही देर में सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले हमने आपको सुनवाया है पड़ोसन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। और इस गीत में ये हसीनाएं साइकिल की सवारी कर रही हैं, और हमने आपसे पूछा कि साइकिल का उपयोग क्या आप करते हैं, और साथ ही हमें आप ये भी बताइए कि आपकी प्यार के लम्हों में साइकिल किस तरह से आपका योगदान देती रही है।

साइकिल उस जमाने में सिर्फ सवारी ही नहीं थी, ये प्यार के लम्हों की साथी भी बनती थी। साइकिल पर प्यार के लम्हों को ज्यादा जिया जा सकता था, है ना। मोटर बाइक या कार में अगर हम जाते हैं तो इसकी वजह क्योंकि क्या होता है कि वक्त इसमें बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। साइकिल पर तो हम धीरे चलते हैं ना, और लम्हे सीमित हो जाते हैं। वैसे आज के जमाने में और परिस्थितियों को देखकर साइकिल के महत्व को ज्यादा समझा जा सकता है। किसी ऊर्जा की खपत नहीं हो रही है इसमें सिवाय शारीरिक ऊर्जा की। हमारे साथियों ने हमारे पहले गीत के साथ हमने जो प्रश्न पूछे थे उसके जवाब बिल्कुल सही हम तक पहुंचाए थे। पानी ही था जिसका हमने बेसब्री से इंतजार किया, और ये शोर फिल्म का गाना है। इस तरह से हमें हमारे श्रोता बताते ही चले जा रहे हैं कि हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसे संगीतबद्ध किया था और ये शोर फिल्म का गीत है। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आपके संदेशों के लिए।

क्या बात है, एक श्रोता ने तो हमारी कविता की कुछ लाइनें यहाँ पर हमें लिखकर भेजी है। हाँ, और इसका जवाब दिया गया कि पड़ोसन फिल्म का ये गीत और सायरा बानू जी अपनी सहेलियों के साथ में साइकिल की सवारी कर रही है। क्या बात है, जी हाँ, हेमा मालिनी जी वाला गाना यू नहीं था, लेकिन हम आपको बस अब सुनाने जा रहे हैं वो गीत फिल्म अभिनेत्री से।

यहाँ भी गीत में बारिश है, पानी है, प्यार का इकरार है। पानी, घटा, हवा, सब कैसे प्यार के साथ जुड़ जाते हैं। ये हमें हमारे पुराने हिंदी फिल्मी गीतों से पता चलता है।

0: एक स्त्री कैसे खिल उठती है, प्यार ही प्यार लुटाने लगती है जब उसे बहुत प्यार मिलता है। जी हाँ श्रोताओं, आपके जवाब हमें मिलते जा रहे हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे से हमारे सवालों को सुना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सामान्य से सवाल आज हम आपसे पूछ रहे हैं। जी शोर फिल्म का जो गीत आपने सुना था उसका जवाब भी सभी ने दिया है कि प्रेम का रिश्ता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और पानी के पानी गीत से आगाज होना भी बहुत भाया है। आप सभी को धन्यवाद। जी हाँ, मैंने संदेशों को शामिल करने की कोशिश में कुछ अभी गीत कम ही सुनाए थे, लेकिन मैं अब सिर्फ आपको गीत ही सुनवा रही हूँ। आगे इसे और सुरीला जो बनाना है इस सफर को। चलिए, मैंने तुम्हें एक संदेश और फिर इस सफर को हम आगे बढ़ाते हैं।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद

0: रोड की जगह है जहां उनके नाल उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं सुरीला सफर। आइए अब आपको सुनवाते हैं मनन फिल्म का ये गीत। और इस गीत में जो अभिनेत्री है यानी स्त्री जो प्यार से उत्प्रोत है, जिन्हें प्यार तो है इस संगीत सिखाने वाले गुरु से, अपने मन की बातों को वो उनके साथ सुर में पिरोकर गा रही हैं, वो कौन है?

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर।

कई श्रोताओं ने गीत लिख भेजे हैं, उनमें से कुछ गीत बिल्कुल हमारी इबारत से संबंधित शब्दों पर आधारित हैं और वो शामिल है हमारी भी लिस्ट में और आपकी भी लिस्ट में।

सभा श्रोताओं, ये गीत भी प्यार से भरा हुआ था। सावन के महीने की बात हो रही थी और हमने आपसे पूछा था कि कौन है ये स्त्री, ये अभिनेत्री जो प्यार में है और संगीत सिखाने वाले गुरु से प्यार करती है और मन की बातों को उनके साथ सुर में पिरो रही है। जी हाँ, वो है नूतन। आप सभी के जवाबों के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे कई श्रोताओं ने कहा है कि बहुत आग बरस रही है तो हमें सिर्फ पानी का ही इंतजार है। बिल्कुल सही, इसलिए तो हमने पानी शब्द को अपनी इबारत में शामिल किया था। कई श्रोताओं ने कई कविताएं लिखकर और कुछ पंक्तियां भेजी हैं हमें लिखकर, जो कि लंबी लंबी हैं, तो हमने शुरू में कोशिश तो की उन्हें शामिल करने की, लेकिन उससे वक्त बढ़ा चला जाता है। तो जी देखिए, इसके लिए तो मुझे माफ कीजिएगा कि मैं उन्हें पूरी तरीके से यहां शामिल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है आपके सभी संदेश इसमें शामिल हो जाएं।

के साथ सुर में पिरो रही है। जी हाँ, वो है नूतन। आप सभी के जवाबों के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे कई श्रोताओं ने कहा है कि बहुत आग बरस रही है तो हमें सिर्फ पानी का ही इंतजार है। बिल्कुल सही, इसलिए तो हमने पानी शब्द को अपनी इबारत में शामिल किया था। कई श्रोताओं ने कई कविताएं लिखकर और कुछ पंक्तियां भेजी हैं हमें लिखकर, जो कि लंबी लंबी हैं, तो हमने शुरू में कोशिश तो की उन्हें शामिल करने की, लेकिन उससे वक्त बढ़ा चला जाता है। तो हाँ जी, देखिए इसके लिए तो मुझे माफ कीजिएगा कि मैं उन्हें पूरी तरीके से यहां शामिल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है आपके सभी संदेश इसमें शामिल हो जाएं।

हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म का जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, कौन है अभिनेत्री? जी हां, सायरा बानू जी। प्यार के एहसास से लबरेज वो बातों को याद कर रही है प्यार की और अपनी खुशी जता रही है। हमारे कई श्रोता हमें संदेश भेजती जा रही हैं, उनकी कुछ गीत इस इबारत की

जी माँ, ही ने कहा कि मिलो तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चिढ़ाए, हमें क्या हो गया है। जी हाँ, ये प्यार ही तो है, प्यार उन्हें हो गया है रांझे से, और उन्होंने अपनी बात उन्हें

0: सभी श्रोता हमें कह रहे हैं कि बिल्कुल ये गीत उनके इसमें शामिल हुए हैं, वो हमें गीत लिखकर भेज रहे हैं। और साथ ही देखिए, अब कार्यक्रम में हम ये आखिरी गीत आपको सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले आपने ये गीत सुना हीर रांझा फिल्म से, अब ये गीत है चुपके चुपके इस फिल्म से। और आप बताइए कि इसमें शर्मिली जी जिन्हें छुपा रही हैं सबसे, वो उनके क्या लगते हैं?
1: पापा की सजा

बस श्रोताओं, ये गीत हम आपको इतना ही सुनवा पाएंगे क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। बहुत धन्यवाद, आज आप सभी ने हमारा स्वागत किया बहुत सम्मान के साथ, बहुत प्रेम के साथ। लेते हैं अब आपसे विदा। आपके संदेशों के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: नमस्कार। सुबह से लेकर रात तक जो हमारे शरीर को चलाता है और रात में सोते हुए शरीर की टूट फूट दुरुस्त कर थकान मिटाता है, आज की त्रिवेणी में उसी भोजन की बातें। हवा और पानी के बाद हमारी सबसे बड़ी जरूरत है भोजन। हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, यहाँ तक कि छोटे छोटे सेल्स भी भोजन से मिली शक्ति से चलते हैं। देखा जाए तो एक मजबूत शरीर देकर भोजन हमें रोगों से दूर करके चुस्त दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी भी उठाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में भोजन को प्रसाद कहा जाता है, जो जीवन का आधार और ईश्वर का रूप है। अन्न को अन्न देवता और किसान को अन्नदाता का दर्जा दिया जाता है। भोजन शुरू करने से पहले अन्नदाता सुखी भव कहकर प्रार्थना की जाती है। वास्तव में ये किसान ही हैं जो नन्हे से बीज को अपनी मेहनत से सींच कर उसे इस योग्य बना देते हैं कि वो लहलहाती गेहूं या धान की बालियों में पककर अनाज के रूप में हम तक पहुंचता है। हरी भरी सब्जियां हो या रंग बिरंगे फल, तमाम भोजन सामग्री उन्हीं अन्नदाताओं की तपस्या का फल है जो खेतों में मेहनत करते हैं, रखवाली करते हैं।
1: नील गगन पर उड़ते बादल आ आ आ

0: प्रसाद है, इसीलिए भोजन सामग्री बाजार से खरीदने से लेकर घर में पकाने तक कुछ खास बातों पर अगर नजर रहे तो कितना अच्छा हो। भोजन में पौष्टिकता का ध्यान तो रखा जाए, पकाते समय भी पौष्टिक तत्वों का ख्याल रखा जाए, यानी खाना ना तो जरूरत से ज्यादा पका हो और ना ही अधपका हो। थाली में 56 व्यंजन हो ना हो, भोजन की चाह जरूर हो, यही से भोजन में स्वाद की भूमिका भी जुड़ जाती है। जहाँ तक संभव हो भोजन में षड्रस और सभी रंग शामिल किए जाएं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम भोजन के लिए नहीं जी रहे, बल्कि जीने के लिए भोजन कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ स्वाद ही नहीं सेहत का भी ख्याल रखा जाए। रसोई से उठती खुशबू पास बुलाए और परोसी हुई थाली देखकर ही भूख से जुड़े अंजाइम खाने का न्योता दें, तभी भोजन किया जाए।
1: आलू की भाजी बैंगन का भरता, आलू की भाजी बैंगन का भरता।

Oh,

0: स्वच्छता, स्वाद के साथ ही मात्रा का भी ध्यान रखना जरूरी है, खासतौर से आज के दौर में जब उत्सवों समारोहों में लंबे लंबे मेन्यू शाम की बात माने जाते हैं, ढेर सारे व्यंजन मेज पर सजाए जाते हैं और बाद में काफी खाना बर्बाद होता है। उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि कई सब्जियां और दालें बनवाने के बजाय एक या दो डिशेस तैयार करके भी लजीज खाना परोसा जा सकता है। अक्सर दावतों में पहले
1: मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्रों के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रूपये के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
1: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमेरिका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केश्म द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातिये क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी है, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी

0: संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेनदेन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचारों के बाद आप सभी का स्वागत है। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में वक्त फिल्म से।

देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में वक्त फिल्म से। सहेल उद्यान भी के बोल हैं, धुन सजाई है रवि ने।

सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल स्वरों में। साहिल अधियान निके ही बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम इज्जत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8

0: घंटे नींद पूरी ना करे तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे और अब आपको सुनवाते हैं आंखें फिल्म का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, साहिल उद्यानवी ने लिखा है और संगीत पर किया है रवि ने।

अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत साहिल लुधियानवी के बोले संगीतकार रवि, फिल्म का नाम काजल।

0: सबसे हसीन इनाम है ये, झूले में दो नाजुक हो तुम हो।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और ये अगला गीत दिल ने फिर याद किया। इस फिल्म से मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में। जीएल रावी ने इस गीत को लिखा, सोनिक ओमिका संगीत।

चुशुल फिल्म का गीत सुन रहे थे आप। साहिर ने इसे लिखा था, संगीत बत किया था खयाम ने। और आइए अब आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है राज। शमीम जयपुरी की बोल है, कल्याणजी आनंद जी का संगीत।

प्रिय श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। मन चाहे गीत इस कार्यक्रम में हम करते हैं शामिल आपके उन पत्रों को जिनमें आप लिख भेजते हैं हमें आपकी मन चाहे गीत। लीजिए, हम पहला पत्र शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, जिसे हमें लिख भेजा है छतरी तालाब अमरावती से साधना रानी गुप्ता, नेहा गुप्ता और कोमल गुप्ता ने। इन्होंने फरमाइश की है छोटी बहन फिल्म की इस गीत की, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने, शैलेंद्र की बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

मनचाही गीत कार्यक्रम में लीजिए। अब अगला खत हमने शामिल किया है खंडवा रोड सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, निर्मला वर्मा, अनुज, आयुषी, अर्चना वर्मा और समस्त वर्मा परिवार के सदस्यगण। इन्होंने हमें लिख भेजा है सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत पहली पहली बार मोहब्बत। गायक कलाकार अलका याग्निक और कुमार सानू। लीजिए आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना काफी

0: ज्यादा होती है, और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें आठ जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मनचाही गीत कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए हम अगला खत शामिल कर रहे हैं। नेहरू चौक पेठन से ये खत हमें आया है। सुरेश जाधव, अनीता जाधव, प्रसाद जाधव, बेबी सोनल जाधव, इन्होंने इस गीत की फरमाइश की है जो कि है फिल्म दोस्ती से, राही मनवा दुख की चिंता। इस गीत को गा रहे हैं मोहम्मद रफी, उनकी आवाज में ये गीत आप सुनेंगे। मर्जू सुल्तानपुरी की बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का
3: सिंह।

कभी कभी इस फिल्म का गीत सुनना चाहा है। पंचकुला सेक्टर 9 से इन्होंने हमें खत लिख भेजा है। आशु चुग, अश्विनी चुग और गोविंद चुग ने, साथ ही गांधी चौक रोपड़ पंजाब से भी, हरदेव मीका, बलविंदर मीका, बलविंदर बिरक, जेते बिरक और मीका बिरक।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम मन चाहे गीत में अगला खत हमने शामिल किया है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान और खानपुरी खान फैमिली का। इन्होंने हमें गीत की गुजारिश की है हाथ की सफाई फिल्म से। और इन्हीं के साथ ऊपरकोट बुलंदशहर से भी इसी गीत की फरमाइश मोहम्मद सईद अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार कर रहा है। साथ ही पुराना तालाब डुमरो से वली उल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी, वसीम अकरम, अजीम वकार और उनकी बिटिया प्यारी सोनम। इंदिरा विहार दिल्ली से वसीम अकरम, अजीम वकार, डब्ल्यू अंसारी और बीबी अंसारी। गुलशन बावरा की बोर कल्याण जी आनंद जी का संगीत, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

दीजिए, अगला पत्र हम शामिल कर रहे हैं। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन कमल, उमेश सरोज, आरती रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी सागर, रिया रीत, ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार का। और साथ ही इन्होंने जो गीत की फरमाइश की है वो है फिल्म पतंग से, और इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है राजा रामनगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन ने। साथ ही घंटाघर चौक खंडवा से भी संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और समस्त सन्मति पंचोलिया परिवार और सन्मति पंचोलिया ने। और उसके अलावा शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरिसी, नईम इदरिसी और नदीम इदरिसी, इन्होंने हमसे फरमाइश की है पतंग फिल्म के इस गीत की। लता मंगेशकर का गाया गीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त की बनाई धुन।

मोहम्मद रफी के गाए चिराग़फ़िल्म के इस गीत के साथ ही मनचाहे गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हो रहा है। आप इसी तरह मनचाहे गीत कार्यक्रम में अपनी फरमाइशों की, अपने मनचाहे गीतों के पत्र हमें लिखते रहिए, वो जरूर शामिल होंगे। और अब दीजिए आज्ञा पूजा निरानिया को। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां, इसका दूसरा और अंतिम भाग। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब।
1: ठहरो, कौन है?
2: मैं हूं नजीबाबाद का नवाब जाब्ता खां। वालिये का नाम राजा साहब से अभी मिला है। इत्तला करा दो, कहो जाब्ता खां आया है।
1: आप यहीं ठहरिए, मैं अभी इत्तला करके आता हूं।
3: आहा, ओ बल्ले बल्ले, आइए नवाब साहब आइए।

0: वालिया का नाम राजा साहब से अभी मिला है, इत्तला करा दो, कहो जाब्ता खां आया है।
1: आप यहीं ठहरिए, मैं अभी इत्तला करके आता हूं।
2: आहा, ओ बल्ले बल्ले, आइए नवाब साहब आइए। क्या ये खुशकिस्मती है कि आपके दीदार हुए।
0: जनाबे अली, खुशकिस्मती तो मेरी है जो अपने अजीजों से एक अरसे बाद मुलाकात हो रही है।
2: हाँ हाँ जी, काफी अरसा हो गया, आपसे कोई 5 साल पहले मिले थे। चलो, कल की सी बात लगती है।
0: जी हाँ जी, कल की सी ही बात लगती है।
2: कहिए कैसे आड़ा हुआ, कुछ परेशान से नजर आते हैं।
0: किबला?
2: अरे भाई, किबला शिबला छोड़ो, सीधे से चचा कहो चचा। मैं आपके वालिद का दोस्त था और वो मुझे अपना छोटा भाई मानते थे।
0: जी चचा जान, इस वक्त मैं बहुत मुसीबत में हूँ।
2: मुसीबत? अब मुसीबत आए तुम्हारे दुश्मनों पर? हाँ तो बताओ क्या मुसीबत है।
0: अब आपको क्या बताऊं चचा जान, बादशाह से मुकाबला किया था मगर हमारी फौज की शिकस्त हो गई।
2: है?
0: नजीबाबाद के बहल लुट गए, बेगमें गिरफ्तार करने गई, सारे इलाके में लूट खसोट मची है। मेरे लड़के गुलाम कादिर की जा बख्शी तो हो गई चचा जान, लेकिन उस मासूम को भी वो दिल्ली ले गए हैं।
2: हद तेरे की, हार हो गई। जंग का तो हमें पता लग गया था मगर आपकी हार के बारे में अभी मालूम हुआ। हाँ तो के करना है?
0: जी आपके पास पनाह और फौजी इमदाद की उम्मीद से आया हूँ।
2: बरखुरदार, बादशाह के खिलाफ पनाह देना बगावत तो है, लेकिन सिख कभी पनाह के लिए आए हुए को ना उम्मीद नहीं करता। आप यही रहे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चचा जान वो फौजी इमदाद?
2: हाँ जरूर जरूर। और लक्ष्मण, जरा सरदार मन बहार सिंह को इत्तला करो हमसे मिले।
3: जी बिल्कुल।
4: सत श्री अकाल जी।
2: सत श्री अकाल मन बहार, सत श्री अकाल।
4: हजूर ने मैंने याद किया ही है।
2: जी हाँ सरदार जी, आपको एक खास काम सौंपना है।
4: सौंपो जी सौंपो।
2: ये है नजीबाबाद के नवाब जाब्ता खान, इन्हें आपकी मदद की जरूरत होगी।
4: साड़ी मदद?
2: बस यही कि आप, मैं अपने 150-200 सवारों के इनके साथ रहें और जी जान से इनकी इमदाद और हिफाजत करें।
4: जो हुकुम हुजूर, जो हुकुम, मैं उन्हीं जान दी तैयारी करता हूँ।
2: और देखो बरखुदार, मैं आपकी इमदाद के लिए एक निहायत बहादुर, नेक और वफादार सरदार को लगा रहा हूँ। इनकी वफादारी की अनगिनत मिसालें हैं हमारे पास।
0: जी चचा जान, मैं भी इन्हें अपने भाई के माने ही रखूंगा।
2: जी जी, यही मैं चाहता हूँ। ये सरदार ऐसे हैं कि ता जिंदगी आपकी पुश्त दर पुश्त वफादारी करेंगे, जान पर खेल कर भी आप लोगों की हिफाजत करेंगे।
0: तो चचा जान, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा।
2: और जाओ गम ना करो, वाहे गुरु खैर करेंगे।
5: मोहतरमा दादी जान, आपने याद फरमाया?
6: हाँ, ये तुम्हारा चहेता गुलाम कादिर तो बहुत हराम ज्यादा निकला।
5: क्यों, क्या हुआ?
6: अभी बताती हूँ, लेकिन लेकिन पहले वादा करो कि इसे माहौल सजा मिलेगी।
5: दादी जान, पहले से वादा क्यों करा रही हो? क्या आपको हमारे इंसाफ या हम पर भरोसा नहीं?
6: हाँ, इसलिए कि शहंशाह हिंदुस्तान बहुत रहम दिल है। उस दिन हमने लॉन्जी को पंखा नहीं खींचते रहने पर सजाए ताजियाना दी थी, लेकिन लेकिन जनाब ने उसे माफ।
5: उफ दादी जान,
6: हम बराबर देख रहे हैं कि हरम में भी पारहा दखल अंदाजी और हमारी तौहीन होती रहती है।
5: मोहतरमा दादी जान, हमारा ये इरादा तो कभी नहीं रहा। लीजिए, मैं वादा करता हूँ। हाँ फरमाइए, क्या बात है?
6: गुलाम कादिर की शहजादियों से ये छेड़छाड़, तौबा तौबा।
5: उसकी ये जुर्रत, उसका हरम में आना बंद कर नहीं कर दिया, अब तो वो बड़ा भी हमारा मतलब है जवान हो गया है।
6: वो तो हमने आज ख्वाजा सराओं को हुक्म दिया है कि वे अब हमारे हरम में ना आए।
5: दादी जान, आपको क्यों कर इल्म हुआ?
6: हमसे शहजादी ने खुद शिकायत की है।
5: उसने किस शहजादी से गुस्ताखी की, जरा बुलाइए उसे।
6: उफ़, तो अब शहजादियां भी शहंशाह के रूबरू बयान देंगी, एक मामूली कनीस की तरह।
5: अच्छा, कुछ तफसील तो मिलनी चाहिए।
6: तफसील तो यही है कि गुलाम कादिर शहजादी जैनब की तरफ गुस्ताख निगाहों से ताक रहा था और बेहुदा इशारे भी कर रहा था।
5: उस कमीने की ये मजाल, इस्माइल, उस कमीने बदजात कादिर को हमारे हुजूर में पेश करो।

कितने साल हो गए मुझे इस शिकस्ता हाली में। इस दरमियान क्या क्या हद से गुजरे, कोड़े लगवाए गए, जानवरों की तरह सलूक किया गया। मेरे साथ इस वक्त हरम की एक कनीज भी कितनी खौफनाक लगती है, और बेगमें खूंखार। वो तो अच्छा हुआ कि तिकोजी होलकर ने अब्बा हुजूर का कसूर माफ करवाकर उन्हें मीर बख्शी का ओहदा और अमीर उल उमरा का खिताब अता करने के लिए शहंशाह को मजबूर कर दिया। तब कहीं जाकर मुझे निजात मिली इनके जुल्मों से। लेकिन अब्बा हुजूर भी अल्लाह को प्यारे हुए और मुझ बदनसीब को छोड़ गए। बस अब तो चचा मनबहारी सिंह का ही सहारा है। अब्बा हुजूर ने मेरा हाथ उन्हीं को तो थमाया था, अब किले में रहने से मुझे क्या फायदा। क्यों ना आजाद होकर कोई इलाका फतह करूं, दुआबे के शहरों में फौज कशी करके अपनी कुव्वत बढ़ाऊं। कोल, जलेसर, सादाबाद, यहीं से शुरुआत करनी चाहिए।

0: नामवर, किसने भेजा है यह खत?
1: हुजूर, ये खत पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा।
0: तुम बाहर जाओ।
1: जी अच्छा हुजूर।
0: तो ये है वो खत। अजीज
2: नवाब गुलाम कादिर, बाप असलीमान से तहरीर है कि किले और हरम की हालत फिलहाल बहुत नाजुक चल रही है। किले में हमारी बार बार तौहीन होती है, बादशाह अक्सर बदसलूकी करने लगे हैं। अगर तुम अपनी फौजी ताकत से किले पर कब्जा कर लो और शाह आलम सानी को तख्त से हटाकर बेदार बख्त को तख्त नशीं कर दो तो हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। साथ ही तुम्हें 12 लाख रुपयी सिक्के बतौर इनाम अता करेंगे। इसके अलावा हम लोगों को अपना मददगार ही समझो। किले तक पहुंचने के बाद जो कुछ इमदाद हम और हमारे वफादार खादिम कर सकेंगे जरूर करेंगे।
0: तो ये खत बादशाह की दादी जान और बेगम महल साहिबा की तरफ से है। ये वही जमानी बेगम है जिन्होंने मेरे कोड़े लगवाए, जलील किया और आज मुझसे इमदाद की तालीम है। कहीं कोई दगा तो नहीं? नहीं, नहीं, कोई दगा नहीं। इतने दिन किले में रहा, बेगमों की मुहरें अच्छी तरह पहचानता हूं। क्यों ना इससे फायदा उठाया जाए। हर तरफ हमारी फतह हो रही है, हमारा सितारा बुलंदी पर है। अब दिल्ली की तरफ कूच करना हमारे हक में होगा।

0: मियां शमशेर खान, किली की हालत बिगड़ती जा रही है। सुना है हरम में भी काफी साजिशें चल रही है।
1: हाँ लाला जी, क्या बताऊं, मुझे तो रात दिन फिक्र लगा रहता है। हालांकि हर मजहब के लोग शहंशाह के फरमा बरदार हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि
0: कल कौन गद्दारी कर बैठे। कुछ भी हो, हमें तो इस नेक और रहमदिल शहंशाह की जान की बाजी लगाकर भी नमक हलाली करनी है। अभी अभी पता चला है कि गुलाम कादिर ने सिंधिया के जनरल नेसनो को भी हरा दिया है।
1: हुजूर, फिर तो उसका हौसला बहुत बढ़ गया होगा।
0: क्यों नहीं, लगता है अब वह दिल्ली पर भी चढ़ाई जरूर करेगा।
1: उसे सिख सरदार मनबहार सिंह से बड़ी भारी मदद मिली है।
0: हाँ, वैसे वो सरदार बड़ा नेक और संजीदा है। जाब्ता खान ने मरते वक्त कादिर का हाथ उसे थमा दिया था। सुना है उसकी ठंडी फौलाद जैसी आंखों के सामने गुलाम कादिर भी बदकारी करने से डरता है।
1: जी हाँ, सुना तो यही है, शायद ऐसा शख्स आड़े वक्त में कुछ मदद कर सके।
0: हाँ, लेकिन हमें किले में कारगुजारियों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए।
1: आप ठीक कहते हैं लाला जी।

तो नाजिर मंजूर अली ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। एक तो नहीं, पूरे 250 छकड़े बारूद का इंतजाम कर दिया। बहुत खूब, वाह नवाब गुलाम कादिर, अब तुम्हारी फतेह याबी में कोई शक नहीं। तुम्हारी क्या, या तो ये पैसे की फतह है या चचा सरदार की फतह। अब किसी को भी मैं बच्चों के खरौंदों की तरह तोड़ मरोड़ सकता हूं। पैसा फेंको, काम बनाओ। पैसा पैसा पैसा, हर किसी का माई बाप पैसा ही तो है। हमने अकबराबाद, कोल, सादाबाद, जलेसर, कहां कहां से पैसा लूटा, और बुजुर्ग बेगमों ने भी तो हमें पैसे की दावत दी है। अब सारी दिल्ली नवाब गुलाम कादिर के पैरों तले होगी।

0: मंजूर के बच्चे नालायक लासक माल कहां छुपा रखा है?
1: हुजूर, मैंने तो आपकी मदद ही की है।
0: देता है कि छुरा पार कर दूं?
2: अभी सब देता हूं हुजूर, अभी सब देता हूं।
0: ला

0: शहजादियों से भलाई कैसे हो सकता है? राजलाल के लिए किस भरे दरबार में नाची?
1: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूँ।

0: हुजूर, सिंधिया की फौजें फरीदाबाद तक फान पहुंची हैं।
1: है? फरीदाबाद तक?
0: जी सरकार, इधर फरीदाबाद तक और उधर पलटने गुड़गांव से आगे निकल गई है।
1: हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
0: हुजूर, अभी जासूस ने कहा।
1: ठीक है ठीक है, पहले हमें खजाने से जवाहरात ले आने दो, बाकी बाद में देखेंगे। अब तो जान बचाना जरूरी है, ये बला कैसे आए तक की।

0: दी सर जी, इतनी जल्दी करते करते भी रास्ता लंबा होता जा रहा है। सरदार इंगले,
1: श्रीमंत
0: अभी कितनी दूर और है दिल्ली?
1: श्रीमंत यही कोई 10 कोस और होगी।
0: काश।

0: ग्वालियर और दिल्ली के बीच की जमीन एक हो जाती। पता नहीं गुलाम कादिर क्या क्या जुल्म उठा रहा होगा शहंशाह पर। हे भगवान, हमारे लश्कर और दिल्ली के बीच की दूरी को गारत कर दे।
1: श्रीमंत, अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। उधर फरीदाबाद की तरफ से भी हमारा लश्कर शायद पहुंच चुका होगा।
0: भगवान को न जाने क्या मंजूर था कि हमें ऐसी समझ दी कि दिल्ली को छोड़कर राजपुताना में जा फंसे फिर ग्वालियर चले गए, वरना ये मुसीबत क्यों खड़ी होती। जहां बना बस मेरे पहुंचने भर की देर है।

जहां बना तले की ये दुर्दशा। बड़ी बड़ी देर लगा दी मेरे फरिश्ते, लेकिन लेकिन देर आया दुरुस्त आया। जहां बना सचमुच कहर बपा कर दिया उस कमबख्त ने। हुजूर का चेहरा देखकर रोना आता है। हाय रे नसीब, मुझे इतनी देर से खबर मिली। मेरे मसीह, तुमने आकर हमें नई जिंदगी बख्शी है। हुजूर, वो कमीना भी जल्दी पकड़ा जाएगा और माकूल सजा पाएगा। अब मुझे इजाजत बख्शे, मैं उस चंडाल चौकड़ी की खबर लेता हूं। तेरे के इंतजाम और हुजूर की सेवा के लिए सरदार शिंदे को छोड़ जाऊंगा। खुदा हाफिज़।

0: बोलो सरदार इंगले, क्या तोहफे भेजे हैं माधव जी सिंधिया ने?
1: जहां पना सबसे अहम तोहफा है इस पिटारी में, उस नीच कादिर के आंख कान नाक होंठ और उंगलियां। उसे श्रीमंत सिंधिया ने फौजी दरबार में तड़पा तड़पा कर जिंदा खाल उतारने की सजा दी और ये हुजूर की खिदमत में भेजे हैं।
0: इंगले, हमें आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल हुई है। हाथ लगाकर देखूंगा। ओह, ये उस कमीने

0: उंगलियां, वाह, ये शायद उसके होठ हैं, वाह, बहुत खूब, इन्हें हरम में भेजो और कहो कि सब इस पर थूके और उसके बाद इन्हें कुत्तों के सामने डलवाते।
1: और ये हैं हुजूर के गद्दार कारकुन नाज़िर मंजूर अली और इस्माइल बेग।
0: इन बदसातों को हाथों से कुचलवा दिया जाए अभी।

0: सरदार मनबहार सिंह, श्रीमंत की तरफ से आखिरी तोहफा। ये कादिर के मददगार उसके मुंह बोले चचा है।
1: हुजूर,
2: बोलो बोलो लाला शीतलदास, क्या कहना चाहते हो?
1: आलम भना, मैंने शहजादियों की उस रूहेले से इज्जत बचाई, शहजादों की जाने बचाई और जामा मस्जिद का सोना चांदी लूटने से बचाया।
2: हाँ हाँ, हमें इल्म हो चुका है लाला जी, बोलो क्या इनाम चाहते हो?
1: हुजूर, मैं ये सब इसी सरदार मनबहार सिंह की मदद से कर सका।
2: ओहो, बहुत नेक है सरदार। इसे 1000 अशरफियां और एक घोड़ा दिया जाए ताकि ये अपने वतन पंजाब तक महफूज पहुंच सके।

अगरचे हम देख नहीं सकते मगर मगर इसकी पंखुड़ियां कितनी दिलकश है। इन पंखुड़ियों में हमारा फरमाबरदार अजीज दोस्त माधोजी सिंधिया भी शामिल है।

लाला शीतल दास, होली करीब है। किले में टेसू के फूल देगों में डलवा कर कसूमी रंग तैयार किया जाए, ताकि हमेशा की तरह होली का जश्न किले में ही मनाया जा सके।

गुलाब की पंखुड़ियां। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। लेखक थे सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। इसी के साथ अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।

0: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठे हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
1: मितुल जी, जब बात चल रही है प्रदीप जी की, तो 5 दशक के अपने उस फिल्मी सफर में प्रदीप जी ने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे। चल चल रे नौजवान, या आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, या वेदी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, न जाने कितने ऐसे बहुत सारे देशभक्ति गीत हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में भी उन्होंने जो गीत लिखा वो आज भी हम भूल नहीं पाते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो इस गीत की रचना कैसे हुई, राष्ट्रभक्ति का ये अमर गीत प्रदीप जी द्वारा कैसे लिखा गया, क्या माहौल था आपके घर का, क्या माहौल था? और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने इस गीत का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीधा प्रसारित किया गया इस गीत को, जो कि एक ऐतिहासिक घटना बन गई। इसके बारे में आप हमें बताइए।
2: जैसा मैंने कहा कि उनको देशभक्ति उनके रग रग में थी। जब ये चीन के साथ हमारा ये जो लड़ाई हुई और तब हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, वो चीज उन्हें बहुत मन तक बहुत झकझोर गई, है ना। और उसमें उनको लगा कि ये इतने हमारे शहीद हो रहे हैं, हमारे ये जो लड़ाई में हमारे जवान, उनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम लोग सोच रहे हैं क्या होगा उनके परिवार का, कुछ कुछ सोच रहे हैं हम लोग के नहीं। तो वो चीजें उनको बहुत मन में दुख दे रही थी। तो ये अचानक से उन्होंने लिखा गाना था, है ना। और वो एक शैतान सिंह नाम के, मेजर शैतान सिंह, जिनकी वहां पर शहादत हुई रजांगला में, और वो चीज से भी उनको बहुत वो आहत हुए। वो जा रहे थे कहीं रास्ते पे चल रहे थे और चितलकर काका सी रामचंद्र, उनका घर माहिम में था, तो वहां पर उनको मिलने जा रहे थे। तो वहां चलते चलते उनको लगा कि ये देखिए क्या हो रहा है देश में, हमारा क्या होगा, हमारे जवानों का क्या होगा। उन्होंने एक लाइन लिखी, उनको मन में आई और उनको मन में ये आई कि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, शहीद शहीद शहीद जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। अब ये गीत तो उस वक्त तो उनको दिमाग में ये लाइन ही आई, उनको लगा मैं भूल जाऊंगा, जब तक मैं घर जाऊंगा हो सकता है मैं ये लाइन भूल जाऊं। रास्ते पे उन्होंने एक देखा कि एक पान पट्टी की एक दुकान थी पान वाले की, उन्होंने कहा भैया कुछ मिलेगा लिखने के लिए? बोलते यहाँ कहाँ मिलेगा भैया, ये एक सिगरेट का बॉक्स है खाली, इस पे कुछ लिख सकते हैं, आपके पास पेन है? बोलते मेरे पास तो पेन नहीं है। पास में कोई भाई खड़े थे, उन्होंने कहा ये ले लीजिए पेन, उन्होंने उस पे वो लाइन लिख दी और वो घर आ गए। वहां पर जाके वो जो अपनी मीटिंग खत्म करके घर आने के बाद फिर इसके ऊपर जो मंथन चला उनका, और मंथन में से धीरे धीरे धीरे धीरे ये गीत शेप अप हुआ। और मंथन कैसा चला कि दिनों दिनों उन्होंने घर में बैठ के लाइन की लाइनें लाइन की लाइनें अलग अलग स्टाइल में लिखते रहे, और फिर जाके ये गीत एक गीत के रूप में बना। अब वो तो गीत तो बन गया, लेकिन वो तो उनको पता नहीं था, उन्होंने तो जैसे कवि थे तो अपने आप से लिखते थे
1: जी।
2: उसी दौरान महबूब खान ने एक प्रोग्राम तय किया था दिल्ली में, जैसे फंड रेजिंग का प्रोग्राम रखा था नेशनल स्टेडियम में
1: जी।
2: महबूब खान आए घर पे और प्रदीप जी से कहा कि आपको एक गाना देना है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग वहां पर एक एक गीत देने वाले हैं और हम वहां पर लाइव परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो आपकी तरफ से भी एक गीत हमें चाहिए। मेरे बापू को लगा कि अभी जो गीत मैंने लिखा है उसी को थोड़ा ठीक करके इसी को दे सकता हूँ, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो वो गीत तो उन्होंने बहुत लंबा लिखा था अपनी स्टाइल में,
1: बिल्कुल।
2: तो फिर बैठ के उन्होंने तराशा और उसको कम किया, जैसे बहुत लंबा था उसमें से काट छाट के महबूब खान ने कहा कि मुझे ये गाना उसमें सुवीनियर में लिखना है, क्योंकि हम सभी लोग सुवीनियर में हम लोग क्या गाने वाले हैं, हमारी परफॉर्मेंस क्या है, वो हम लिखने वाले हैं। इन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं कल आपको देता हूं। उन्होंने चितलकर काका को घर पे बुलाया, मतलब सी रामचंद्र, कि देखो भाई हमको ये गाना वहां पर देना है, और महबूब खान बोल रहे हैं कि हमको ये गीत का पूरा उसमें लिख के देना है,
1: ठीक है,
2: तो मैं नहीं चाहता हूं कि ये गीत जब तक वहां पर गाए नहीं कोई तब तक ये खुलना नहीं चाहिए कि ये गीत क्या है
1: जी।
2: तो चितलकर काका ने कहा ठीक है, अब सुवीनियर में देना है लाइंस, तो उन्होंने महबूब खान को चार लाइनें दी। ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, ये लाइनें दी कि भैया ये मेरी लाइनें हैं और जब तक मैं इसको ठीक करके दूंगा तब तक ये चार लाइनें आप इसमें छाप दीजिए। तो ये खुला नहीं कि इसमें गीत में क्या है, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, ठीक है, मतलब ये होगा कि हाँ शुभ दिन है, ये है वो है, सब लोग खुश हो जाओ, हम लोग सब अच्छे हैं, मतलब वॉट एवर। तो उस प्रकार का उन्होंने साइलेंट रहे कि हमारे उसमें गीत में क्या है
1: जी।
2: अब जब तक गाने का रिहर्सल होना था, लता दीदी गाने वाली थी, उसके पहले ये भी था कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगे, ठीक है। अब तब चितलकर काका का थोड़ा सा लता दीदी के साथ संबंध ठीक नहीं थे, तो लता जी ने कहा कि मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं श्री रामचंद्र के साथ गाना नहीं गाऊंगी, ये तो ओपन सीक्रेट है। तो फिर ठीक है आशा दीदी गाएगी, फिर ये तय हुआ कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगी साथ में। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें तो हमको पता नहीं है, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन आखिरी में लता दीदी ने गाया। तो वो तो तब रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग तो उसके बाद में
1: हुई,
2: ये तो लाइव वहां पर गाया उन्होंने
1: दिल्ली में,
2: तो रिहर्सल कैसे करेंगे। एक बार घर पे आके रिहर्सल करके गए लता दीदी,
1: अच्छे
2: की बार चले गए दिल्ली, है ना, लेकिन वो इतनी अच्छी और उत्कृष्ट गायिका थी कि उनको तो समय नहीं लगा उसको उठाने में। और चितलकर काका उनका तो संबंध ठीक नहीं थे, फिर भी दोनों ने साथ में खड़े होके स्टेज पे ये गाना पेश किया। प्रदीप जी को नहीं बुलाया गया था, नो इन्विटेशन।
1: अच्छा,
2: हाँ, तो ये भी अजीब सी बात है, देखिए कि जिस इंसान का गाना वहां बज रहा है, वहां गा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सभी गीतकार थे, प्रदीप जी को ये लोग भूल गए बुलाना
1: जी।
2: तो इनवाइटेड नहीं थे तो वो नहीं जाएंगे, वो नहीं गए। गीत वहां पर पेश हुआ, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए
1: जी।
2: तो माहौल चेंज हो गया, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, लोग एकदम सुनना शुरू किया कि ये क्या है। जवाहरलाल नेहरू जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए थे, राधा कृष्णन जैसे बहुत ज्ञानी थे, मतलब ऐसे हमारे वहां पर नेता बैठे थे जो समझ पा रहे थे कि ये क्या है। और पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ ना बोले, और लता दीदी की आवाज में ये गाना वहां पर गूंजा, लोगों की आंखों में आंसू भरे।

वो अपने डिफेंस मिनिस्टर थे तब यशवंतराव चव्हाण, उनको जवाहरलाल जी ने कहा कि चव्हाण जी आपके वहां के हैं ये, तो बंबई के लोग हैं ये सब, तो आप जब बंबई जाएंगे तो आप प्रदीप जी को जरूर कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो ये बात हो गई। दूसरे दिन अखबारों में छपा कि इतना सारा हुआ, जवाहरलाल जी की आंख में पानी आ गया। मुझे याद है कि

0: अरे ये तो हम गाते थे, हम जेल में थे, तब हमको आके बताया किसी ने कि ये गीत चल रहा है और लोग खुशी होके वापस वापस से इसको सुन रहे हैं,
1: जी
0: आपका लिखा गीत है, चल चलिए नौजवान आपका है। अरे ये तो इंदु भी गाती थी।
1: बताइए
0: ऐसी बातें कहाँ होती थी अगर वो
1: जी
0: जाते थे दिल्ली, तो
1: जी जी जी
0: ये भी एक नसीब और डेस्टिनी है,
1: कि जो होता है अच्छे
0: अच्छा
1: के लिए
0: होता है।
1: होता है
0: जी उसके बाद में उनको कहा गया मतलब जवाहरलाल जी ने कहा कि हमारा एक प्रोग्राम है कल यहीं पर, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के सामने ये गीत सुनाइए,
1: अच्छा इसी गीत
0: इसी
1: को
0: गीत
1: आप
0: को। तो
1: सुनाएं।
0: प्रदीप जी ने कहा कि मैं तो कवि हूँ, मैं तो साजिंदे के साथ तो गा नहीं सकता हूँ, अपनी तरीके से सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि हाँ हम आपकी तरीके से ही सुनना चाहते हैं जैसे आप गाएंगे। फिर वहां पर बहुत बड़ी प्रोग्राम था, एक मीटिंग थी, वहां पर प्रदीप जी ने ये गीत सुनाया और सुनाने के बाद जवाहरलाल जी ने कहा कि ये आपने जो हाथ में लिखा है ना गाना, वो मुझे दे दीजिए, आपकी लिखाई का गीत मैं रखूंगा। तो उनकी लिखी हुई हस्तलिपि में आज भी आनंद भवन में वो गीत सुरक्षित है।
1: वाह बहुत सुंदर। तो कहना चाहिए कि जो कवि प्रदीप जी की कलम से निकले जो गीत थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद में देश की रक्षा में सैनिकों का मनोबल बढ़ाया,
0: जी
1: और साथ ही उनके गीतों में राष्ट्रीयता थी, अध्यात्म था और मानवता का गहरा समावेश देखने को मिला, और तभी ये गीत लिखा गया जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो क्या ये गीत हम सुनें?
0: हम सुनने से पहले एक बात और बता दूं
1: जी
0: कि ये गीत की जितनी भी रॉयल्टी आई वो सभी हम लोगों ने और मेरे पिता ने जवानों की विधवाओं के लिए दान कर दी है।
1: जी
0: मेरे वतन के लोगों की
1: बहुत
0: जो भी
1: रॉयल्टी आई।
0: रॉयल्टी आती है वो वहां पर जाती है उनके घर वालों को, उनके परिवार को। वो मेरे पिता की इच्छा थी, तो इसको हमने आज तक हमने निभाया है।
1: ये गीत सुनिए, ऐ मेरे वतन के
0: जी
1: लोगों,
0: जरूर
1: जरा
0: जरूर।
1: आंख में भर लो पानी।

0: देखिए हमारी आंखों में भी पानी है और हमारी आंखें भी नम है आज इस बातचीत को जब हम कर रहे हैं। मिथुन जी, कवि प्रदीप जी की रचनाओं पर हम बात कर रहे हैं, उनके जो देशभक्ति रचनाएं हैं उनके बारे में हम इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि मिली उस देशभक्ति गीत के बाद ही, जिसका जिक्र भी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, ऐ मेरी वतन के लोगों
1: जी,
0: और उन गीतों को लोग आज भी सुनते हैं और उनके लिखे गीतों को आज भी हम देशभक्ति से ही जोड़ते हैं। उनका पूरा जीवन लेखन, देश प्रेम, राष्ट्रवाद और मानवीय संवेदनाओं को समर्पित रहा और वे देशभक्त के पर्याय बन गए
1: जी।
0: एक समय ऐसा भी आया, आप इस बात को कैसे कहेंगे, आप किस तरह का माहौल लगता था, कौन कौन से लोग उनसे मिलने आया करते होंगे?
1: हाँ, मैं आपको एक खास बात ये बताऊं कि प्रदीप जी कभी भी दूसरे प्रोड्यूसर्स या म्यूजिक डायरेक्टर्स के घर पे या ऑफिस में कभी गए नहीं। जो भी उनसे बात करना चाहे वो हमारे घर पे आते थे
0: जी।
1: तो ये नहीं है कि कभी वहां पर बैठे हुए हैं रिकॉर्डिंग रूम में, कभी नहीं। जो भी रिहर्सल होते थे गानों के वो हमारे घर पे होते थे। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि बड़े बड़े लोग आते थे
0: जी।
1: आशा दीदी, लता दीदी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफी, इन सबको सुनने का रिहर्सल्स में हमको मौका मिलता था।
0: बिल्कुल।
1: तो हम छोटे छोटे बच्चे कान लगा के खड़े रहते थे दरवाजे के पास।
0: हाँ।
1: और कभी कभी ऐसा

0: कि आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं, तो वो छूट के कारण भी उनकी एक स्वतंत्रता कभी बाधित नहीं हुई और वो एक कारण था कि आज भी कई गाने पॉपुलर हैं
1: जी।
0: दूसरा ये कि हमारे घर पे और कौन कौन आते थे, तो कई नेता भी आते थे, अभिनेता भी आते थे हमारे घर पे, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, उस वक्त के लोग
1: जी
0: काफी आते थे, जो उनके साथ कभी काम नहीं किया हो वैसे लोग भी आते थे सिर्फ मिलने के लिए
1: जी जी।
0: और म्यूजिक डायरेक्टर्स तो रिहर्सल होता था इसीलिए आते थे, तो उनका बातचीत सभी से थी, लेकिन वो कभी भी अपने आप को उन्होंने झुकाया नहीं, ना वो किसी विचारधारा के साथ गए
1: जी।
0: उनकी अपनी विचारधारा क्या थी, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सबसे ऊपर,
1: बिल्कुल
0: कोई भी आए जाए नेता उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, नेता कोई आते भी थे तो उनको बहुत खुली तरह से बोलते थे कि आप लोग ये गलत काम कर रहे हो और वो सुन भी लेते थे, ऐसा माहौल था तब वो सुन भी लेते थे
1: क्योंकि उनकी गीतों से वो बात निकली, उनकी कलम में वो था।
0: तो जैसे कई ऐसे नेता थे जो मैंने देखा था कि वो आके बैठते थे, उनसे बात करते थे और कुछ सुन के ही जाते थे कि आपने ये गलत काम किया, ये अपनी पॉलिसी गलत है, तो इस प्रकार से उनका बातचीत का दौर चलता रहता था। उनको क्या पसंद था, न्यूज, अखबार, मतलब जो अखबार सुबह आए तो चार पांच अखबार पढ़े बिना उनकी सुबह नहीं होती थी, पूरी नहीं होती थी, चाय और अखबार वो सबसे पहले सुबह उनके साथ में, उनके या तो कमरे में हो या हमारा अच्छा बरामदा है वहां पर।
1: कौन कौन से अखबार हुआ करते थे, कुछ याद है आपको?
0: हाँ हाँ, अभी अभी भी याद, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि वो बोलते थे कि इंडियन एक्सप्रेस लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें सही समाचार आते हैं। फिर नवभारत टाइम्स, मतलब हिंदी अखबार, इंग्लिश अखबार और मराठी अखबार
1: जी,
0: वो मराठी भी पढ़ते थे, तो वो चाहते थे कि सभी तरह की उनको जो समाचार मिलता रहे, क्योंकि मराठी अखबार में लोकल ज्यादा आएंगे न्यूज, हिंदी अखबारों में हिंदी प्रदेशों के न्यूज आएंगे और इंग्लिश में तो सब कुछ आएगा ही आएगा, तो ये छह अखबार हमारे वहां रोज आते थे, और गुजराती, मतलब गुजराती भी क्योंकि मेरी माँ गुजराती थी,
1: इतनी भाषाओं का,
0: इतनी भाषाओं के हमारे वहां अखबार आते थे
1: और उसे पढ़ा
0: और आज भी आते हैं, वो मैंने बंद नहीं किए
1: जी।
0: तो मुझे भी वो आदत है कि सुबह सुबह अखबार के सिवाय हमारी सुबह नहीं होती
1: होती।
0: बीबीसी न्यूज, उनका रोज का सवेरे का 6:45 बजे का न्यूज वो सुनते थे, ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज, मतलब समाचार जो हिंदी में आएंगे, अंग्रेजी में आएंगे,
1: हाँ,
0: वो सब उनको सुनना जरूरी था।
1: तो घर में एक रेडियो था?
0: हाँ हाँ
1: जी,
0: एक नहीं, दो तीन रेडियो थे, क्योंकि तब तो टेलीविजन भी नहीं था ना, तो रेडियो उनका साथी था, मेरी माँ का अलग साथी रेडियो था और मेरे लिए अलग रेडियो था, तो हमारे घर में तीन अलग अलग रेडियो बजते थे, तो मैं जो है विविध भारती सुनती थी।
1: अच्छा,
0: जैसे मैंने कहा वो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखते थे कि दिन में कुछ भी अगर समाचार आए तो हमको वो पहले बताते थे, जैसे कैनेडी को गोली मारी गई तो सबसे पहले उन्होंने आके हमको बताया कि देखो ये हो गया है, तो ये अपडेटेड रहते थे हर एक चीज में,
1: मतलब पल पल उनका देश के लिए समर्पित था। हाँ, और हर कण कण में वो
0: ये जो जागरूकता थी ना, वो मुझे नहीं लगता कि सभी परिवारों में रहती है, तो जागरूकता रहने से मैं, माँ और तब दीदी की शादी भी हो गई थी, वो मुझसे बड़ी थी, तो हम तीनों लोग जागरूकता, मतलब वो क्या आ रहा है सुनने की आदत हो गई कि सबसे पहले समाचार सुनो क्या हो रहा है, समाचार सुन लिए उसके बाद में चाहे कुछ भी करो, तो मेरी माँ भी सुबह मेरे पिता के जाने के बाद सुबह सवेरे वो रेडियो का समाचार पहले सुनती थी।
1: तो मितुल जी, अब एक और गीत हम आपकी पसंद का सुन लेते हैं, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
0: एक हम लोग थोड़ा सा हटके सुनाते हैं, संबंध फिल्म का, अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पे भी कुछ डालो, अरे ओ रोशनी वालों।
1: वाह, क्या बात है, महेंद्र कपूर साहब का गाया हुआ गीत है
0: जी,
1: और बहुत पसंद करते हैं लोग इस गाने को, गाने में बहुत ही दर्शन छुपा है, बहुत ही खूबसूरत गीत, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आप दोनों बेटियों ने अपने पिता से क्या सीखा, मतलब उनको जिस करीबी से आपने देखा, क्या क्या लगा आपको कि नहीं हम अपने पिता से ये नहीं सीख पाए, हमें सीख लेना चाहिए था, ऐसा कभी महसूस करते हैं आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर?
1: अच्छा गाना नहीं सीख पाए, अच्छा लिखना नहीं सीख पाए ये दो चीजें तो खैर नहीं कर पाए हम। और दीदी तो फिर भी ठीक ठाक गाती थी और मतलब प्रोफेशनली नहीं ऐसे, लेकिन जागरूकता, सरल जिंदगी, हमें कभी भी कोई कंपटीशन नहीं रहता है कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, उसके पास ये है, मुझे भी वो चाहिए, वो कभी नहीं रहा। फिल्म इंडस्ट्री के लिए कभी कोई अट्रैक्शन नहीं रहा,
0: फिल्मी दुनिया में रहते हुए भी उस माहौल में रहते हुए भी।
1: और आज भी ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात हुई कि हमको फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रहा कि हमको फिल्म में काम करना है या गाना गाना है या हमको ये करना है, ऐसा नहीं रहा।
0: और इसी तरह का कोई आपको मिला भी नहीं वहां से कि कोई व्यक्ति आए और कहा हो कि मितुल जी हमारे लिए कुछ लिखिए अपने पिता की तरह या गा के बताइए?
1: हाँ हाँ, नहीं नहीं, लिखने के लिए तो मुझे दो तीन लोगों ने अभी भी कहा था, जैसे बप्पी दा ने कहा था मुझे उनके जाने के कुछ सालों पहले कि आप पिताजी की तरह आप भी लिखिए, मैं उसके म्यूजिक कंपोज करूंगा, बप्पी लहिरी ने
0: जी।
1: तो वो तो मुझे मिलता रहता है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं नहीं लिख पाऊंगी मैं जानती हूं, तो मैं क्यों अपने आप को उसमें एक्सपोज करूं, तो वो काम नहीं हो पाया।
0: आप उनकी कोई कविता सुनाना चाहती हैं तो हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे जो आपको पसंद हो,
1: हाँ, हम अभी
0: जो फिल्मों में नहीं आई और उनकी अलग से जो उनका संकलन था कविताओं का।
1: हाँ हाँ, तो उन्होंने जैसे देशभक्ति के ऊपर कविताएं लिखी, तो एक दो लाइनें उसकी सुनाती हूँ और एक दो लाइनें कुछ अलग मूड की सुनाती हूँ
0: जी।
1: तो उन्होंने मैंने जैसे पहले कहा था कि आजाद जब नहीं रहे, चंद्रशेखर आजाद, तब कविता लिखी थी, उसी दौरान उसके बाद में जब हमको आजादी मिली
0: जी,
1: तब उन्होंने एक कविता लिखी थी कि लो फिर पुलक उठे वे जो थे दले गए, लो फिर पुलक उठे वे जो थे दले हुए, उर्वी पर अपार दुर्वा दल नए नए, कल तक थी जो विकल दैन्य से दबी रही, आज वही खिल उठी

0: कश्य श्यामला मही, निखिल प्रकृति लहलही, विमल बातास बही, पल्लव पल्लव ने नवयुग की कथा कही। मतलब नवयुग में खुशी से आनंदित है क्योंकि हमको उस वक्त आजादी मिली थी। और आप अगर सुने एक और उनका गाना है जो आप बाद में बजा सकते हैं कि इंसान का इंसान से वो भाईचारा,
1: यही
0: ये वही तरीके का है कि उसमें उन्होंने लिखा है कि हरेक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाएं, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह पाए। तो ये गीत भी उनका बहुत देश के लिए पॉपुलर है और आज भी वो संदेश लोगों में जाना चाहिए कि इंसान का इंसान से भाईचारा
1: यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हम ठुकरा नहीं सकते,
0: ठुकरा नहीं सकते,
1: भुला नहीं सकते, झुटला नहीं सकते हैं। तो आप कहें तो यही गीत
0: ये जरूर बजाइए, बहुत अच्छा गीत है।
1: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: मितुल जी, जब देश आजाद हुआ, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों के लिए लिखा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए, और एक ऐसी ज्वाला देश में उत्पन्न कर दी अपने शब्दों के जरिए, अपने गीतों के जरिए, कि नेहरू जी की भी आंखें नम हो गई और सुनने वालों की आंखें नम हुई। तो जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय क्या माहौल था और किस तरह का माहौल घर में था? हमें पता है तब आपका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जब आप बड़ी हुई और इस तरह की बातें घर में चली होंगी तो माँ के द्वारा ये बातें आप तक आई होंगी, उसके बारे में हमें बताइए।
1: मेरी माँ बताती थी कि जिस दिन ये 1947 15 अगस्त ये इतना बड़ा दिन था
0: जी
1: पूरे देश के लिए, तो वही माहौल हमारे घर में था। हमारे घर के बाहर रंगोलियां बनाई गई, मेरी माँ बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, वो बहुत अच्छी रंगोली बनाती थी, तो उन्होंने बहुत बढ़िया भारत माता की रंगोली बनाई, उन्होंने बहुत सुंदर से फूलों से पूरा आंगन सजाया, और बापू को तो हमारा जो शीरा रहता है ना आटे का, वो बहुत पसंद था हमेशा, हलवा, तो वो उन्होंने स्पेशली बोलती है कि मैंने बहुत सारा बनाया और प्रदीप जी ने भी खाया और आसपास के लोगों को भी हमने खिलाया। तो एक तो हलवा बना घर में, और बंदेज अपने तोरण बनाए हाथों से, गेंदे के फूल लेके हाथों से, मतलब

0: और किस तरह का माहौल घर में था, हमें पता है तब आपका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जब आप बड़ी हुई और इस तरह की बातें घर में चली होंगी तो माँ के द्वारा ये बातें आप तक आई होंगी, उसके बारे में हमें बताइए।
1: मेरी माँ बताती थी कि जिस दिन ये 1947 15 अगस्त ये इतना बड़ा दिन था
0: जी
1: पूरे देश के लिए, तो वही माहौल हमारे घर में था। हमारे घर के बाहर रंगोलियां बनाई गई, मेरी माँ बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, वो बहुत अच्छी रंगोली बनाती थी, तो उन्होंने बहुत बढ़िया भारत माता की रंगोली बनाई। उन्होंने बहुत सुंदर से फूलों से पूरा आंगन सजाया, और बापू को तो हमारा जो शीरा रहता है ना आटे का, वो बहुत पसंद था हमेशा, हलवा। तो वो उन्होंने स्पेशली बोलती है कि मैंने बहुत सारा बनाया और प्रदीप जी ने भी खाया और आसपास के लोगों को भी हमने खिलाया। तो एक तो हलवा बना घर में, और बंदेज अपने तोरण बनाए हाथों से, गेंदे के फूल लेके हाथों से, मतलब

0: उनके मन में उसी वक्त उठा था कि हमने तो आजादी दिलवा दी, हम तो चले जाएंगे, उसके बाद में क्या, क्या आप इस देश को आजाद रख पाओगे? तो उन्होंने बच्चों को पूछा कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के,
1: इस देश को रखना मेरे बच्चों
0: संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, क्योंकि उनको वही चिंता रही कि एटम बमों के जोर पे ऐठी है दुनिया, तुम क्या करोगे, तुम खुद कुछ भी करना चाहो, पूरी दुनिया में बम से। और आज वही माहौल नहीं है क्या? हाँ, आज जो इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े देश, आज भी वही बात है। तो वो उन्होंने उस वक्त यही सोचा था कि आगे क्या होगा।
1: जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि प्रदीप जी वहां पहुंच गए जो आज हम देख रहे हैं, उस समय वो उस बात तक पहुंच गए और उन्होंने चिंता व्यक्त की जो आज सच साबित हो रही है।
0: हरेक हरेक लाइन सुनिए आप
1: जी।

जिसके साथ जीने की चाहत बढ़ जाए आखिरी हद तक, तो लगता है वक्त रुक क्यों नहीं जाता दिलों की धड़कनें सुनने के लिए।

मेरा कोई अक्स नहीं, पहचान तुम हो। जिस सांस से मेरी सांस चले वो सांस तुम हो। ये जान लो तुम मेरी जान हो।

0: मेरी का इशारा समझो, अपने चलाना होगा।
1: तुम बड़े हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: क्यों?
0: नहीं, आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

किसी को देखा, चाहा, प्यार किया, एक से दो हुए, दो से तीन, और फिर खुशियों का मेला। भला कौन नहीं याद करना चाहेगा ऐसे।

हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5:30 होने को है और लीजिए रोज की ही तरह आज भी हम आप तक पहुंचाते हैं प्रोग्राम ईशुवाणी।

नमस्कार श्रोताओं, मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम युवाणी में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम कार्यक्रम में एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल समाज बल्कि हमारे दिल को छू लेता है। ये विषय है समाज सेवा। श्रोताओं, समाज सेवा मानवता का सबसे सुंदर रूप है। जब हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करते हैं तो उसे राहत मिलने के साथ साथ हमें भी आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। समाज सेवा के माध्यम से गरीब, वृद्ध, बीमार और वंचित लोगों की सहायता की जा सकती है। इससे समाज में समानता, प्रेम और भाईचारे की भावना बढ़ती है। समाज सेवा का अर्थ है समाज के लोगों की निस्वार्थ भाव से सहायता करना और उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना। यह केवल दान तक नहीं है बल्कि लोगों की समस्याओं को समझकर उनके समाधान में सहयोग करना भी समाज सेवा है। एक अच्छे समाज का निर्माण तभी संभव है जब उसके नागरिक दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें। आज के समय में समाज के सामने अनेक समस्याएं हैं, जैसे गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण, स्वच्छता की कमी और सामाजिक भेदभाव। इन समस्याओं का समाधान केवल सरकार के प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। यदि लोग समाज सेवा में आगे आए तो इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कोई शिक्षा देकर समाज की सेवा कर सकता है तो कोई वृद्ध आश्रम या अनाथालय में जाकर लोगों की मदद

पर्यावरण प्रदूषण, स्वच्छता की कमी और सामाजिक भेदभाव, इन समस्याओं का समाधान केवल सरकार के प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। यदि लोग समाज सेवा में आगे आए तो इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कोई शिक्षा देकर समाज की सेवा कर सकता है तो कोई वृद्धाश्रम या अनाथालय में जाकर लोगों की मदद कर सकता है। रक्तदान, नेत्रदान और अंगदान जैसे कार्य भी समाज सेवा के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में भाग लेकर भी समाज की सेवा की जा सकती है। छात्रों की भी समाज सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे अपने आसपास के लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक कर सकते हैं। स्वच्छता अभियान में भाग लेकर अपने क्षेत्र को साफ सुथरा बना सकते हैं। जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ाई में सहायता देकर उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में योगदान दे सकते हैं। छोटी छोटी सेवाएं भी समाज पर बड़ा प्रभाव डालती हैं। समाज सेवा से केवल दूसरों का ही नहीं बल्कि स्वयं का भी विकास होता है। इससे व्यक्ति में दया, करुणा, सहानुभूति, सहयोग और नेतृत्व जैसे गुण विकसित होते हैं। समाज सेवा करने वाला व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। ऐसे लोगों का जीवन अधिक सार्थक और सफल माना जाता है। समाज सेवा के लिए धनवान होना आवश्यक नहीं है। एक मुस्कान, एक अच्छा व्यवहार, किसी की समस्या को ध्यान से सुनना या जरूरत पड़ने पर सहायता करना भी समाज सेवा का रूप है। हर व्यक्ति अपनी क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार समाज की भलाई के लिए योगदान दे सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे मन में दूसरों की सहायता करने की भावना हो। आज के डिजिटल युग में समाज सेवा के नए अवसर उपलब्ध है। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जरूरतमंदों की सहायता के लिए अभियान चला सकते हैं, शिक्षा संबंधी जानकारी साझा कर सकते हैं और सामाजिक जागरूकता फैला सकते हैं। तकनीक का सही उपयोग समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अंत में कहा जा सकता है कि समाज सेवा एक ऐसा कार्य है जो व्यक्ति और समाज दोनों के विकास में सहायक होता है। हमें केवल अपने हित के बारे में नहीं बल्कि समाज के कल्याण के बारे में सोचना होगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति समाज सेवा में आगे रहे और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करे तो एक आदर्श, सुखी और समृद्ध समाज का निर्माण संभव है। इसलिए हमें सदैव समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्ची मानवता और नागरिकता का परिचय है। श्रोताओं, हमारी इस महत्वपूर्ण चर्चा के बाद आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

दोस्तों, अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा गाना। आइए अब बात करते हैं भारतीय सिनेमा के उस सितारे की जिनका नाम सुनते ही दमदार खलनायक की छवि आंखों के सामने उभर आती है। मैं बात कर रही हूँ अमरीश पुरी जी की। आइए जानते हैं उनके जीवन और फिल्मी सफर की कुछ विशेष बातें। अमरीश पुरी भारतीय सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक थे। उनका जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवांशहर यानी वर्तमान शहीद भगत सिंह नगर में हुआ था। उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ पंजाबी, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में अभिनय किया। अपनी दमदार आवाज, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व और बेहतरीन अभिनय के कारण वे भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार खलनायकों में गिने जाते हैं। अमरीश पुरी ने अपने करियर की शुरुआत रंगमंच से की थी। वे प्रसिद्ध रंगकर्मी सत्यदेव दुबे के साथ थिएटर में काम करते थे। थिएटर में वर्षों तक मेहनत करने के बाद उन्हें फिल्मों में अवसर मिला। शुरुआत में उन्होंने छोटे छोटे किरदार निभाए, लेकिन धीरे धीरे अपनी प्रतिभा के बल पर फिल्म उद्योग में एक अलग पहचान बनाई। 1970 और 80 के दशक में अमरीश पुरी ने कई फिल्मों में सहायक और खलनायक की भूमिका निभाई। उनकी अभिनय क्षमता इतनी प्रभावशाली थी कि दर्शक उन्हें देखते ही उनके किरदार को याद रखने लगते थे। उन्होंने हर प्रकार के किरदार निभाए, लेकिन खलनायक के रूप में उन्हें सबसे अधिक लोकप्रियता मिली। उनकी तेज आवाज, गंभीर चेहरे के भाव और संवाद बोलने का अनोखा अंदाज उन्हें अन्य अभिनेताओं से अलग बनाता था। भारतीय सिनेमा में अमरीश पुरी ने अनेक यादगार भूमिकाएं निभाई। फिल्म मिस्टर इंडिया में उनका मोगेम्बो का किरदार आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में

प्रसिद्ध खलनायक पात्रों में गिना जाता है। उनका प्रसिद्ध संवाद मोगेम्बो खुश हुआ आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। इस भूमिका ने उन्हें अमर लोकप्रियता दिलाई और वे घर घर में पहचाने जाने लगे। हालांकि वे खलनायक के रूप में अधिक प्रसिद्ध थे, लेकिन उन्होंने कई सकारात्मक और भावनात्मक भूमिका भी निभाई। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उन्होंने एक सख्त लेकिन प्यार करने वाले पिता की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उनका अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आया। इसके अलावा उन्होंने विरासत, घातक, करण अर्जुन और नायक जैसी कई सफल फिल्मों में शानदार अभिनय किया। अमरीश पुरी अपने अनुशासन, मेहनत और पेशेवर व्यवहार के लिए भी जाने जाते थे। वे समय के बहुत पाबंद थे और अपने काम को पूरी लगन से करते थे। यही कारण था कि फिल्म निर्माता और निर्देशक उनके साथ काम करना बहुत पसंद करते थे। उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनकी बहुमुखी प्रतिभा थी। वे केवल खलनायक ही नहीं बल्कि पिता, पुलिस अधिकारी, राजा, नेता और विभिन्न प्रकार के चरित्रों को भी जीवंत बना देते थे। उनके अभिनय में गहराई और वास्तविकता दिखाई देती थी, जिससे दर्शक उनके किरदारों से जुड़ जाते थे। 12 जनवरी 2005 को अमरीश पुरी का निधन हो गया। उनके निधन से भारतीय फिल्म उद्योग को बड़ी क्षति पहुंची। आज भी उन्हें भारतीय सिनेमा के महानतम अभिनेताओं में गिना जाता है। उनकी फिल्में, संवाद और अभिनय शैली नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अमरीश पुरी भारतीय सिनेमा के एक ऐसे महान कलाकार थे जिन्होंने अपने अद्वितीय अभिनय, प्रभावशाली व्यक्तित्व और मेहनत के बल पर फिल्म जगत में छाप छोड़ी। वे केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की एक अमूल्य धरोहर थे, जिन्हें हमेशा सम्मान और प्रेम के साथ याद किया जाएगा। श्रोताओं, अब वक्त है संगीत के रंग में रंगने का। प्रस्तुत है एक मधुर और मनमोहक गीत, आइए सुनते हैं।

युवाणी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब बात करते हैं कार्यक्रम की अगले विषय पर। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सपनों को पूरा कर लेते हैं जबकि कुछ लोग जीवन भर भटकते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है लक्ष्य। आज का हमारा विषय है जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना। श्रोताओं, इंसान का जीवन अनेक अवसर और चुनौतियों से भरा होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, सम्मान और सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन बिना किसी निश्चित लक्ष्य के जीवन में आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। लक्ष्य वह दिशा है जो हमें सही मार्ग दिखाती है और हमारी ऊर्जा को सही कार्यों में लगाने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए जीवन में लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है। लक्ष्य का अर्थ है अपने जीवन में किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने का संकल्प लेना। जब किसी व्यक्ति को यह पता होता है कि उसे क्या बनना है या क्या हासिल करना है, तब वह उसी दिशा में मेहनत करता है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता, वह बिना दिशा के भटकता रहता है। जीवन में लक्ष्य तय करने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हमें अपने उद्देश्य का पता रहता है, तब हम अपने समय और संसाधनों का सही उपयोग कर पाते हैं। लक्ष्य हमें मेहनत करने की प्रेरणा देता है और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। कई बार जीवन में असफलताएं आती हैं, लेकिन लक्ष्यवान व्यक्ति हार नहीं मानता। वह अपनी गलतियों से सीखता है और पुनः प्रयास करता है। विद्यार्थी जीवन में लक्ष्य का विशेष महत्व होता है। यदि कोई छात्र यह तय कर ले कि उसे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो वह उसी के अनुसार पढ़ाई करता है। उसका ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित रहता है और वह समय की बर्बादी से बचता है। दूसरी ओर जिन छात्रों का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता, वे अक्सर भ्रमित रहते हैं और अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। लक्ष्य व्यक्ति को अनुशासन सिखाता है। किसी भी बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियमित मेहनत, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद व्यक्ति अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करता है और अपने कार्यों को प्राथमिकता देता है। इससे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और वह अधिक जिम्मेदार बनता है। केवल लक्ष्य निर्धारित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए सही योजना बनाना भी आवश्यक है। लक्ष्य यथार्थवादी और अपनी क्षमता के अनुसार होना चाहिए। बहुत बड़े लक्ष्य को भी छोटे छोटे चरणों में बांटकर प्राप्त किया जा सकता है। नियमित अभ्यास और सकारात्मक सोच से कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आइए अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

श्रोताओ, जीवन में लक्ष्य व दिशा है जो हमें भटकने से बचाती है। बिना लक्ष्य के जीवन उस नाव की तरह है जो समुद्र में तो चलती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि किनारे तक कैसे पहुंचना है। लक्ष्य में मेहनत करने, चुनौतियों का सामना करने और अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा देता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। सपने तभी सच होते हैं जब उन्हें पूरा करने का लक्ष्य और उस लक्ष्य तक पहुंचने का संकल्प हो। लक्ष्य हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और सफलता की राह दिखाता है। इस चर्चा के बाद आइए

तो श्रोताओं, आइए जानते हैं कल के कार्यक्रम में क्या है खास। कल आज की बात में चर्चा होगी समुद्र और मानव जीवन का क्या है रिश्ता। मनी मंत्र में बात होगी आय और खर्च का कैसे रखे संतुलन। साथ ही सुनेंगे आपके पसंदीदा गाने। श्रोताओं, उम्मीद है आज की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी और आपने इसका आनंद लिया होगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हमें दीजिए अनुमति, फिर मुलाकात होगी एक नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवावाणी। शाम के 6 बज चुके हैं। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं और लीजिए अब हम आप तक पहुंचाते हैं आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारियां। तो श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:05 पर हम आप तक पहुंचाएंगे कार्यक्रम माटी के स्वर, और माटी के स्वर में आज गायक कलाकार होंगे लखन लाल यादव। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 6:30 पर। रोज की ही तरह सबरस, जिसमें गजल, भजन, कवाली और गैर फिल्मी गीतों को शामिल किया जाता है, ऐसा प्रोग्राम सबरस हम आप तक पहुंचाएंगे शाम 6:50 पर। प्रादेशिक समाचार का समय होगा 7:10। ग्राम सभा आप सुनेंगे शाम 7:20 पर, जिसमें आज की बात में आप जानेंगे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। साथ ही सामयिक कृषि चर्चा में आप रूबरू होंगे अत्यंत महत्वपूर्ण बात, मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही उर्वरकों का उपयोग करें। श्रृंखला में होंगी बातें खेती किसानी की, साथ ही भेंट वार्ता और बाजार भाव और मौसम की जानकारी से भी रूबरू होंगे। श्रोताओं, रात्रि 8 बजे सुनिएगा शीर्षक संगीत और 8:30 पर

सुनिएगा साज और आवाज। 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। इस दौरान आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा रात्रि 10 बजे। रात्रि 10:25 पर सुनिएगा सरकार के 12 वर्ष युवा शक्ति आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित विशेष श्रृंखला पर आधारित ये कार्यक्रम हम आप तक पहुंचाएंगे और कार्यक्रम सरकार के 12 वर्ष इसे आप सुनेंगे रात्रि 10:25 पर। श्रोताओं, ये थे हमारे आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

श्रद्धा, अब हम आपको अवगत कराते हैं कल की सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारियां। श्रद्धा, हमारी कल की प्रातःकालीन सभा में आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति धारा प्रातः 6:05 पर। चिंतन आप सुनेंगे सुबह 6:30 पर। श्री रामचरितमानस गान 6:35 पर। लोक रंजनी कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा 6:45 पर। यादों के झरोके से इस कार्यक्रम को आप सुनिएगा सुबह 7:20 पर। सुबह सवेरे इस कार्यक्रम में आप जानकारी लीजिएगा महत्वपूर्ण विषयों पर सुबह 7:50 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे कल सुबह 8:30 पर। श्रोताओं, 9 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक इस दौरान आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। जिले की चिट्ठी, इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुबह 10 बजे। 10:05 पर होगा अनुरोध गीत। 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम महिला जगत, जिसमें आज की बात में आप जानेंगे जल संपदा और समुद्र संरक्षण का महत्व। साथ ही मुलाकात में जल संरक्षण, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी, इस विषय पर पर्यावरण विशेषज्ञ, वन विभाग, जल संवर्धन में कार्य करने वाली महिला समाज सेवी से बातचीत। साथ ही हेल्थ टिप्स और किचन टिप्स में मौसम के अनुसार रसोई में खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने के आसान उपायों की जानकारी भी इस प्रोग्राम में आप तक पहुंचाई जाएगी। श्रोताओं, सुबह 11 बजे सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम दोपहर 2:10 तक। दोपहर 2:15 पर सुनिएगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और श्रोताओं, 2:30 से लेकर शाम 5:30 तक सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। रोज की ही तरह प्रोग्राम भीववाणी आप सुनेंगे कल शाम 5:30 पर। गोधूली का समय होगा कल शाम 6:05 पर। और फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 6:30 पर। सबरस कार्यक्रम आप तक पहुंचाएंगे 6:50 पर। कार्यक्रम का ग्राम सभा आप सुनेंगे कल शाम 7:20 पर। कुछ बातें कुछ गीत रात्रि 8 बजे और 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम हमारा बैतूल। रात्रि 9 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे के बीच आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। और रात्रि 10 बजे सुनिएगा आपके मीत ये गीत। और 10:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सरकार के 12 वर्ष आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित विशेष श्रृंखला कार्यक्रम पर आधारित होगा। श्रोताओं, ये थे हमारे आज के और कल की सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए अब हम आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम माटी के स्वर। और माटी के स्वर में आज गायक कलाकार हैं लखनलाल यादव।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम माटी के स्वर, और माटी के स्वर में आज गायक कलाकार थे लखन लाल यादव और साथी। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं और लीजिए अब हम आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में हमने आपके लिए सबसे पहले चुना है ये बेहद ही खूबसूरत सा तराना। फिल्म का नाम है आपकी कसम, आवाज किशोर कुमार की, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और धुन बनाई है आरडी परमन ने। तो श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म आपकी पसंद से ये बेहद ही खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में लीजिए अब हम आप तक पहुंचाते हैं महेंद्र कपूर की आवाज में साहिर का लिखा हुआ गाना, रवि की धुन पर, फिल्म हमराज से।

श्रोताओं, अब हम आप तक पहुंचाते हैं फिल्म गुमराह से महेंद्र कपूर की आवाज में साहिर का लिखा हुआ गाना रवि की धुन पर।

0: से अजनबी बन जाए हम दोनों।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, अब हम आप तक पहुंचाते हैं प्रोग्राम सबरस। और सबरस में सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं ये गजल।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस, और सबरस में अभी आपने सुना ये प्यारी सी गजल को, और लीजिए अब हम आप तक पहुंचाते हैं ये भक्ति गीत। स्वर है नरेंद्र चंचल का।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुनी कव्वाली और स्वर थे असलम सबरी के गाई इस कव्वाली के साथ ही कार्यक्रम सबरस अब यही संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, तो सुनते रहिए, जुड़े रहिए।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार समाचारों के साथ मैं रत्नेश सुनो। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद देश में मिल रही है सस्ती गैस। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खाद्य सुरक्षा आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नशे के खिलाफ एक सामाजिक जागरण करने पर दिया जोर। और प्रदेश में 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है मॉनसून। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों में खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेश आकाशवाणी से एक विशेष रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के

0: लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खाद्य सुरक्षा आज के दौर की बड़ी जरूरत है, क्योंकि यह हम सबके उदर पोषण से जुड़ा विषय है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की सार्थकता हर नागरिक को शुद्ध, स्वच्छ, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिलने में है। प्राकृतिक खेती अपनाने से इसमें महत्वपूर्ण योगदान होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विश्व खाद्य सुरक्षा पर यह संदेश देते हुए कहा कि स्वस्थ नागरिक ही सशक्त और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। उन्होंने इस विशेष दिवस पर प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि आइए हम सब खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और इसके पोषक तत्वों के मानकों के प्रति सदैव जागरूक रहें। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी अधिक प्रवाह हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में राजनीतिक रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार, जहाजरानी, निवेश, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण, उर्वरक, महत्वपूर्ण खनिज, पर्यटन, शिक्षा, सांस्कृतिक सहित द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी अपने विचार साझा किए। साथ ही बहुपक्षीय समन्वय को आगे बढ़ाने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। इंदौर में 9 से 13 जून तक आयोजित होने वाले ब्रिक्स देशों के महत्वपूर्ण कृषि सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कलेक्टर शिवम वर्मा ने रेसिडेंसी में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में सम्मेलन से जुड़ी व्यवस्थाओं, सुरक्षा, आवागमन, आवास, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन तथा अतिथियों के स्वागत सत्कार सहित अन्य सभी आवश्यक तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि कृषि नवाचार, खाद्य सुरक्षा, कृषि अनुसंधान, सतत कृषि विकास, आधुनिक तकनीकों तथा किसानों की आय वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। आयोजन के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्र, विशेषज्ञ चर्चाएं, प्रस्तुतियां तथा अनुभव साझा करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचार वक्त है कब छोटे से विराम का।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचार में पुनः आपका स्वागत है। अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में आयोजित 2 दिवसीय निःशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर के आज दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विदिशा में सेवा का महायज्ञ दूसरे दिन भी जारी है। चिकित्सकों की टीम पूरी निष्ठा से हर नागरिक की जांच और उपचार में जुटी है। श्री चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इसको वैक्सीन के माध्यम से पूरी तरह से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ एक सामाजिक सख्ती का जागरण करना पड़ेगा।
2: अलग अलग ढंग के कैंसर जो तथा है वो बेहद चिंताजनक। अगर 25 से 98 में से 586 पॉजिटिव जिनको निश्चित कैंसर है निकल 200 सस्पेक्ट है, तो आप कल्पना करें कि बीमारी कितने भयानक ढंग से फैल रही है। हो सकता है कई लोग नहीं आए हो, नहीं आ पाए। सबसे ज्यादा है मौके कैंसर वाले। मौका कैंसर क्या होता है? ये अपने आप नहीं होता। यहाँ पर हम खुद बुलाते हैं लोगों का तमाकू से इलाज कराते कराते कई बार टूट जाता है, कई जनों की मन का चुनू बिगड़ जाता है, कई बच्चे अपने पिता का अस्पताल के बाहर इंतजार करते हैं, बच्चे बताए घर उजर जाते हैं।
1: भारत सरकार खेल मंत्रालय की खेलो इंडिया योजना मिशन के तहत चलाए जा रहे फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान और विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आज संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम तथा फिटनेस रैली का आयोजन धार में किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री एवं सांसद सावजी ठाकुर ने कहा कि
3: साइकिलिंग इसलिए हमारे जीवन में जरूरी है एक्सरसाइज, ताकि हमारा जीवन स्वस्थ और समृद्ध रहे, हम ऊर्जा के साथ काम करें और अंदर से व्यक्ति जब मजबूत होगा तो जीवन में वो हर काम को मजबूती से कर पाएगा। तो आज इस दिवस की मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और जीवन में हर व्यक्ति को साइकिलिंग करना चाहिए, ये सभी से मैं आह्वान करती हूँ।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन जिले के ग्राम टंकारिया पंथ में श्रीमद भागवत कथा के समापन समारोह वीडियो समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में ऐसे धार्मिक आयोजनों का विशेष महत्व है, ये समाज को सकारात्मक दिशा देते हैं और सबके जीवन में सद्भाव एवं आत्मिक शांति का संचार करते हैं, साथ ही ये मनुष्य को उसके कर्तव्यों और मानव सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला दिव्य ज्ञानामृत है। भारत ने कल गोवा के मडगांव में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप के फाइनल में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम किया। भारतीय महिला खिलाड़ी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने 18 गोल करने की उपलब्धि भी हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी भारतीय महिला फुटबॉल टीम को चैंपियनशिप जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा भारतीय टीम की सफलता खेल जगत में प्रेरणा का नया अध्याय लिखेगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित की। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने अपनी पहली पारी में दिन का खेल समाप्त होने तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए हैं। प्रदेश में मानसून 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है। राज्य के सभी जिलों में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। पिछले एक सप्ताह से कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज अधिकांश जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार केरल से देश में प्रवेश करने वाला मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने 9-10 जून को प्रदेश के उत्तरी जिलों में हीट वेव चलने की संभावना भी जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम में संचालित देश के पहले महिला बंदी स्व सहायता समूह को डेयरी से व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया गया है। ये पहल महिला बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने का अनूठा प्रयास माना जा रहा है। खंडवा में प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने खालवा में लगभग 1,20,00,000 रूपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस बुलेटिन में बस इतना। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: पहले झोंके
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झोंकों का क्या,
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है
0: वित्तीय समझदारी समझो धनारी।
4: हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 7:20 हो चुके हैं और लीजिए अब हम आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा।

कार्यक्रम ग्राम सभा सुन रहे सभी श्रोताओं और किसान भाइयों को अशोक सहाने का राम राम। श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा में। किसान भाई, जैसा कि अभी जून का महीना चल रहा है और इस महीने में चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी के बीच किसान भाई अपने जरूरी निजी कामकाजों और कृषि कार्यों को निपटाने का कार्य कर रहे हैं, यानी इन कार्यों में सबसे पहले तो किसान भाई अपनी उपज या अनाजों का सुरक्षित भंडारण करने का

कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ किसान भाई अपनी जरूरत के हिसाब से अपने अनाज को मंडी या बाजार में बेचने का भी काम कर रहे हैं। किसान भाइयों, इन्हीं सब बातों के साथ इस कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर। किसान भाई, जैसा कि आज के दिन यानी 7 जून को संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, भाइयों खाद्य सुरक्षा या फूड सेफ्टी एक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य खाद्य जनित जोखिमों को रोकने, पहचानने और उसे प्रबंधित करने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। भाइयों, खाद्य सुरक्षा एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अनिवार्यता और मौलिक अधिकार है। वास्तव में हमारे देश में या देश की खाद्य प्रणाली को पर्याप्त सुरक्षित और उपयुक्त बनाने का समय आ गया है। इसलिए भाइयों, इस वर्ष खाद्य सुरक्षा दिवस की मुख्य थीम यह है, बोझ से समाधान की ओर, हर जगह सुरक्षित भोजन। क्योंकि भोजन केवल एक मूलभूत आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की नींव भी है। भोजन हमारा पोषण करता है और हमारी परंपराओं को आकार देता है। इसलिए बढ़ती हुई जनसंख्या और भोजन के असमान वितरण के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। भाइयों, पूरी दुनिया में इस दिवस का यही संदेश है कि किसी भी देश में कोई भी भूखा या कुपोषित ना रहे, सभी को सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन मिले। भाइयों, वर्तमान समय में कृषि और टेक्नोलॉजी में पर्याप्त प्रगति के बावजूद भी खाद्य असुरक्षा विश्व भर में लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है और ये चुनौती या समस्या मौसम या जलवायु के अप्रत्याशित बदलाव, बढ़ते तापमान, सूखा या बाढ़ के कारण उत्पन्न हो रही है और इससे बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती मांग के कारण खाद्य आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इसलिए सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। वास्तव में खाद्य सुरक्षा में किसान भाइयों की अहम भूमिका होती है। इसलिए किसान भाइयों के लिए ये जरूरी है कि जैविक खेती, फसल चक्र, कीटनाशकों की का सीमित उपयोग और आधुनिक सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है ताकि खाद्य उत्पादन में आने वाली बाधा को कम किया जा सके। भाइयों, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि खाद्यान्न का बहुत सा हिस्सा है या बहुत सा भाग लोगों में जागरूकता नहीं होने के कारण बर्बाद हो जाता है। इसलिए अनाज या भोजन की अनावश्यक बर्बादी को रोकने में हम सभी की सहभागिता बहुत जरूरी है। इस प्रकार भाइयों, हमने बात की है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस से जुड़े कुछ खास बिंदुओं पर और अब चर्चा के बाद कार्यक्रम में आगे हम अपना रुख मनोरंजन की ओर करते हैं और सुनते हैं पवन कुमार और साथियों से ये लोक भजन।

0: इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि
1: किसान भाई, अभी आप सुन
0: उसके
1: रहे थे पवन
0: से
1: कुमार और साथियों से लोक भजन।
0: देखिए निश्चित रूप से
1: और किसान भाई, जैसा
0: इस
1: कि
0: दौरान
1: अभी हम देख रहे हैं कि
0: हमें
1: इस
0: लोगों
1: जून
0: को
1: के
0: अपने
1: पहले सप्ताह में
0: स्वास्थ्य
1: भी
0: का ख्याल रखना
1: भीषण
0: बहुत
1: गर्मी का
0: जरूरी
1: दौर
0: है।
1: जारी है।
0: ऐसे कठिन
1: इसके साथ
0: परिस्थितियों
1: ही
0: में हमें
1: मानसून
0: स्वस्थ
1: आने के पहले
0: जीवन बनाए रखना
1: यानी
0: है।
1: प्री मानसून में
0: हमें अपने
1: बीच बीच
0: बच्चों
1: में
0: को
1: बारिश के साथ
0: अपने
1: ओले भी गिरे थे।
0: बूस्टर डोज दिया है,
1: अभी भी
0: प्लीज करें टीकाकरण। ये
1: कभी
0: अपने
1: कभी
0: परिवार के
1: बादल,
0: मेंबर्स की
1: कभी
0: जिंदगी
1: उमस,
0: भी है और यहाँ तक कि
1: कभी
0: दुनिया की
1: तेज
0: भी।
1: गर्मी,
0: इसलिए देश
1: कभी
0: को
1: तेज हवाओं के
0: जरूर
1: साथ
0: इस
1: बारिश
0: समय
1: जैसे
0: याद
1: हालात
0: आया
1: दिखाई
0: जब
1: देते हैं।
0: कोरोना वैक्सीनेशन का
1: ऐसी स्थिति में किसान भाई,

इन कृषि कार्यों में खेत की सफाई सबसे पहले जरूरी है। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो खेत की गहरी जुताई और मिट्टी का परीक्षण करवाने का कार्य भी इस समय करना बहुत उपयुक्त रहेगा। किसान भाइयों, यहाँ हम बात करने जा रहे हैं मिट्टी परीक्षण के विषय में। आप भी जानते हैं कि मिट्टी की उर्वरता और पोषक तत्वों का सही मूल्यांकन करने से फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, इसलिए किसान भाइयों को अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कराना आवश्यक होता है। भाइयों, मिट्टी परीक्षण से ये समझने में मदद मिलती है कि मिट्टी में पहले से कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं और कौन से पोषक तत्व की कमी मिट्टी में दिखाई दे रही है। किसान भाइयों, आप भी जानते हैं कि पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास वगैरह। इन सभी तत्वों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने से ही उपयुक्त पैदावार लिया जा सकता है। यदि हम मिट्टी में उपयुक्त या उपलब्ध पोषक तत्वों को जांचे बगैर खाद या उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उत्पादन सही तरीके से प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए मिट्टी का परीक्षण करवाकर हम पोषक तत्व की उपलब्धता या कमी की मात्रा, पीएच वैल्यू आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और उसके बाद यदि किसी पोषक तत्व की कमी पता चलती है तब कृषि विशेषज्ञों की राय लेकर उर्वरक या खाद की सुझाई गई मात्रा को खेत में डालकर उस तत्व की पूर्ति कर सकते हैं। ऐसा करने से उर्वरकों का सार्थक उपयोग होने के साथ साथ फसल उत्पादन को भी बेहतर हम कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का उपयोग करने से हम मिट्टी में उर्वरक की संतुलित मात्रा देकर आर्थिक बचत करने के साथ साथ फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, ये थी एक छोटी सी कृषि चर्चा जिसमें हमने बात की है मिट्टी परीक्षण की आवश्यकता पर। और अब कृषि चर्चा के बाद आइए सुनते हैं अविराम बारे और साथियों से ये लोक भजन।

0: मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में. शुक्रिया.
1: इन स्पेशल सीरीज 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट.
2: किसान भाई अभी आप सुन रहे थे अभिराम बारे और साथियों से लोक भजन. और किसान भाई आइए आप सुनते हैं जैविक खेती के महत्व और उसके फायदे पर श्री सौरभ आर्य से की गई है बातचीत. किसान भाई आइए मुलाकात करते हैं हमारे बीच के श्री सौरभ आर्य जी से. और सौरभ आर्य जी से हम जानेंगे कि जैविक खाद की क्या उपयोगिता है और आज के परिवेश में जैविक खाद को क्यों अपनाना जरूरी है, किस प्रकार से उसको अपना सकते हैं और खेती में किस प्रकार से लाभ मिलेगा. तो विस्तृत जानकारी ले रहे हैं हम जैविक खाद पर. तो सौरभ आर्य जी आपका हमारे कार्यक्रम किसान वाणी में बहुत बहुत स्वागत है.
3: धन्यवाद.
2: नमस्कार दोस्तों. तो जैसे आप काफी दिन से जैविक खाद के विषय को लेकर आप काम कर रहे हैं और जैविक खाद में भी बहुत सारी बातें होती है. जैविक खाद में जो आम प्रचलन में है गोबर खाद की बात होती है, कोई कचरा से बनाते हैं वो कंपोस्ट खाद की बात होती है. तो आप जैविक खाद में विशेष रूप से किस खाद की आप बात करना चाह रहे हैं?
3: सर मैं केचुआ खाद की बात आज करूंगा क्योंकि केचुआ खाद जो है ये हमारे केचुए के माध्यम से जो कंपोस्ट होके जो खाद बनता है उसको केचुआ खाद कहते हैं. और केचुआ खाद हमारा बहुत ही उपयोगी है और केचुआ किसानों का बहुत बड़ा मित्र है. क्या है कि केचुआ जो है ज़मीन को भुरभुरी करता है और मिट्टी को ऊपर नीचे करता है जिससे पानी का जो स्रोत है वो ज़मीन के अंदर तक जाता है और ज़मीन के अंदर जो पोषक तत्व है वो पौधों को बहुत आसानी से मिलते हैं. जितना पानी अंदर जाएगा उतना अच्छा पौधों को ग्रोथ मिलेगी. तो जैविक खाद जो है वो किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है. और अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा हम रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बहुत कम हो रही है. उत्पादन तो हम बहुत अच्छा ले रहे हैं पर कहीं ना कहीं ज़मीन बंजर होते जा रही है. आज देखे पंजाब हरियाणा में जो लोगों ने बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग किया है और उनकी जो ज़मीनें हैं उनकी उर्वरक क्षमता बहुत तेज़ी से कम हुई है. तो मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना वापस जैविक खाद प्राकृतिक खाद का प्रयोग करें जिससे कि हमारा ज़मीन की उर्वरक क्षमता कम ना हो.
2: अच्छा सौरभ जी यहाँ पर एक बात करना चाह रहे थे कि जो हरित क्रांति जो पुराने समय में आई थी 1965 के लगभग में, तो हरित क्रांति के पहले जो किसान भाई थे वो तो परंपरागत खेती करते थे और गोबर खाद का या जैविक खाद का उपयोग करते थे, मगर जो रासायनिक खाद का जो प्रचलन बढ़ा है तो किसान भाई उससे कहीं दूर नहीं हो पा रहे हैं. वो रासायनिक खाद के मतलब आदि हो गए, उनको ये मालूम हो गया कि उत्पादन हमको मिलेगा खेती से, उत्पादन रासायनिक खाद से ही मिलेगा, ऐसा उनके मतलब

0: जहन में है और इस प्रकार से उसका उपयोग करते चले आ रहे हैं। तो जो जैविक खाद जो पहले चलता था और अभी जो नए प्रणाली से नए तरीके से जो जैविक वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं या जैविक खाद बना रहे हैं, तो जैविक खाद अभी का कैसा है और पहले का कैसा था, उसमें क्या अंतर?
1: सर, जैविक खाद हमारे जो बुजुर्ग थे जो किसान थे वो शुरुआत से हम प्राकृतिक खेती किया करते थे। एक समय भारत में ऐसा आया कि जहाँ आबादी बड़ी तेजी से बढ़ी और उत्पादन हमारा कम था, उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने लोगों से कहा भी कि हम एक दिन का उपवास रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भोजन कर सके। तो ऐसी स्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो गई थी कि कहीं ना कहीं हमको उत्पादन बढ़ाना था, जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमको रासायनिक खाद का प्रयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए करना पड़ेगा, मगर थोड़ी मात्रा में हमको करना चाहिए। तो वहाँ से हमारा हरित क्रांति का जन्म हुआ और लोगों ने वहाँ से रासायनिक खेती को बढ़ावा देना चालू किया। तो ये दौर फिर बढ़ते बढ़ते आज ये स्थिति हुई कि जहाँ थोड़ा हमको उपयोग करना था हम बहुत ज़्यादा उपयोग करने लगे, जिससे हमने उत्पादन तो बहुत अच्छा कर लिया मगर उसकी जो गुणवत्ता थी वो ख़त्म होते जा रही है। और आज हम देख रहे हैं कि कैंसर जैसी स्थिति हमारे इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, छोटे छोटे बच्चों में आज बीमारियां पहुंच रही है जो कि एक ज़्यादा उम्र के बाद होनी थी, कैंसर अटैक, शुगर बीपी, हाई शुगर, ये सारी चीज़ें पहुँच रही है। तो इसका कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा कारण है वो हमारे खान पान से ही होता है। आज हम देखें तो पूरे दुनिया का हम राजधानी बन चुके हैं कैंसर के मामले में, तो हमको जैविक पे वापस लौटना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं लौटेंगे तो करीब 85% हमारी आबादी कैंसर ग्रसित हो सकती है, तो जैविक का आना हमारा बहुत ज़रूरी है।
0: सौरभ भाई, यहाँ पर एक बात पूछना चाह रहे थे कि जो जैविक खाद किसान भाई आज के समय भी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए तो गोबर की आवश्यकता होगी या पशुधन ज़्यादा उनको पालना पड़ेगा, पशुधन रखना पड़ेगा। पशुधन बाजार में तो बहुत दिखते हैं मगर पशुधन किसानों के खेत में कम हो गए, तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए पशुधन भी जरूरी है?
1: सर, अभी क्या है कि आज के जो हमारे लोग हैं वो थोड़े से प्रोफेशनल हो गए हैं और जो हमारी गाय है आज उतना दूध नहीं दे पाती है, एक सीमित दूध ही वो दे पाती है। तो कहीं ना कहीं गाय रखने में जो खर्च हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से लोग गौपालन थोड़ा सा कम कर रहे हैं। मगर जैसे जैसे हम जैविक खाद का प्रयोग करेंगे, गोबर की जब वैल्यू बढ़ेगी, उसका जब रेट दिखेगा हमें, तो लोग भी जो है गायों को पालेंगे और गाय से जो गोबर आ रहा है उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो उसको रखेंगे उसको। और क्या है कि जैसे हम जैविक खाद का जब हम प्रयोग करते हैं केचुआ खाद का, तो उसमें गोबर बड़ी मात्रा में हम यूज़ करते हैं और उससे जो केचुआ खाद बनता है उसका जैसे प्रचलन बढ़ेगा तो गोबर की डिमांड बढ़ेगी और लोग जो है गायों को रखना चालू करेंगे और उनको उससे लाभ दिखेगा कि गोबर से भी बहुत अच्छा उनको फ़ायदा पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं तेज़ी से लोग गाय को पालना भी शुरू करेंगे और उसको ये नहीं सोचेंगे कि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो वैल्यू बढ़ाने की बात है, आज गोबर का जैसी वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे लोग इसके तरफ आकर्षित होंगे। और आज जो हम देख रहे हैं कि सड़कों पे गोबर पड़ा है क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू जब बढ़ेगी तो गायों के लिए भी बहुत अच्छा ये है कि आज हमारी गाय कचरे खानों में जा रही है, तो उसकी वैल्यू ना होने के कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। तो वैल्यू सर जैसे हमारी बढ़ेगी गोबर की, तो ये गाय भी हमारी सुरक्षित होगी और गोबर से भी लोग बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे।
0: और सौरभ जी, जैसा कि अभी अपन देखते हैं कि जो जैविक खाद में जो केचुआ की हम बात कर रहे हैं, तो केचुआ तो प्राकृतिक रूप से खेतों में पाया जाता था पहले, और अब जो नए तरीके में जो केचुए को पालन हो रहा है या अब केचुए से आप जो कंपोस्ट बना रहे हैं, तो इसमें क्या सुधार आया, क्या नया आया अभी फिलहाल में?
1: सर, हमारा जो इंडियन केचुआ जो है वो क्या है कि गोबर भी खाता है, मिट्टी भी खाता है, और पहले हमारे खेतों में या हमारे घर के आसपास हमको बहुत मात्रा में केचुआ दिखा करता था क्योंकि उतना ज़्यादा जो वातावरण था वो इतना दूषित नहीं था। मगर जैसे जैसे हमने रासायनिक फर्टिलाइज़र का जो प्रयोग किया है खेतों में, उस वजह से ज़मीन बहुत ज़्यादा जहरीली हो चुकी है और जो केचुआ है वो जैसी ज़मीन में हमारे चलता है तो कहीं ना कहीं उस रासायनिक के प्रभाव के कारण वो मर जाता है। तो इस वजह से आज हम हमारे खेतों में केचुआ नहीं देख पा रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं बहुत

0: बड़ा कारण यह है कि जो हम इस तरह के जहरीले जो रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का जो यूज़ कर रहे हैं, उस वजह से आज हमारे खेतों में केंचुआ नहीं दिख रहा हमको। तो इसका बहुत बड़ा जो एक चक्र था वो कहीं ना कहीं रासायनिक के यूज़ के कारण वो टूट रहा है, क्योंकि जो केंचुआ है वो किसान का मित्र है, वो ज़मीन को भुरभुरी करता है और कल्टीवेटर का काम करता हमारा केंचुआ, और जिससे कि कम लागत लगती है पानी में भी हमारी। आज क्या हो रहा है कि कीचड़ ना होने के कारण जमीन जो है थोड़ी सी बट्ठर सी हो रही है और उसमें पानी ज्यादा लग रहा है हमको। तो ये पूरा प्रकृति का चक्र इस रासायनिक खाद से बिगड़ रहा है। और आज करीब पूरी दुनिया में बात करें तो 60,000 प्रजातियाँ होती है, तो हमारा जो इंडियन केंचुआ है उसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम है। कुछ बाहर के जो बीट है वो बहुत अच्छा कंपोस्ट करते हैं, हम एक ऑस्ट्रेलियन बीट के केंचुए का यूज़ करते हैं, जो गोबर ही खाता है और बड़ी तेज़ी से कंपोस्ट करता है उसको, और 90 दिन की हमारी प्रोसेस में केंचुआ खाद तैयार हो जाता है।
1: जैसा कि आपने बताया कि अभी जो केंचुए आ रहे हैं ये थोड़े ऑस्ट्रेलियन बीट के आ रहे हैं या जो एडवांस जो आजकल आ रहे हैं जिससे ग्रोथ उनकी ज़्यादा होती है, अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब केंचुआ खाद भी डाल दिया, उससे जैविक कंपोस्ट बनाते हैं किसान भाई, उसके साथ साथ कहीं कीटनाशकों का प्रयोग भी तो करते हैं, तो हम फसल में जैविक खाद का उपयोग करें फिर कीटनाशकों का उपयोग करें तो फिर भी तो नुकसान पहुंचेगा ना किसान भाई।
0: असल में क्या है कि हमारे जो जमीन है उसमें ऐसे जीवाणु भी होते हैं जो अलग अलग तरह के कीटाणु कीट जो होते हैं जो हमारी फसल को नुकसान करते हैं, उसके लिए भी ऐसे कीटाणु मतलब जीवाणु होते थे जो उनको खा जाया करते थे। मगर दिक्कत क्या हुई कि ये रासायनिक खाद की वजह से वो जो जीवाणु है वो भी खत्म हो रहे हैं, तो उस वजह से इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और वो रासायनिक खाद से वो मर रहे हैं। नहीं तो पुराने समय में भी ये चीज़ें हुआ करती थी, मगर उसमें जो कीटाणु होते थे जो जीवाणु होते थे वो नए जो भी इल्लियाँ हो रही है या किसी भी प्रकार के नए जो जीव जंतु बन रहे हैं उसको खा लिया करते थे, पर ये रासायनिक खाद के कारण वो भी मर रहा है। उसमें एक तो केंचुआ भी हमारा मर रहा है और ऐसे जो हमारे जीवाणु जो थे जो अलग अलग तरह के नई जो बीमारियां लगती थी वो उसको खा जाया करते थे, तो ये इससे बहुत बड़ा ये प्रभाव पड़ा है। और रासायनिक खाद के प्रयोग से पूरा वातावरण का जो एक जो चक्र था वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। आज इस तरह के केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं कि साइनाइड की तरह के वो रासायनिक खाद है कि एक बार जब हमने छिड़काव किया तो वापिस हमारे जब तक पूरी इल्लियाँ मर रही है, तो कहीं ना कहीं इतने खतरनाक जो हम रासायनिक फर्टिलाइजर जो यूज़ कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं जब उससे जो उत्पन्न अनाज जो है वो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा घातक है। इसी कारण से आज हम कैंसर जैसी बीमारी बहुत बड़ी मात्रा में देख रहे हैं। आज हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो वहाँ एक ट्रेन चलती है बठिंडा से पंजाब, जिसका नाम ही कैंसर ट्रेन है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है जब से ये ठेका पद्धति चालू हुई है। सबसे पहले हमारा हरियाणा पंजाब से चालू हुई थी, तो जब ठेके में किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को जमीन दी है तो फिर वो उसको उत्पादन लेने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा यूरिया और रासायनिक खाद का प्रयोग करता है, जिससे वो ये नहीं देख रहा है कि ज़मीन पे कुछ असर हो रहा है उसका, या इतनी ज़्यादा मात्रा में डालने से उसमें अनाज जो हमारा बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है या उसमें बहुत सारा ऐसे रासायन मिल रहे हैं जिसकी वजह से ये पूरा चक्र हमारा बिगड़ रहा है।
1: सौरभ आर्य जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई इसके बारे में। और एक प्रश्न, जैसे किसान भाई जो रासायनिक खाद का उपयोग कर ही रहे हैं ऑलरेडी प्रैक्टिस में आ गए हैं वो करते हैं, अब उसको वापस वो जैविक खाद में करना चाहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये अपने आप में भय रहेगा कि उसका लाभ हमको मिलेगा कि नहीं फसल को, या वो रासायनिक में से उभर पाएंगे कि नहीं, तो जैविक खाद डालने से उसको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये किसान भाई इसमें आशंकित है।
0: सर, हमारी जो आज की जो आबादी है इंडिया की वो 50% से अधिक लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, और हमारी जो GDP है उसका करीब 13% भाग जो है वो किसानी से जुड़ा हुआ है, 45% लोग कृषि से जुड़े हैं हमारे, तो इतना बड़ा वर्ग इस क्षेत्र में काम कर रहा है और हमारा जो देश है वो कहने के कृषि प्रधान देश है। अब हम जितना ज़्यादा प्रयोग रासायनिक खाद का ऐसे ऐसे जहरीले फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, तो जब हमारी ज़मीन जो है आज तो हमको बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है, आने वाले समय में अगर उसका उत्पादन कम हुआ या हमारी ज़मीन बंजर हो गई उससे उत्पादन ही नहीं हो रहा है, तो ये ज़्यादा ठीक है कि थोड़ा कम हमारा

0: उत्पादन हो रहा वो ज़्यादा ठीक है।
1: सही बात
0: और असल में क्या है कि एक ऐसे हमारे दिमाग में ऐसी चीजें बैठा दिया गया है कि हम अगर केंचुआ खाद, गोबर खाद या प्राकृतिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे उत्पादन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, पहले भी ये प्रयोग हुआ करता था, लोग अच्छी फसलें लिया करते थे, मगर इसमें उत्पादन हो रहा है, मगर हमारे यहाँ लागत और खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। आज हमको, आज किसान जो अपने खेत में जो उसको खर्चे आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और उसकी ज़मीन भी उर्वरक क्षमता कम हो रही है। तो जैविक खाद का प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आज गवर्नमेंट भी इसमें बहुत अच्छा सहयोग कर रही है, तो एकदम से हम कम तो नहीं कर सकते, मगर जैसे हमारे पास 10 एकड़ ज़मीन है तो 2-3 एकड़ में हम प्रयोग करना चालू करें तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारी जो ज़मीनें हैं उसमें उत्पादन होना कम होगा मगर अच्छा होगा, जिसके रेट भी आज बहुत अच्छे मिलते हैं। अभी बैतूल में ही एक व्यक्ति है जो जैविक गुड़ होता है उनके पास में, तो करीब 100 रुपये किलो तक वो बेचते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जैविक खाद से जो निर्मित अनाज या हमारी सब्जियां हैं उसके रेट हमें बहुत अच्छे मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं लागत भी कम हो रही है हमारी और हमको उस पर एक अच्छी आमदनी भी हो रही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा प्रयोग हम करना चालू करें, क्योंकि शुरुआत थोड़े से स्तर पे होगी मगर जब हमको उसका फायदा दिखेगा तो हम धीरे धीरे, हमारा 3 एकड़ या 2 एकड़ में हमने चालू किया था तो ऐसे हम बढ़ाते हुए चलेंगे, तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि वो कहीं 5 एकड़ पे पहुँचेगी, 6 एकड़ पे पहुँचेगी चीज़ें। और ऐसा अगर हर किसान थोड़ा थोड़ा प्रयोग करना चालू करे तो पूरे देश में एक बहुत अच्छा माहौल बनेगा और एक जैविक की बहुत अच्छी शुरुआत होगी। तो ये बिल्कुल संभव है, किया जा सकता है, हमको हमारी मानसिकता से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा और ये संभव है, बहुत अच्छा हम प्रयास करेंगे तो हो सकता है।
1: तो सौरभ आर्य जी, आप अभी फिलहाल में किस प्रकार से जैविक खाद है या वर्मी कंपोस्ट में किस प्रकार से काम कर रहे हैं, किस प्रकार से लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं?
0: हम इसमें एक बहुत अच्छे किस्म का केंचुए का प्रयोग करते हैं जो ऑस्ट्रेलियन बीट का होता है, जो बड़ी तेजी से कंपोस्ट करके हमारा केंचुआ खाद बनाता है। वो अपने खेतों में इसका प्रयोग करें, जैसे आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है तो भैया आप 1 एकड़ 2 एकड़ में इसकी शुरुआत करें, इसमें आपके लिए घर के लिए आप प्रयोग करें। तो जब आप 1-2 एकड़ में अपने घर के लिए ही प्रयास करें कि इसमें मैं अपने घर के लिए अनाज उगाऊंगा या सब्जियां उगाऊंगा, तो कहीं ना कहीं ये हमारा जैविक का भी काम होगा। और इस खाद में बहुत सारा ऐसे तत्व है जो कि पौधों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जैसे इसमें नाइट्रोजन होता है, अपना फास्फोरस होता है, पोटास होता है, इसकी बहुत अच्छी मात्रा होती है जिससे कि पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ करता है, और पौधा जितना अच्छा ग्रोथ करेगा उतना अच्छा उसका रिजल्ट निकलेगा। और इसमें पानी की लागत भी कम लगती है और इस खाद में बदबू नहीं आती, ये खाद कभी ख़राब नहीं होता है। क्या है कि आज हम अगर जैविक खाद की बात करें तो आज पूरे इंडिया लेवल पे आज इसका उत्पादन बहुत कम है। जिस चीज़ का उत्पादन ही कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो पहला तो हमको उसका उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये चीज़ पहुँच सके। अभी क्या है कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है तो उतना खाद ही नहीं उत्पादन हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं पहले हमको उत्पादन बहुत बड़े स्तर पे बढ़ाना पड़ेगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसका प्रयोग करें तो उनको उपलब्ध हो पाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सर, धरती बचेगी तो हम बचेंगे, आने वाला समय जैविक का ही है, हमको जैविक पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इस पे अगर वापस नहीं लौटे तो हमारी ज़मीनें की उर्वरक क्षमता बहुत तेज़ी से कम होते जा रही है। आने वाले समय में उत्पादन की अगर हम बात करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। हम आज संभल सकते हैं, हम उदाहरण ले सकते हैं हरियाणा पंजाब से, आज बीमारी का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आज हमारी औसतन आयु 60 वर्ष रह चुकी है, और इसी प्रकार अगर हमारा ये चक्र चलता रहा तो आने वाली हम पीढ़ी को क्या दे सकते हैं। आज हमारी औसतन आयु घटते जा रही है, तो अगर हम जैविक का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हम हमारी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा समय दे सकते हैं। अगर इसी तरह से हमारा रासायनिक खाद का प्रयोग बढ़ता रहा तो आने वाली हम पीढ़ी को बहुत सारी बीमारी देने वाले हैं। तो क्या हम आने वाली पीढ़ी को बीमारी देना चाहते हैं कि अच्छा एक स्वास्थ्य देना चाहते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा।
1: तो सौरभ आर्य जी, आपने इतना अमूल्य समय आकाशवाणी परिवार को दिया है, किसानवाणी को दिया है और जैविक खाद पर अपनी बात को साझा की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी।
2: किसान भाई, अभी आप सुन रहे थे जैविक खाद के महत्व और उसके फायदे पर श्री सौरभ आर्य से की गई बातचीत, और अब इसी के साथ संपन्न

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज चुके हैं और लीजिए अब हम आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम शीर्षक संगीत। और श्रोताओं, आपके अपने इस प्रोग्राम में आज हमने आपके लिए चुना है बहुत ही खूबसूरत सा शीर्षक। शीर्षक का नाम है सजना साजन। लीजिए अब हम आपको सुनवाते हैं इस खूबसूरत से शीर्षक पर आधारित ये प्यारा सा गीत।

फिल्म का नाम है सौदागर, आवाज आशा भोसले की, गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शीर्षक संगीत और आज का शीर्षक है सजना या साजन।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शीर्षक संगीत, और शीर्षक संगीत में आज हमने चुना है शीर्षक साजन। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

लीजिए श्रोताओ, अब हम आप तक पहुंचाते हैं फिल्म गजल से मोहम्मद रफी की आवाज में साहिर का लिखा हुआ गाना मदन मोहन की धुन पर।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शीर्षक संगीत। और शीर्षक संगीत में अभी आपने सुना फिल्म साया से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में, आनंद बख्शी की लिखी हुई रचना एम करीन के धुन पर। और लीजिए अब हम आप तक पहुंचाते हैं फिल्म कुदरत से किशोर कुमार की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम सरसक संगीत, और सरसक संगीत में आज हमने आपके लिए चुना था बेहद ही खूबसूरत सा शीर्षक, सजना साजन। यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। रात्रि के 8:30 हो चुके हैं और लीजिए अब हम आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम साज और आवाज। श्रोताओं, हम आप तक एक बेहद ही खूबसूरत सा साज पहुंचा रहे हैं और इस साज को आप सुनकर हम यहाँ ऐसे अनुमान लगाते हैं कि आप इस साज का अर्थ भावार्थ निकालकर किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, क्योंकि गीत हो या संगीत हो, साज हो या आवाज हो, ये हृदय सागर के मल को परिष्कृत करती है। तो लीजिए सुनते हैं ये साज़।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ये बेहद ही प्यारा सा साज। और दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि कोई भी साज हो या आवाज हो, गीत हो या संगीत हो, ये सब हमारी जिंदगी के हम सफर होते हैं। आइए सुनते हैं इस साज की ये आवाज़।

शुदा फिल्म दिल के इस बेहद ही खूबसूरत से गीत के साथ ही कार्यक्रम साज और आवाज अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो सुनते रहिए, जुड़े रहिए।

0: भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्चस्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियों से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सहायता स्कीम के टेलीलॉ नए बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षा

0: तो समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलजमरू मध्य में ईरान के दो ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें डालकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेक को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
0: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंजेवा ने माया चालेंस्का को हरा कर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331048।

0: व्हाट्सएप नंबर 9289004044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुनहरी धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोले डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को।

0: रखा अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प लोग थे वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, रात में एक शार्प लोग शुरू होता है, मैं एकदम शार्प लगती है कि अपने इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम का। तो जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा ठीक एक शार्प लोग, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल शरीर होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं है। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो वो ये लगता कि हमें हमको जो जरा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसी अभिनेत्री की बातें जिनकी शोखी, चंचलता और मासूमियत के

अपूर्वा राव मुंबई में ही पैदा हुई और यहीं पर पली बढ़ी। आरंभिक शिक्षा दीक्षा अंधेरी के एक स्कूल में हुई और फिर साइकोलॉजी में कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुंबई के सुफाया कॉलेज में एडमिशन तो लिया, पर ये पढ़ाई अधूरी छूट गई क्योंकि अमृता राव के कदम बढ़ चले मॉडलिंग की दुनिया में। मॉडलिंग की चमकीली दुनिया अमृता राव के लिए थी या नहीं थी ये उन्हें भी नहीं पता था। परिवार बहुत ही पारंपरिक कोंकणी भाषा बोलने वाला परिवार था और यहाँ परंपराओं और संस्कृति का सम्मान किया जाता था। अमृता राव ने अपने परिवार की इस परंपरा का सम्मान किया और मॉडलिंग की दुनिया में हौले हौले अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। शुरुआती तौर पर उन्हें कई विज्ञापनों में काम मिला और टेलीविजन पर वो नजर आने लगी, पर अमृता राव को ख्याति तब मिली जब जानी मानी पॉप गायिका अलीशा चिनॉय के एक एल्बम के गाने वो प्यार मेरा में वो नजर आई और बस ये लगा कि शायद रुपहले पर्दे पर नजर आना ही अमृता राव का प्यार है। इंतजार था फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ाने का और ये मौका साल 2002 में आया। निर्देशक राज कंवर ने बनाई फिल्म अब के बरस। इस फिल्म में आर्या बब्बर भी रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रख रहे थे जो जाने माने अभिनेता राज बब्बर के बेटे हैं। तो आर्या बब्बर और अमृता राव के अभिनय वाली फिल्म अब के बरस आई जो एक बहुत ही अलग तरह की कहानी पर बनी फिल्म थी। इस फिल्म में अमृता राव ने अमेरिका से लौटी एक लड़की की भूमिका निभाई और लोगों की नजर

इसके बाद आई राजकुमार संतोषी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। इस फिल्म में अजय देवगन ने भगत सिंह का किरदार निभाया था और अमृता राव पर आई थी जिम्मेदारी भगत सिंह की प्रेमिका मन्ने वाली का किरदार निभाने की, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और चारों तरफ

2003 कैन घोष ने प्यार मोहब्बत की चाशनी में डूबी एक फिल्म बनाई इश्क विश्क। इस फिल्म के जरिए एक चॉकलेटी सितारे ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। जाने माने अभिनेता पंकज कपूर के बेटे शाहिद कपूर की ये पहली फिल्म

साल 2004 आया और लाया मस्ती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल बेटा और राजा जैसी फिल्में बनाने वाले जाने माने कमर्शियल निर्देशक इंद्र कुमार की फिल्म की। साल 2004 में आई फिल्मी सितारों से सजी हुई फिल्म मस्ती। इस फिल्म के कलाकार थे अजय देवगन, लारा दत्ता, रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफ्ताब शिवदासानी, अमृता राव, तारा शर्मा और जेनेलिया देशमुख। फिल्म मस्ती में अमृता राव एक चंचल शोख लड़की की भूमिका में थी। इसके बाद फराह खान ने अमृता राव को कास्ट किया जायद खान के अगेंस्ट। शाहरुख खान और सुष्मिता सेन के अभिनय वाली ये चर्चित फिल्म थी मैं हूं ना। और इस फिल्म में अमृता राव पर फिल्माया गया था।

जाने माने निर्देशक मिलन लुथरिया ने अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और अक्षय खन्ना जैसे अभिनेताओं को लेकर एक फिल्म बनाई दीवार। जाहिर है कि लोगों को यश चोपड़ा की दीवार जरूर याद आई होगी, पर ये नए जमाने की दीवार थी। इसमें भी अमिताभ बच्चन थे, पर कहानी बिल्कुल अलग थी और इस फिल्म में भी थी अमृता राव।

पांच में आई फिल्म वाह लाइफ हो तो ऐसी, निर्देशक थे महेश मांजरेकर। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे शाहिद कपूर और संजय दत्त। फिल्म सरफरोश बनाने वाले निर्देशक जॉन मैथ्यू माथन लेकर आए फिल्म शिखर। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे अजय देवगन, बिपाशा बसु और शाहिद कपूर।

साल 2006, एक बार फिर इंद्र कुमार लेकर आए फिल्म प्यारे मोहन, जो हॉलीवुड की आर्थर मिलर की निर्देशित फिल्म सी नो इविल हियर नो इविल पर आधारित थी। इस फिल्म में फरदीन खान और विवेक ओबेरॉय थे, ईशा देओल और

अमृता राव की यात्रा ने एक कमाल का मोड़ लिया और वो चली गई तेलुगु सिनेमा की तरफ। उन्होंने महेश बाबू के साथ एक फिल्म की अतिथि। इस फिल्म में महेश बाबू और अमृता राव की जोड़ी की काफी प्रशंसा हुई और फिल्म खूब चली भी। साल 2008 फिल्म आई माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस और इसी बरस श्याम बेनेगल की एक फिल्म में अमृता राव ने काम किया जिसका नाम था वेलकम टू सज्जनपुर।

Two.

बबलिका राव एक सादगी और गरिमा वाली अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया, इसलिए उन्होंने ज्यादा फिल्में नहीं की और रुपहले पर्दे पर उनकी पारी भी बहुत लंबी नहीं रही, पर उनके चाहने वाले उनकी फिल्मों का इंतजार करते रहे। इस बीच अमृता राव फिल्म शौर्य में बतौर अतिथि कलाकार नजर आईं। 2009 में हरमन बवेजा के साथ वो नजर आईं फिल्म विक्ट्री में। इसी बरस आई नीरज वोरा की फिल्म शॉर्टकट। इसके प्रोड्यूसर थे अनिल कपूर।

0: मिल जाएगी।
1: साल 2011 में राक्षी प्रोडक्शंस की एक और फिल्म अमृता राव ने की, जिसका नाम था लव यू मिस्टर कलाकार। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे तुषार।

बाद कुछ फिल्मों में अमृता राव ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई, जैसे हे बेबी, लाइफ पार्टनर और जाने कहां से आई है। साल 2013 में अरशद वारसी के साथ वो नजर आई सुभाष कपूर की फिल्म जॉली एलएलबी में। फिर आई अनिल शर्मा की फिल्म सिंह साब द ग्रेट, जिसमें थे सनी देओल। साल 2013 प्रकाश झा की फिल्मी सितारों से सजी फिल्म सत्याग्रह में नजर आई अमृता राव। अमृता राव ने कुछ टेलीविजन सीरियल भी किए हैं, जैसे मेरी आवाज ही पहचान है। साल 2019 में अभिजीत भंसे की फिल्म ठाकरे में अमृता राव ने मीना ताई ठाकरे की भूमिका निभाई थी। अमृता राव ने आरजे अनमोल से विवाह

यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 10 बज चुके हैं और लीजिए अब हम आप तक पहुंचाते हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से। और एक ही फिल्म में आज हमने आपके लिए चुनी है फिल्म गाइड।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म गाइड से ये खूबसूरत से गीत। फिल्म गाइड के इस खूबसूरत से गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:25 हो चुके हैं और लीजिए अब हम आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम सरकार के 12 वर्ष।
1: This is Akashvani. In the special series, 12 years of the Modi government, now we bring you an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer is Niharika Bhuvania.
2: Ye Akashvani hai. विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
3: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हुए भारत सरकार के 12 साल के कार्यकाल की, और इस कार्यकाल के दौरान हर उस सफलता की जिसने लगातार भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज की ये चर्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत की वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय आपने हमारे लिए निकाला, हम इसके आभारी हैं।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: और सबसे पहले बात करते हैं कि 12 साल के इस कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने किस तरह के बदलाव, किस तरह के परिवर्तन देखे, और इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?
4: देखिए, किसी भी देश के नागरिक को अगर समय से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल जाती है तो उस नागरिक की क्षमता और उसके सामर्थ्य का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो सकता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही होना चाहिए, और भारत आज एक बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमने अपनी सरकार के 12 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन 2047 तक भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो, ये हमारा सपना है।

0: और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है एक स्वस्थ भारत। और भारत की आबादी आप जानते हैं 146 करोड़ है
1: जी।
0: 146 करोड़ नागरिकों को स्वस्थ रखना ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये हमारा संकल्प, यानी हर नागरिक को हमें एक्सेसिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है। तो हमने अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव किया है, और मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने स्वास्थ्य को आज केवल बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो सबसे जरूरी कदम है कि हम बीमारियों की रोकथाम कर सकें, और इसीलिए आज अगर आप देखें तो हमारी जो सबसे प्राथमिक इकाई है, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें आज हम जो गैर संचारी रोग हैं, जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, इसकी हम जांच कर रहे हैं ताकि समय रहते पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सके। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से मोटापे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, या आम जनमानस को 10% तेल कम करने की अपील करते हैं, और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ईट राइट इंडिया के तहत कहता है कि आप स्वच्छ खाएं, पौष्टिक खाएं, संतुलित खाएं, तेल, चीनी, नमक इन सब का सेवन कम करें, तो ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बढ़े हुए कदम है। तो भारत आज इस पद्धति पर चल चुका है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ढांचा प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों स्तर पे हम इसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं। कैसे एक आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला खर्च कम हो, इसकी चिंता हमने की है, और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आज कम हुए हैं, जिसमें आज मैं जन औषधि केंद्रों की चर्चा भी करूंगी, अमृत फार्मेसी का उल्लेख भी करूंगी। आज इन केंद्रों पर जो दवाएं हैं वो बाजार मूल्य से 50-90% तक कम दामों पर देश के आम नागरिक को उपलब्ध हैं। आप एक जिला अस्पताल में जाकर देखेंगी तो राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत एक आम आदमी को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। हम आज बड़े पैमाने पर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से आज दूर दराज के गांव में बैठे हुए एक सामान्य नागरिक को एक विशेषज्ञ चिकित्सक का निशुल्क परामर्श मिल रहा है। मेडिकल ड्रोन्स जैसे जो हमारे प्रयोग हैं, आज दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में क्रांति ला रहे हैं। तो भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य इन 12 वर्षों में बहुत तेजी से बदल चुका है।
1: अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, शायद हम उसी राह पर चल रहे हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हमारे ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं आज बखूबी काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं और आयुष्मान डिजिटल मिशन की अब बात करते हैं। आयुष्मान भारत जो है उसे न केवल भारत बल्कि विश्व भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया गया है, तो आपके हिसाब से इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, पहली बात, और दूसरी बात, हर वर्ग के परिवार को इस मिशन ने, इस इनिशिएटिव ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप।
0: देखिए, भारत आज एक ऐसा देश है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में अग्रणी है, और हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मुझे कहते हो खुशी है कि भारत के हर नागरिक के लिए हम एक यूनिक डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहे हैं, जिसे हम आभा आईडी कहते हैं, और देश के अंदर आज 90 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनका हमने ये यूनिक आभा आईडी क्रिएट कर दिया है। ये उनकी एक डिजिटल पहचान है, और 100 करोड़ से ज्यादा जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो इन अकाउंट्स के साथ लिंकअप हो चुके हैं। अब एक आम नागरिक को इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है, इसको मैं एक उदाहरण लेकर समझाऊंगी। कभी भी हमें किसी डॉक्टर का परामर्श लेना है तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है, बहुत सारे उसमें दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं, हमारे लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे तमाम प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, और वो समय के साथ फोल्डर मोटा होता जाता है, बहुत सारे मेडिकल के कागजात का बंडल बन जाता है। और जीवन में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक आम नागरिक क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह उस बड़े से फोल्डर को लेकर घूमता रहता है, हर डॉक्टर के पास।
1: शायद कागज खो भी जाते हैं, हाँ, मिलते नहीं।
0: और डॉक्टर्स के लिए बड़ी कठिनाई होती है, मरीज के लिए भी कठिनाई होती है। जब हम इस डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना एक आईडी

बना लिया और उसके साथ अपने रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर दिया। अब ऐसे नागरिक को वो पूरा पुलिंदा लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो सिर्फ डॉक्टर को अपनी सहमति प्रदान करेगा। डॉक्टर उसके अकाउंट से उसके जितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं, सब कुछ उसको एक्सेस करेगा। उसके आधार पे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को समझेगा और पेशेंट को अपना परामर्श दे सकता है। ई संजीवनी का जो नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, उसमें भी एक सामान्य गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिस डॉक्टर से बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर परामर्श कर रहा है, वो भी उस डॉक्टर को बताएगा कि ये मेरा आभा आईडी है, उसे अपनी कंसेंट देगा, अपनी सहमति देगा और डॉक्टर के सामने उस पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, सुविधा हुई है। और आज हमने जो ओपीडी है उसे भी क्यूआर कोड बेस्ड बना दिया है। यानी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर आपको ओपीडी सर्विसेज लेनी है तो क्या होता था कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़ा होना पड़ता था। आज ये करने की जरूरत नहीं है, आपको स्कैन एंड शेयर की एक सुविधा दे दी गई है। आप क्यूआर कोड स्कैन करिए, सेकेंड्स में आपका जो टोकन नंबर होगा वो जेनरेट हो जाएगा और आप आसानी से डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम नागरिकों के रिकॉर्ड्स तो बना ही रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी रजिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें आम नागरिक के लिए और यहाँ तक कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स

0: जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक और टाइम सेविंग होने जा रहा है।
1: यानी कि अब कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड का खो जाना नामुमकिन हो गया है और जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सेवा हर तरीके से पहुंच पा रही है, परिपूर्ण हो पा रही है।
0: बिल्कुल।
1: और इसमें मेरा ख्याल है एआई की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आगे आने वाले समय में। तो एआई और हेल्थ केयर का आज के टाइम में, आज के दौर में क्या रोल है?
0: देखिए, आजकल हम हर जगह एक शब्द सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सामान्य व्यक्ति सोचता है कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अभी कुछ समय पहले फरवरी में हमने देखा, हमारे देश ने एक बहुत बड़ा एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट किया और दुनिया के तमाम देशों से लोग आए, बहुत सारे प्रतिभागी आए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन से लेकर हर जगह हो रहा है। लेकिन हेल्थ केयर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और भारत जैसे देश में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारे देश की आबादी 146 करोड़ है
1: जी।
0: और इतनी बड़ी आबादी में हमें ये भी देखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे दुर्गम आदिवासी दूर दराज के इलाके हैं जहां पहुंचने में बहुत कठिनाई है, जहां शायद हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या अन्य जो हमारा मेडिकल स्टाफ होता है उसकी शॉर्टेज है। और इसके साथ हमारे पास एक दोहरा भार है, यानी हमारे पास एक तरफ डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग जैसी तमाम गैर संचारी बीमारियां भी हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ टीबी, मलेरिया इस तरीके के रोग भी हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच में अगर हम कहते हैं कि हमने तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य तय कर दिया, यानी देश के हर एक नागरिक के पास किफायती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच होनी चाहिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज किए, जैसे हमने कोविड पैंडेमिक आया तो हमने कोविन का ऐप बना दिया, या आज हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं तो यूविन पोर्टल है हमारा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम उपयोग आज कर रहे हैं। तो हेल्थ का जो पूरा कॉन्टिन्यूम है, यानी आज बीमारियों की निगरानी करने से लेकर डिजीजेस के डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक, क्योर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है।
1: सर्जरीज में भी इसकी काफी
0: बिल्कुल
1: उपलब्धि है
0: और डॉक्टर्स को ये काफी हद तक मदद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल इमेजेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनको एनालाइज करने में एआई टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, अभी हमने सघन टीबी अभियान चलाया अपने देश के अंदर, 2024 में हमने दिसंबर अंत में शुरू किया स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर देश के अंदर की। उसमें हमने एआई ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरेस का उपयोग किया, उसका लाभ हमें ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो शायद समाज में छिपे रह जाते कि जिनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है लेकिन लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, हमने बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस की पहचान की। तो एआई सपोर्टेड, एआई ड्रिवन हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का आज हम उपयोग कर रहे हैं, जिससे बड़ी तेजी से हम मरीजों की स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क है ई संजीवनी, अब ई संजीवनी पे आप समझिए कि एक मरीज डॉक्टर से वर्चुअल परामर्श कर रहा है। अब अगर डॉक्टर ऐसे तमाम पेशेंट से, हर एक पेशेंट से बैठकर पूछेगा कि आप अपने ये सिम्टम बताओ, ये बताओ, तो ये एक

0: बच्चों को यह तय करना है कि इस समय हमारे पास 4-5 स्पेशलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं लाइव, तो क्या एआई की रिकमेंडेशन आती है कि पेशेंट को के लक्षण के आधार पे इस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया जाए, तो पेशेंट को तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर का समय बचता है, मरीज का समय बचता है और हमारा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा लोगों को केटर कर पाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत तेजी से उपयोग देश में हो रहा है और जिम्मेदारी के साथ हो रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है, जवाबदेही के साथ हो रहा है।
1: यानी एआई के माध्यम से आपके पास समय के बचत के अलावा सही गाइडेंस, अप्रोप्रिएट गाइडेंस भी मौजूद है जो कि हेल्थ केयर के मिशन को और आगे लेकर जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: आज जो है भारत में 1,70,000 से ज्यादा आरोग्य मंदिर मौजूद हैं, जमीनी स्तर पर ये क्या बदलाव ला रहे हैं?
0: अब इनकी संख्या बढ़ गई है, 1,82,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को कैसे बदल कर रखा जाता है ये कोई हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मॉडल को देखकर समझ सकता है। एक समय था कि हमारे देश में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थे, यहाँ पे केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज हमने ये तय किया कि बड़े अस्पतालों पर हमें भीड़ कैसे कम करनी है और एक सामान्य नागरिक को उसके घर के नजदीक ही तमाम जरूरी सेवाएं कैसे देनी है, तो इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पे आज हम 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं। यानी आज व्यक्ति को अगर ईएनटी की जांच चाहिए तो वो भी वहां मिलेगी प्रारंभिक, उसको मौखिक जांच ओरल केयर के लिए चाहिए तो वहां मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन वेलनेस की काउंसलिंग चाहिए, पोषण के संबंधित गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी ट्रॉमा केयर चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, मेंटल हेल्थ को लेकर जो प्रारंभिक एक स्क्रीनिंग होती है उसकी सुविधा भी वहां मिलेगी, और एनसीडी की स्क्रीनिंग जो आपको मैंने बताया कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 30 वर्ष की उम्र से अधिक हर व्यक्ति की निशुल्क जांच हो रही है कैंसर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए, तो ये सारी 12 सर्विसेज आज उसे मिल रही है। तो एक आम व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों के लिए किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता और बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होता है, और सुनकर आप खुश होंगे कि 540 करोड़ से ज्यादा जो फुटफॉल है वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हो चुका है। यानी लोगों का अब भरोसा भी बढ़ रहा है कि घर के नजदीक इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है, तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर ला रहे हैं।
1: जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद शुल्क जो है वो एक तनाव का कारण बन जाता है, लेकिन आज मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर उस तनाव को कम करने में भी काफी सक्षम और सफल हो रहे हैं।
0: बिल्कुल, हमारी सरकार जब आई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, देश के अंदर आम नागरिक के स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होता है, जो उसकी जेब से होने वाला खर्च है
1: जी,
0: वो जीडीपी का 64% हुआ करता था। हमने उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सरकार के खर्च को बढ़ाया, आज स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का जो खर्च है बजट का 1,06,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है, और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर, तमाम ऐसे प्रयास है जिनके कारण ये जो 64% हुआ करता था आज घटकर 39% पर आ गया है। तो बहुत बड़ी राहत जनता को उसके जेब से होने वाले खर्च पर मिली है।
1: पिछले कुछ उत्तरों में बात करते वक्त आपने टीबी और कोविड-19 का भी जिक्र किया, तो आज टीबी के केसेस को कम करने में और मृत्यु दर कम करने में हम कितने सफल रहे हैं और क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई चुनौती है जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हो?
0: देखिए, टीबी के संबंध में मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया हवा से फैलता है, एयरबॉर्न है, यानी कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है टीबी के बैक्टीरिया से तो उसके बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से, बोलने से ये जो बैक्टीरिया होता है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हवा में प्रवेश कर जाता है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति यदि उसे इनहेल कर रहे तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो टीबी में सबसे बड़ा संकट ये है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है, और भारत देश की आबादी बहुत ज्यादा है, सघन है, ऐसे में टीबी मुक्त भारत एक बहुत कठिन संकल्प है, लेकिन सरकार ने ये तय किया है कि हम टीबी की रोकथाम से लेकर टीबी की जांच से लेकर टीबी के उपचार तक

काम करेंगे और इसके लिए लगातार हम सघन अभियान भी चला रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं और जांच के जरिए बहुत सारे जो एसिम्प्टोमैटिक केसेस हैं, जो सिम्प्टोमैटिक हैं उनके साथ साथ जो बिना लक्षण वाले हैं, लक्षण वाले दोनों की पहचान भी हो रही है। टीबी की जांच के लिए हमने इसको भी अब स्ट्रेंथन किया है, सुदृढ़ किया है। राज्यों को हम टीबी की स्क्रीनिंग के लिए जो तमाम डिवाइसेस की, इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं और इसके साथ साथ टीबी में जो उपचार के लिए दवाओं की जरूरत है वो भी आज तमाम हमारे जो स्वास्थ्य

0: सहयोग पोषण से लेकर दवा से लेकर जांच तक सब कुछ निशुल्क उपलब्ध है। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो आप जांच जरूर कराएं और उपचार का लाभ उठाएं।
1: बहुत खूब। और इसी के साथ साथ कोविड-19 की भी चर्चा करते हैं। कोविड-19 एक ऐसी महामारी थी जिसने दुनिया की काया बिल्कुल बदल दी, और उसी वक्त भारत ने अपने बुनियादी ढांचों को, खासकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में, काफी मजबूत किया था। उस वक्त हमने क्या कदम उठाए थे जो आज भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो आज भी हमें इस राह पर, हमें अपने हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं?
0: देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक पूरी दुनिया के लिए एक शॉक था और पूरी दुनिया के लिए एक अहम सबक भी लेकर आया कि हमें अब अपने सिस्टम्स को, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, उन्हें रेजिलियंट बनाने की जरूरत है।
1: जी
0: यानी भविष्य की किसी भी ऐसी महामारी से, आपदा से निपटने के लिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स तैयार हों। तो भारत ने ये तय किया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम जिला स्तर पे हैं या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी लेवल पे कहीं भी जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, हम उनको फिक्सअप करेंगे। और इसके लिए हमने शुरुआत की नीचे से, यानी हमारे ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनको सुदृढ़ करते हुए हमने उसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए। ये 64,000 करोड़ का पूरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हमने किया है। और इसके तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने इसलिए बनाए कि कोई भी गंभीर रोगी है तो उसे तुरंत उसके जिले में ही ये सुविधा मिल सके इलाज की। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी सेटअप किए ताकि जांच की जो सुविधा, जिसके लिए लोग परेशान हुए कोविड के दौरान, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां ना हो। जितने भी जांच होनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं, वो सुविधा जिले में मौजूद हो। इसके साथ ही बीमारियों की निगरानी करना जरूरी है तो डिजीज के सर्वेलेंस सिस्टम्स को भी हमने सुदृढ़ किया। और एक बहुत बड़ी तैयारी हमारी वन हेल्थ मिशन के रूप में है, जहां हम ये मानते हैं कि मानव का स्वास्थ्य हो, पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय हैं जो एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरीके से ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसको मजबूत रख सके और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हों।
1: जब कोविड-19 की शंकाएं उठ रही थी, मेरा ख्याल है तभी हम पूरी तरह से तैयार थे। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि हम उस आपदा से लड़ पाए और उससे बाहर निकल पाए।
0: देखिए, निश्चित रूप से कोविड-19 के दौरान भारत ने न केवल अपने नागरिकों का ख्याल रखा बल्कि दुनिया की भी चिंता की।
1: जी,
0: ऐसे कठिन समय में हमने अपने दो स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार किए, हमने अपने करोड़ों नागरिकों को डबल डोज दिया, बूस्टर डोज दिया, 220 करोड़ टीकाकरण, ये आसान बात नहीं है, आसान लक्ष्य नहीं है। और यहां तक कि जब दुनिया के तमाम विकसित देश भी इसका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए तो कोरोना वैक्सीनेशन का हमने अपने नागरिकों को डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया। और इसके साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की जो हमारी पहल थी, 100 से अधिक देशों के नागरिकों को भी हमने जरूरी जो दवाएं थी या इक्विपमेंट्स थे या टीके थे, ये हमने तमाम देशों के नागरिकों को भी पहुंचाए। तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने साथ साथ वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के तहत दुनिया की चिंता करता है। और इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण हमने कोविड जैसी महामारी बहुत बड़े संकट के बीच में प्रस्तुत किया।
1: भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भी जाना जाता है और क्यों ना हो, आयुर्वेद की भूमि है। तो उस संदर्भ में, उस विषय में आज भारत की वैश्विक स्थिति कैसे मजबूत हो रही है?
0: देखिए, जहां तक फार्मा क्षेत्र की बात है तो भारत, अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हम तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो हम 14वें नंबर पे हैं। और दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन जो है वो 200 से करते आए हैं। यूएस हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, तमाम देशों में हमारी जेनेरिक दवाइयां पहुंचती हैं जिनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है और दाम भी बहुत कम है। इसके साथ ही WHO की 70% जो वैक्सीन की मांग है उसकी आपूर्ति भी भारत का फार्मा सेक्टर करता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ ही हम आगे की जो नेक्स्ट फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल लीडरशिप है उसके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि आज दुनिया में, जैसे मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, डायबिटीज है, कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, आज बीमारियों का पैटर्न

0: बदल रहा है। एनसीडीज का बर्डन दुनिया के तमाम देशों पे बहुत बड़ा बर्डन है, तो केवल जेनेरिक दवाओं में जो हमारी लीडरशिप है, अब हमें उस तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के अंदर अगर हम 2031 तक बात करें तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगे उसमें 60% जेनेरिक की मांग हो सकती है, लेकिन 40% जो मांग होगी वो बायोलॉजिक्स की होगी, बायोसिमिलर्स की होगी। तो अब हमें स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग से लार्ज मॉलिक्यूल इनोवेशंस की तरफ बढ़ना है, यानी जो हमारे वॉल्यूम लेड जेनेरिक्स हैं उनसे आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हमें जो वैल्यू लेड बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हैं उसको बनाने का काम करना है। और इस दिशा में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ के बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की बजट में, और उसके तहत आज फार्मा सेक्टर में हमारी जो कंपनीज हैं वो कैसे जेनेरिक से आगे बढ़कर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये जो नए इनोवेशन ड्रग्स हैं, इसका जो एक नया मार्केट उभर रहा है और इसकी जो मांग बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़े ऐसा प्रोत्साहन हम दे रहे हैं।
1: चर्चा तो और भी की जा सकती है लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा, तो जाते जाते आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2030 तक हेल्थ केयर के एरिया में ऐसे कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और आखिर में भारत के नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: देखिए, भारत तेजी से काम कर रहा है, टीबी मुक्त भारत बनाना है, मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे अगर आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे जो मैटर्नल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, या जो इन्फेंट मोर्टैलिटी, अंडर 5 मोर्टैलिटी या नियोनेटल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, उससे कहीं ज्यादा तेज गिरावट भारत के अंदर है। तो हमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे और बेहतर काम करना है। इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है, गैर संचारी रोगों का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी तेजी से चल रही है, और आगे की भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ मिशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के मॉडल्स को भारत एक्सप्लोर कर रहा है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करें, इसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी श्रोता आज हमें सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूंगी कि भारत सरकार को जो प्रयास करना है, राज्य सरकारों को जो प्रयास करना है, हम पूरी तरह कर रहे हैं, लेकिन हर नागरिक को माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी बनाना है, और इसके लिए जरूरी है साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारी हवा साफ हो, हमारा पानी साफ हो, हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें, मौसमी आहार लें, तेल नमक चीनी का सेवन कम रहें, और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ से, नशे के सेवन से अपने आप को, तंबाकू हो, सिगरेट हो, पान, बीड़ी, मसाला, शराब, इन सब से हम दूर रहें। योग, व्यायाम, किसी भी प्रकार के खेलकूद को अपने जीवन का अंग बनाएं, और सबसे बड़ी बात कि हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। मुझे लगता है कि सभी नागरिक यदि इस प्रकार के जीवन शैली का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।
1: आज के दिन हमारे जीवन में योग एक अहम भूमिका निभा रहा है, और जैसा आपने बताया आरोग्य मंदिरों में भी योगा की शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो योग के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के रिलेशन में आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे श्रोताओं और से क्या कहना चाहेंगे?
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बहुत निकट है, 21 जून को देश में करोड़ों लोगों को हम योग करते हुए देखेंगे, और मुझे गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक बार पुनर्जीवित किया है। न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिक आज योग के फैन हो चुके हैं। मैंने भी कई देशों की यात्रा की है और हर जगह मैंने देखा है कि योग को लेकर लोगों का एक जबरदस्त क्रेज है, और हमारे देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाए, क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसके साथ साथ अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो जरूरी है कि योग का हम पालन करें, क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है। बहुत सारे तनाव जो आजकल के दौड़ते भागते जीवन में हैं उनसे हमें मुक्त रखता है, और मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से योग हमें एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए, और जीवन के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमें योग के माध्यम से मिल सकती है। तो अधिक से अधिक लोग योग करें, और योग आपको निरोग भी रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा।
1: स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है योग करना, और साथ ही साथ पौष्टिक आहार,
0: बिना खर्च का तरीका है योग।
1: व्यायाम और

0: पौष्टिक आहार हमारी जरूर मदद कर सकता है स्वस्थ रहने में और खुश रहने में, और पहले स्वास्थ्य फिर कुछ और। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी आज हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी श्रोताओं और दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।
1: इन स्पेशल सीरीज 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, you were listening to an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer was Niharika Bhuvania. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on EIR. This program is also available on our YouTube channel, News on EIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम सरकार के 12 वर्ष और ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित विशेष श्रृंखला कार्यक्रम पर आधारित था। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो सुनते रहिए, जुड़े रहिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीति भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉ. जयशंकर और श्री सुबियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक

0: विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल अताकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।